मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 53 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि विदा ले चुकी है और सुबह अपनी हथेली में रोशनी का जादू लिए धरती पर नव चेतना का संचार कर रहा है। आकाश में गुलाबी सुनहरी रेखाएं इंद्रधनुषी छटा बिखेर कर प्रकृति को सुरम्य बना रही हैं। दोस्तों, नव चेतना के साथ नव ऊर्जा लिए हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।

हमारे श्रोता जो रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं और दिनचर्या में लग गए हैं, उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया की गतिविधियों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया।

0: है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं खरीफ में भूमि और बीज शोधन विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण गौतम से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ उत्पादन की तैयारी में हैं, जहां खरीफ फसलों की बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं, तो बीज शोधन, भूमि शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CPN गौतम साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ फसलों की बुआई या रोपाई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो खरीफ फसलों का बीज शोधन, भूमि शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें?
3: बीज शोधन, भूमि शोधन और पौध जड़ उपचार के माध्यम से फसलों में लगने वाले जो भी हमारे हानिकारक रोग और कीटों के समस्या का समाधान किया जा सकता है। खेत में बोने से पहले भूमि की तैयारी करते हैं। उसी भूमि की तैयारी में अंतिम जुताई के दौरान हम कई प्रकार के हमारे जो जैविक रसायन हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ट्राइकोडर्मा हाइजीनियम है, स्यूडोमोनास है और बिवेरिया वैसियाना है, मेटारेजियम है, तो इस प्रकार के हमारे बहुत सारे जो जैविक फफूद हैं, इनका प्रयोग हम भूमि शोधन के लिए करते हैं। और ये भूमि शोधन जो हमारे मुख्य रूप से जो मृदा जनित हमारे जो रोग होते हैं या भूमि में रहने वाले जो हमारे कीट होते हैं, उनके लिए हम भूमि शोधन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें ट्राइकोडर्मा की, तो ट्राइकोडर्मा द्वारा 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 20 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके रख देते हैं और छायेदार स्थान में रखने के बाद में हल्का पानी का छींटा लगाते हैं और 8 से 10 दिन बाद उस गोबर के ढेर को खेत की अंतिम जुताई के दौरान मिट्टी में मिला देते हैं,
2: पूरे खेत में
3: बिखेर देते हैं। फिर उसके बाद में हम जुताई कर देते हैं।
2: तो जैसे आपने ट्राइकोडर्मा की बात की, उसी तरह बवेरिया बसियाना है, मेटारेजियम है या स्यूडोमोनास है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं?
3: बिल्कुल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्टिसिलियम क्राई जो स्पोरियम हमारा एक सूक्ष्म जीव है जो बहुत ही लाभदायक है, और इसका प्रयोग मुख्य रूप से अगर हम फसलों में करते हैं तो खासकर जो हमारा जो रूट नॉट निमेटोड।

0: और जो सब्जियों में लगता है या अन्य फसलों में जो लगता है
1: सूत्रकृमि
0: के लिए भी ये बहुत ही एक रामबाण जो हमारा जैविक फफूद है, इसका प्रयोग जो है कि 2 किलोग्राम 20 से 25 किलोग्राम गोबर में मिला करके और बिल्कुल ट्राइकोडर्मा की तरह जैसे उपयोग में लाते हैं वैसे ही अगर हम कर दें तो हमारे सब्जी की फसलों में जो निमेटोड की समस्या का समाधान हो सकता है।
1: जहां दीमक की समस्या है या भूमिगत कीटों की तो वहां ब्यूवेरिया बैसियाना भी फायदेमंद होगा डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी बिल्कुल, ब्यूवेरिया बैसियाना बाजार में उपलब्ध है और राजकीय कृषि बीज भंडार पे भी उपलब्ध होता है, सरकार इसे सब्सिडी देती है, तो इसको जरूर किसान भाई यूज करें और ट्राइकोडर्मा का तो प्रयोग किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए।
1: कहीं कहीं कुछ रोग दोख इस तरह के हैं या हानिकारक कीट हैं जहां रासायनिक बीज शोधन भी जरूरी है?
0: जी रासायनिक बीज शोधन भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर हम आजकल खरीफ फसलों की अगर हम बात करें तो धान में जो मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि धान में जो सीथ ब्लाइट नामक जिसको हम बोलते हैं पर्ण छंद नामक बीमारी आती है, तना विगलन नामक बीमारी आती है, इसके अलावा झुलसा नामक बीमारी आती है, इसके लिए कार्बेंडाजिम 50% WP की दवा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के अनुसार अगर हम बीज का शोधन करते हैं तो धान में लगने वाले जो विभिन्न रोग हमने जो बताया है उससे इसका समाधान हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब कहीं कहीं जीवाणु झुलसा रोग की भी समस्या आती है तो उसके लिए इस समय बीज शोधन धान में?
0: धान के लिए जहाँ जहाँ जीवाणु झुलसा जिसको हम बैक्टीरियल लीव ब्लाइट बोलते हैं इसके लिए भी हम इसमें कार्बेंडाजिम हमारा 50% WP जो 40 ग्राम लेते हैं और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 7.5 ग्राम लेते हैं, इनको हम 40 लीटर पानी में घोल बना करके और 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलोग्राम धान का बीज लगता है उसमें पूरे दवा को घोल में मिला करके और धान के बीज को उसी में भिगो देते हैं और लगभग 10 से 12 घंटे तक भिगो कर रखने के बाद में पुनः उसको छान करके अलग कर देते हैं और अंकुरण आने पे धान की नर्सरी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से धान में लगने वाले समस्त प्रकार के जो हमारे रोग हैं उनका समाधान हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 88 58 42 30 73 88 58 42 30 73। एक तीर से कई शिकार जिसको कहते बीज उपचार और ट्राई करो काहे को डरना इसको कहते ट्राइकोडर्मा।
1: डॉक्टर CPN गौतम साहब आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में बीज शोधन भूमि शोधन और पौध जड़ उपचार कैसे करें किसान भाई बहन इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। गलती हर इंसान से होती है लेकिन जो गलती पर पश्चाताप करके स्वयं को सुधार लें वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार पश्चाताप। वाचन स्वर सत्यानंद वर्मा का है।
3: कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य ही वो प्राणी है जो कर्म करने के पूर्व विचार कर सकता है। यद्यपि विचार के बिना कर्म असंभव है किंतु मनुष्य का विचार विवेकपूर्ण होता है। पशु भी कर्म करते हैं किंतु उनके विचार में विवेक नहीं होता, अतः पशुओं में कर्म के पश्चात पश्चाताप नहीं हो सकता। मनुष्य विवेकपूर्ण विचार करके कर्म करता है किंतु यदि उसके किसी कर्म का दुष्परिणाम होता है तो मनुष्य उसे समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। इस अनुभव से ही पश्चाताप उत्पन्न होता है। पश्चाताप मनुष्यता के बहुत से गुणों में से एक गुण है जिससे मनुष्य अपने द्वारा की गई त्रुटियों का सुधार कर सकता है। भूलवश की गई त्रुटियों का यदि मनुष्य पश्चाताप करता है तो व्यवहारिक रूप में ये परिलक्षित होता है कि पश्चाताप करने से की गई त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं होती, अर्थात पश्चाताप के पश्चात उस विशिष्ट कार्य की त्रुटि से वो मुक्त हो जाता है। अनुभव के अभाव में जिस त्रुटि का वो पश्चाताप कर लेता है उस त्रुटि से बचने का अभ्यास उसे जीवन पर्यंत बना रहता है। पश्चाताप के पश्चात त्रुटि क्षमा योग्य हो सकती है, अतः यदि उस त्रुटि के फलस्वरूप हुई हानि के लिए सक्षम अधिकारी

0: द्वारा क्षमादान दिया जाता है, तो ये क्षमा उस दोषी व्यक्ति के आचरण को और अधिक शुद्ध एवं अनुकरणीय बनाने में सहायक होता है। यदि किसी कार्य निष्पादन में जानबूझकर कोई त्रुटि की जाती है तो मनुष्य को पश्चाताप करने का अवसर नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि की गई त्रुटि का विपरीत फल उसे पूर्व में ही ज्ञात होता है। उस विपरीत फल के दोष से बचने का विचार भी वो पहले से कर चुका होता है, अतः पश्चाताप का भाव उसके मस्तिष्क में आता ही नहीं। किंतु यदि किसी कार्य के निष्पादन में जानबूझकर की गई त्रुटि का परिणाम सोचे हुए परिणाम से भी अधिक भयंकर होता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई होती है, तब ऐसी परिस्थिति में पश्चाताप का भाव आ सकता है। इस परिस्थिति में यदि पश्चाताप किया जाए और सक्षम अधिकारी द्वारा न्यायोचित दंड उस मात्रा में प्राप्त हो जितने अपराध का उसने पूर्व में ही विचार किया हो, तो पश्चाताप व्यक्ति के आचरण के शुद्धिकरण में सहायक हो जाता है। मनुष्य के निरंतर संपर्क में रहने वाले पशुओं में भी पश्चाताप के भाव देखे जाते हैं। भावावेश, भय अथवा क्रोधवश पालतू पशु द्वारा की गई हानि के पश्चात उसके द्वारा प्रेम प्रदर्शन करना पश्चाताप ही तो है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। पश्चाताप वो अग्नि है जिसमें जलकर दोषी व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका आचरण तपे हुए स्वर्ण के समान और अधिक दैदीप्यमान हो जाता है। मनुष्य का संग जब पशुओं को पश्चाताप के गुण से युक्त कर सकता है, तो स्वयं मनुष्य इस सद्गुण से वंचित कैसे रह सकता है।
1: पश्चाताप, अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाचन स्वर सत्यानंद वर्मा का था। पश्चाताप करने का एक और माध्यम है ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की पूजा। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रभु प्रभु भक्ति में ही शक्ति है और प्रभु सुमिरन में ही अनंत साहस है। निष्ठा विनम्रता से की गई सच्ची पूजा ही भक्त को ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कराने में सहायक होती है। तो अपने जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार करने के लिए आइए प्रभु का सुमिरन करें।

नाम है। माँ की गोद में सारा जग सुकून पाता है, माँ की छाँव में ईश्वर सदैव प्राप्त होते हैं और भक्त शरण में रहते हैं। कहते हैं ममता की छाँव है माँ, दुआओं का गांव है माँ, जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ।

कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा सफर है जिसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईश्वर की पूजा, जो प्रेरणा का स्रोत भी है, अंधेरों में लड़ना सिखाती है और उजालों में जीना बताती है। हिम्मत के

राम के भक्त रुद्र के अवतार, अंजनी के लाल और दुर्जनों के काल हैं। साधु जन के साथ हैं और निर्बलों की आस हैं, सद्गुणों का मान, ये हैं वीर हनुमान। आइए करें इनका गुणगान।

747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, जिसे आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। और अब आइए करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 202 में तीर्थराज प्रयाग में भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत के पुलकित होने तथा प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के प्रति चिंतित होने का प्रसंग।

तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचकर भरत पुलकित हैं। हृदय में श्री राम सीता और लक्ष्मण के लिए उमड़ते स्नेह से आंखों में आंसू उमड़ आए हैं। निर्दोष भाव से वे भरद्वाज जी के सम्मुख अपने उद्गार प्रकट करते हैं। उन्हें अपनी माता कैकेयी की करने का कोई विषाद नहीं है और न ही पिता के निधन का शोक है, क्योंकि दिवंगत महाराज का पुण्य और सुयश समस्त जगत में विदित है। जिन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए और पुत्र विरह में नाशवान शरीर त्याग दिया, ऐसी पुण्यात्मा के लिए शोक करना तो उसकी मर्यादा के प्रति अपमान होगा। भरत को सोच इस बात का है कि राम लक्ष्मण तथा सीता मुनियों का वेश धारण कर वन वन फिर रहे हैं, वलकल वस्त्र पहनते हैं, कंदमूल का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों की छाया में सर्दी गर्मी वर्षा और हवा के झोंके सहते हैं। इसी दुख से भरत की छाती फटती है, न भूख लगती है न नींद आती है। इस दुख का निदान उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। निदान मात्र एक है, श्री राम को अयोध्या लौटा लाना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। इस समय आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। सात सौ 47 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

ऊर्जा विभाग चंद्र अवतरण ज्ञान से विकासार्थम संयुक्त रूपेण कार्य कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉ वी नारायणः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु

0: कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयान त्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीं उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तान दलं 7 क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर। समय मिला लीजिए, सुबह के 7 बजे हैं और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर आप सभी को जानकारी देंगी जीवन की डोर आपके रक्त की एक बूंद विषय पर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ मानवता का प्रतीक है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच एक सेतु भी है, और वो है रक्तदान। 14 जून हर साल विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन समर्पित है उन लाखों लोगों को जो स्वेच्छा से निस्वार्थ भाव से रक्तदान करते हैं और दूसरों के जीवन को बचाने का माध्यम बनते हैं। ये दिन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि रक्त अब तक ऐसा कोई कृत्रिम विकल्प नहीं जिसके बिना जीवन बचाया जा सके। रक्तदान एक सेवा है, लेकिन ये सेवा मात्र एक कार्य नहीं, ये विश्वास, साहस और सहानुभूति का प्रतीक है। जब कोई अस्पताल में जरूरतमंद मरीज रक्त की कमी से जूझ रहा होता है तो आपके रक्त की एक बूंद उसके लिए नई सांस बन सकती है। सड़क दुर्घटना हो, प्रसव के दौरान रक्तस्राव हो, थैलेसीमिया, कैंसर या कोई जटिल ऑपरेशन, ये सभी ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ रक्त की आवश्यकता होती है, और यदि समय पर रक्त न मिले तो हालात गंभीर हो सकते हैं। भारत जैसे देश में जहां हर साल लाखों यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, वहां स्वैच्छिक रक्तदाताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिर्फ परिवार या मित्र ही हमेशा उपलब्ध हों ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए जागरूक समाज की भूमिका बनती है कि वो रक्तदान को केवल जरूरत पड़ने पर नहीं बल्कि एक नियमित, नैतिक और स्वास्थ्यदायी अभ्यास की तरह अपनाए। रक्तदान से जुड़ी कुछ भ्रांतियां आज भी लोगों को रोकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रक्त देने से शरीर कमजोर हो जाता है या स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जबकि वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रक्तदान न केवल सुरक्षित है बल्कि लाभदायक भी है। ये शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और कहीं न कहीं मानसिक सुकून भी देता है कि हमने किसी की जिंदगी में रोशनी की लौ जलाने का काम किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष हर 3 महीने और महिलाएं हर 4 महीने में रक्तदान कर सकती हैं। इससे शरीर को कोई भी हानि नहीं होती बल्कि नियमित रक्त जांच, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और अन्य परीक्षण के जरिए

ये अपने स्वास्थ्य का आकलन भी हो जाता है और रक्तदान के तुरंत बाद थोड़ा आराम, तरल पदार्थ और पोषक आहार लेने से शरीर सामान्य रूप से कार्य करता रहता है। आज जब हम शहरों से लेकर गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देख रहे हैं, तब ये और जरूरी हो जाता है कि हर क्षेत्र में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए मोबाइल ब्लड डोनेशन वैन, रक्तदान शिविर और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है और ये तभी संभव है जब हम सभी इसमें सहभागी बने, क्योंकि रक्त न जाति देखता है, न धर्म देखता है और न ही उम्र, ये बस बहता है और जीवन देता है। आज का ये दिन उन गुमनाम नायकों को सलाम करने का भी अवसर है जो हर साल नियमित रक्तदान करते हैं बिना किसी प्रचार प्रसार के। ऐसे लोग समाज में एक अदृश्य शक्ति बनते हैं जिनकी वजह से अस्पतालों में नन्हे बच्चों की जान बचती है, माताओं का जीवन सुरक्षित होता है और बुजुर्गों को राहत मिलती है। ये सिर्फ रक्त नहीं, विश्वास, सहानुभूति और मानवता का संचार है। श्रोताओं, हम सभी के पास समय समय पर अवसर आता है जब हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। रक्तदान ऐसा ही एक अवसर है जो छोटा लगता है लेकिन उसका असर बहुत दूरगामी होता है। आइए आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर हम ये प्रण लें कि हम भी रक्तदान करेंगे, न सिर्फ जरूरत पड़ने पर बल्कि एक नियमित आदत के रूप में। अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को भी प्रोत्साहित करेंगे और इस परोपकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक यूनिट रक्त किसी की जान बचा सकता है, किसी माँ को उसके बच्चे से मिलने का मौका दे सकती है, किसी युवा को फिर से सपने देखने की शक्ति दे सकती है। ये केवल शारीरिक देन नहीं बल्कि दिल से दिल का रिश्ता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और जीवन देने वाले इस सुंदर कार्य रक्तदान के लिए अपने दिल और बाजू को खोलिए। नीना सोनकर को

जीवन की डोर आपके रक्त की एक बूंद। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर।

श्रोताओं, आप समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का प्रसारण समय होगा सुबह 10:10। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर चर्चा करेंगे शैलेंद्र शर्मा। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा मोहम्मद उमैर से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर और गर्मी में रखे हिफाजत इस विषय पर चर्चा। इसके अलावा कलाम शायर में आप सुनेंगे मोहम्मद कलीम फतेहपुरी और फारूख आदिल से उनका ताजा कलाम। हेलो डॉक्टर फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 3:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय है अपेंडिक्स लक्षण उपचार और इससे जुड़ी भ्रांतियां। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार भट्ट, संचालन सुभाष खन्ना का होगा। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनना न भूलें आचार्य विनोद

कुमार मिश्रा, प्राचार्य शिव प्रसाद संस्कृत विश्वविद्यालय छितवापुर लखनऊ से की वार्ता न मातुः पर दैवतम्। सुबह 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद अली अहमद हुसैन का रागतोड़ी में शहनाई वादन। नन्हे मुन्ने अपना पसंदीदा कार्यक्रम बालमंच सुनेंगे दोपहर 12:00। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर नीतू बत्रा की वार्ता का विषय होगा बुजुर्ग हमारे घर की शान, हम सब करें इनका सम्मान। हेल्थ टिप्स में अनुपमा मिश्रा बताएंगी योग के बाल सुलभ आसन, रखें स्वस्थ तन मन। इसके अलावा बच्चे सुनेंगे ममता उपाध्याय की लिखी लघु नाटिका दादी की सीख। दिन में 1:15 पर आज इतवार है मैं सुनना ना भूले नीलम राकेश की लिखी झलकी मच्छर का चक्कर, प्रस्तुत करता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में सुनिएगा चार दीवारी का सन्नाटा, दुर्व्यवहार के वो जख्म जो दिखाई नहीं देते विषय पर डॉक्टर अमित सक्सेना समाजशास्त्री एवं अध्यक्ष वृद्धाश्रम से की गई भेंटवार्ता, भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। खरीफ फसलों में स्मार्ट उर्वरक प्रयोग, इस विषय पर सुनिएगा यतेंद्र कुमार से की गई भेंटवार्ता विज्ञान और किसान कार्यक्रम में। दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दिव्यांगों के लिए संतुलित आहार, ये विषय है डॉक्टर पूनम तिवारी से की गई भेंटवार्ता का, सुनिएगा संकल्प कार्यक्रम में 4:00। भेंट करता होंगे देवाशीष। आज शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता से की गई भेंटवार्ता, संक्रामक रोग कारण लक्षण और निदान, इस विषय पर आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर सोशल सिग्नल क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा डिजिटल आदतें और सामाजिक व्यवहार, स्क्रीन आदतें और सामाजिक व्यवहार। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से 747 kHz पर। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल है। एक मरीज ऑपरेशन टेबल पर है और डॉक्टर को इंतजार है एक यूनिट रक्त का। हर 2 सेकंड में किसी न किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी इंसान की जिंदगी मौत से लड़ रही होती है तो रक्त उसके लिए उम्मीद बन जाता है। क्या आप जानते हैं, एक यूनिट रक्त से 3 लोगों की मदद की जा सकती है, क्योंकि रक्त के विभिन्न घटक जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स अलग अलग मरीजों के दिए जा सकते हैं। तो आज की विविधा में बात विश्व रक्तदाता दिवस की, जो न केवल किसी की जान बचाता है बल्कि इंसान के अंदर मानवता की सच्ची भावना को भी जीवित रखता है। जीवन की धारा रक्तदाता। रक्तदाता के शरीर में बहने वाला लाल रंग का अमृत जब किसी जरूरतमंद की नसों में पहुंचता है तो उसके चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण लौट आती है। यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा गया है। दोस्तों, हम रोज अपने जीवन में कई छोटी बड़ी मदद करते हैं। दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, प्रसव, कैंसर, थैलेसीमिया और अन्य गंभीर बीमारियों के कारण हमारे देश में हर वर्ष लाखों लोगों को रक्त की जरूरत होती है। विशेषकर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को हर महीने रक्त चढ़ाना पड़ता है और ऐसे में अगर समय पर रक्त न मिले तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसीलिए WHO द्वारा साल 2004 में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत की गई, क्योंकि 14 जून को महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इसी खोज ने सुरक्षित

रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार दिया। इसी योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। आज जब हम ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव जैसे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं दोस्तों, तो उसके पीछे वही महान खोज है जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाने का रास्ता खोला। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उन लोगों को धन्यवाद कहने का दिन है जो बिना किसी स्वार्थ के अपना रक्त देकर किसी अनजान व्यक्ति को जीवन दान देते हैं। वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यानी मानवता की एक बूंद रक्त दान करें जीवन बचाएं। ये थीम है साल 2026 की, जो हमें याद दिलाती है कि रक्तदान सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया नहीं है, ये रक्तदाता की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। एक बूंद रक्त में होती है दया, संवेदना, जिम्मेदारी और किसी बीमार व्यक्ति के लिए जीने की नई संभावनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी रक्तदान किया है? अगर हाँ तो आप हीरो हैं सच में, और अगर नहीं तो डरिए मत, रक्तदाता बनिए, रक्तदान करिए। हाँ, पहली बार थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन जो खुशी महसूस होती है ना, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। रक्तदान केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी मानवता की मिसाल है, और इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। क्या आप जानते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है? रक्तदान की प्रक्रिया केवल 10 से 15 मिनट की होती है, लेकिन इसका प्रभाव किसी के पूरे जीवन पर पड़ता है। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, और रक्तदान के समय लगभग 350 से 450 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, परंतु दोस्तों ये एक भ्रम है, बल्कि नियमित रक्तदान से शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया सक्रिय होती है, जिससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। रक्तदान करने से पहले बस कुछ बातों का ध्यान रखें। अच्छी नींद लें, हल्का और पौष्टिक भोजन करें, खाली पेट रक्तदान न करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और अपनी हेल्थ हिस्ट्री ईमानदारी से बताएं। रक्तदान के बाद कुछ देर आराम करें, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम तुरंत नहीं करें, और अगर चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत मेडिकल स्टाफ को बताएं। दोस्तों, हम मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, मस्जिद में दुआ मांगते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं, लेकिन रक्तदान एक ऐसी सेवा है जहां आपकी दुआ किसी की नसों में बहने लगती है। विश्व रक्तदाता दिवस पर सैल्यूट है उन सभी रक्तदाताओं को जो बिना नाम, बिना पहचान और बिना किसी उम्मीद के किसी की जिंदगी बचाने आगे आते हैं। आपका एक यूनिट रक्त किसी आईसीयू में उम्मीद बन सकता है, किसी माँ की सुरक्षा, किसी बच्चे की मुस्कान और किसी परिवार की अधूरी खुशी को पूरा करता है। तो दिल से आभार हर उस रक्तदाता को जो मानवता की धड़कन बनकर दूसरों का जीवन बचाते हैं। आइए हम भी रक्तदान करें, रक्तदाता बनें और जीवन बचाएं। आज की विविधा में बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। कीजिए स्वीकार वैशाली का प्यार भरा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा।

0: भगवान से डरूं, मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
1: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

0: दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज अंडरस्कोर जीकेपी पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन्य पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है। और पक्षपात के कहने निष्पक्षता के साथ ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था, और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा

0: जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
0: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: मीडियम वेव तेज होती।
3: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का 747 किलो हर्ट्स पर। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, जिसे आप सुन रहे हैं वैशाली के साथ। और समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का रागतोड़ी में शहनाई वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी का राग तोड़ी में शहनाई वादन।

का रागतोड़ी में शहनाई वादन। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार। श्रोताओं बने रहिए 747 किलोहर्ट्ज़ पर और सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। कुछ ही पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित

चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है।

0: और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से

0: जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं, आइए आप सुनते हैं बच्चों का प्रिय कार्यक्रम अंकुर।

0: स्वागतम, वेलकम, खुशामदीद भाई। आज है रविवार और हम देख रहे हैं सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और हंसते मुस्कुराते हमारे साथ हैं संजय भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नाजमा, स्वागत आपका भी। और नन्हे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको बता दें जब नाजमा स्टूडियो में आती हैं तो बड़े प्यार से कहती है, संजय भैया नमस्ते। तो हम भी उसी टोन में बोलते हैं, नाजमा नमस्ते।
0: अच्छा, ऐसा है ना, संजय भैया के संडे का दिन हमें अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर देता है और वही बात है कि प्रोग्राम भी बच्चों का है और जब हम आप मिलते हैं तो हम लोगों का बचपन जैसा, बच्चों जैसा माहौल हो जाता है।
1: वो
0: है ना?
1: एक बात ये भी है ना नाजमा कि हम जितना बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे, ये कार्यक्रम यानी कि अंकुर कार्यक्रम उतना ही रोचक और ज्ञानवर्धक और बच्चों को अच्छा लगेगा।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल। और प्यारे बाल दोस्तों, अब हम अपने अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं और उस पर बात करेंगे, प्यार बांटते चलो। बच्चों, प्यार इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। ये प्रेम की भावना ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है, है ना संजय भैया?
1: बिल्कुल।
0: और दूसरे दुख तकलीफ का एहसास कराती है। बच्चों, यदि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे अखलाक ना हो तो एक दूसरे का भला हम नहीं सोच सकते। जब अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे, है ना भैया?
1: बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, प्यार जीवन का सबसे अनमोल उपहार होता है।
0: आहा, क्या बात कही।
1: ये एक ऐसी भावना है जो लोगों को, जो दिल होते हैं ना, उनको जोड़ती है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। प्यार बांटने से न केवल दूसरों को खुशी मिलती है बल्कि हमारे स्वयं के जीवन में भी सुख, शांति और संतोष का संचार होता
0: है। बड़ी सुंदर बातें आपने कह दी हैं संजय भैया। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर अपनी जिंदगी में भी ऐसा होता होगा या फिर महसूस किया होगा आपने कि जब हम किसी की भी सहायता करते हैं या प्यार मोहब्बत अखलाक से बोलते हैं तब हम प्यार ही तो बांट रहे होते हैं, इसी बात का असर दूर तक जाता है। बच्चों, इसीलिए आप अपने स्कूल में, अपनी कक्षा में, अपने मित्रों से, अपने भाई बहन से प्यार से पेश आया करें, अपना स्वभाव नरम रखा करें। कभी कभी छोटा सा प्रेमपूर्ण व्यवहार आपका किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है ना?
1: अच्छा नाजमा, एक बात है
0: जी,
1: वो ये कि मान लो कोई हमें पसंद नहीं करता है और अगर हम उससे गुस्से में बोलेंगे तो वो हमसे ज्यादा गुस्से में हमसे रिएक्ट करेगा।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और अगर हम प्यार से हम
0: बोलेंगे
1: जो हमें पसंद नहीं करता उससे अगर

0: कि भैया जो नाराजी है वो दूर करिए और हम
1: सच
0: सॉरी बोलते हैं अगर
1: हाँ
0: हमसे कोई गलती हो। तो जब आप प्यार से बोलेंगे ना तो वो हल्का सा स्माइल देके आपको माफ कर
1: बहुत
0: देगा।
1: अच्छी बात बताई आपने
0: हाँ,
1: ये, यानी कि उसका गुस्सा दूर हो
0: दूर हो जाएगा, छू
1: जाएगा।
0: छू हो
1: तो
0: जाएगा।
1: देखिए प्यार कितनी अच्छी चीज है
0: बिल्कुल।
1: ना
0: अच्छा
1: जी।
0: नाजमा, एक बात और, प्रेम भरा व्यवहार दूसरे के मन में हमारे प्रति सम्मान और अपनापन पैदा कर देता है, जैसा मैंने अभी उदाहरण
1: जी
0: दिया।
1: जी बिल्कुल यही
0: प्यार
1: बात है।
0: बांटने से मन की कटुता, ईर्ष्या, द्वेष कम होते हैं,
1: हाँ
0: समाज में शांति और सद्भाव बना रहता
1: हाँ
0: है।
1: देखिए
0: इसीलिए कहा जाता है,
1: जी।
0: प्यार बांटते जो चले, बड़े सदा सम्मान, खुशियों से भर जाए जीवन और जहान।
1: आहा हा भाई क्या प्यारी सी लाइनें आपने कह दी हैं। बच्चों आज के समय में देखिए अपनी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में संजय भैया लोग एक दूसरे के लिए समय बहुत कम निकाल पा रहे हैं, है
0: ये
1: ना।
0: तो सच है।
1: इसीलिए जब भी मिलें कहीं भी मिलें तो प्रेम से ही मिलें, क्योंकि बच्चों प्रेम सिखाता है मिलजुल कर रहना, सबके संग हंसना गाना, मीठे बोल और अच्छी बातें, सबको अपना मित्र बनाना, है
0: बिल्कुल
1: ना
0: बिल्कुल। अच्छा नाजमा दीदी, ये मित्र की तो बात हो गई,
1: जी।
0: अब जो खुशी की बात थी वो भी हो गई,
1: जी
0: अब एक गाना सुनवा दें अपने
1: हाँ अरे
0: बच्चों
1: वाह
0: को।
1: क्या बात है।

0: और संजय भैया, जब बच्चे होते हैं आसपास हमारे और हमारे घर परिवार में भी, तो देखिए हमारा खुद का भी जो एक माइंड फ्रेश हो जाता है। जो हम गुस्से में होते हैं तो वो बच्चों की खिलखिलाहट देखकर या बच्चों की हरकतें देखकर
1: शरारतें देखकर
0: हम लोग भी हंस पड़ते हैं
1: जी
0: ना।
1: हाँ बिल्कुल
0: तो देखिए अब फोन आ रहे हैं, कॉल पर कॉल आ रही है, तो आइए सुनते हैं, नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों से बातचीत करते हैं हेलो अंकुर में।
1: जी
0: हेलो
2: आकाशवाणी।
0: जी। हाँ, आकाशवाणी में आपका फोन लग चुका है। और भाई कौन, नन्ही मुन्नी बाल दोस्त हमसे जुड़ चुकी हैं, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम अनिश्मा खान है।
0: तो अंकुर कार्यक्रम आप सुनती हैं?
2: मैं बहुत बार सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है।
0: आहा, भाई क्या बात है, अंकुर कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलिश्मा ये बताइए, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर?
2: मैं बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ।
0: ओहो भाई, आईपीएस ऑफिसर, क्या बात है। आकाशवाणी परिवार की दुआएं आपके साथ हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। तो मेहनत करेंगी ना आप?
2: बहुत
0: और पढ़ती हैं?
2: बहुत
0: तो ये बताइए, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? इतने
2: बहुत बढ़िया। इंग्लिश
0: सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? ओहो भाई, इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है भाई, क्या बात है। तो बताइए, वॉवल कितने होते हैं, कौन कौन से? वेरी गुड। और ये बताइए, क्राफ्ट में शौक रखती हैं आप? क्राफ्ट में क्या क्या बनाया है आपने?
2: मैंने सोलर सिस्टम हैट बनाया है।
0: अच्छा, सोलर सिस्टम हेड बनाया है आपने, है ना? जी, बहुत अच्छी बात है कि ऊर्जा का स्रोत हम नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को जो इस वक्त हमसे मुखातिब है उनको बता दें, सोलर सिस्टम यानी ऊर्जा का एक स्रोत है। और इसमें क्या होता है कि एक प्लेट होती है, काफी बड़ी, छोटी और बड़ी दोनों होती हैं, अगर हम उसे छत पर लगा दें तो वो सूरज से चार्ज होता रहता है और घर को यानी आपके पूरे घर को बिजली मिलती रहती है।
2: जी मेरे घर पे भी लगा हुआ है।
0: फिर तो बिजली की ऐसे बहुत अच्छी बचत हो जाती है ना? और खाने में क्या पसंद है आपको?
2: फास्ट फूड में पिज्जा, आलू को पराठा।
0: आहा, भाई क्या बात है। देखिए, फास्ट फूड की आपने बात की है यानी जंक फूड, तो आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना? कभी कभी टेस्ट के लिए खा सकते हैं, ठीक है। और आपने ट्रैफिक लाइट देखी है, उसका क्या मतलब होता है?
2: रेड लाइट का मतलब होता है स्टॉप, येलो लाइट का मतलब होता है वेट, ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो।
0: जब हम सड़क पर चलते हैं या हम साइकिल से जा रहे हैं या हम पैदल जा रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: जब हम रोड पार कर रहे होते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखना चाहिए और हमेशा सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए।
0: आहा, भाई क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दे दी है आपने अलीशवा। तो नन्हे मुन्ने बाल दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या सुनाना चाहती हैं।
2: मैं एक हिंदी को पोइम सुनाने जा रही हूँ। जखे टोकरी से पर कोयल, एक साथे आई, की घरों की चौखट पर सब्जी ले ले आवाज लगाई, कौवे की दे आसमान पे दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुर्गा की रोटी खपटी सीधी खाई, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, पर चिड़ियों ने चुप चुप कर दादा जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई।
0: यानी चिड़िया क्या कह रही है कि परिश्रम से जो रोटी बनाई है तो उसका मजा कुछ अलग ही है ना? आकाशवाणी को फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, बहुत क्यूट सी आवाज हम तक पहुँच चुकी है ये नन्ही मुन्नी बाल दोस्त। कौन बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
3: दादा
0: ओजस्वी रायजादा, बहुत प्यारा सा नाम है आपका। कौन सी क्लास में हैं आप? ओजस्वी, आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
3: करना और कुछ नहीं।
0: अच्छा, आपके पास कौन कौन

0: कौन से टॉयज है? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए, खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए? क्यों? 20 सेकंड तक धोना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताइए, हम हाथ क्यों धोते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, जो हमारे हाथों में कीटाणु होते हैं वो क्या होता है, वो खाने के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, तो इसलिए हाथ धोना चाहिए। अच्छा आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अच्छा सनफ्लावर कौन से कलर का होता है?
1: येलो
0: येलो। और कौन कौन से चीजें येलो कलर में होती हैं? हाँ बनाना भी येलो होता है। अच्छा आपके पास कौन कौन से कलर के कपड़े हैं? ओहो भाई क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे कलर के आपके पास कपड़े हैं, फिर तो आप बहुत खूबसूरत लगती होंगी। ओहो परी जैसी लगती हैं भाई, बच्चे तो होते हैं बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा आप कहीं घूमने गई हैं मम्मी पापा के साथ? कहाँ पर? अच्छा मसूरी में कैंपटी फॉल गई थी, वहाँ पर झरना बहता है। अच्छा बाहर जाने से क्या होता है? हाँ मजा आता है और नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, है ना? और जब टीवी पर वही जगह दिखाई जाती है तो हम कहते हैं मम्मी मम्मी देखो हम यहाँ पर गए थे ना घूमने, ऐसा होता है ना? अच्छा पेड़ लगाने से क्या होता है बताए? ओहो अरे वाह, आपने तो बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। हाँ पेड़ों में पानी देती हैं? इतनी मीठी मीठी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए नन्हे मुन्ने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं, तो चलते चलते उन्हें क्या सुनाना चाहेंगी, क्या तैयारी है आपकी?
1: सुनाऊंगी
0: हाँ सुनाइए। हाँ भाई वाह क्या बात है, आकाशवाणी को फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भाई कौन? ननी मनी बाल दोस्त हमसे मुखातिब है, अपना नाम बताइए। काव्या आप कौन सी क्लास में हैं? अच्छा ये बताइए कि योग करने से क्या फायदा है?
1: स्वस्थ रहते हैं,
0: हाँ और क्या होता है?
1: हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। हाँ
0: हाँ यानी कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: रोज योग करती हूँ पापा के साथ।
0: पापा के साथ, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारे बड़ों का साथ होना बहुत जरूरी है ना? अच्छा तंदुरुस्त रहने के लिए हमें और क्या-क्या करना चाहिए?
1: पौष्टिक खाना खाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात। और जो नन्हे मुन्ने बाल दोस्त हैं उनको तो हर सुबह दूध पीना चाहिए, आप दूध पीती हैं ना?
1: हाँ मैं पीती हूँ दो बार। पराठे,
0: और नाश्ते में क्या-क्या लेती हैं आप बताइए?
1: सब्जी, दलिया मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, मैं दलिया खाती हूँ।
0: हाँ अच्छा आपको और क्या-क्या पसंद है?
1: मुझे क्राफ्ट पसंद है।
0: ओ क्राफ्ट में क्या-क्या बनाया है आपने?
1: मैंने कंडली बनाया है, बहुत सारे कार्ड बनाए हैं। मैंने इस बार अपने हाथ से दिए बनाकर वो जलाए थे। हाँ
0: अच्छा भाई वाह, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप बना लेती हैं। अच्छा वॉल हैंगिंग वगैरह भी बनाया आपने? पेन स्टैंड, स्टिक्स आती हैं, उसकी नाव बहुत अच्छी बनाई जा सकती है।
1: हाँ मैंने बनाया ये सब।
0: आगे चलकर आप क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं एक पेंटर बनना चाहती हूँ।
0: यानी कि पेंटिंग भी बड़ी अच्छी बना लेती होंगी, है ना? क्या क्या बनाया है पेंटिंग में आपने?
1: मैंने बहुत सी चीजें बनाई है, फूल बनाए हैं, कार्टून बनाए हैं।
0: आहा कार्टून बनाए हैं,
1: हाँ
0: और उसको जब कलर किए होंगे तो बड़े सुंदर लग रहे होंगे वो तो। इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने बनाई हैं, और बहुत सारे जब बच्चे हमसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। आपकी सोच बिल्कुल अलग है कि आप कह रही हैं कि हम पेंटर पेंटर बनना चाहते हैं, आप क्या आइडिया?

0: बिल कौन है?
1: एमएस हुसैन।
0: ओ भाई क्या बात है, फिर तो देखिए उन्होंने भी कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं।
1: उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है।
0: और जब आप भी उनको अपना आइडल मानती हैं, मैं आकाशवाणी परिवार की दुआएं आपके साथ हैं कि आप बहुत अच्छी जो है आर्टिस्ट बने। अच्छा ये बताइए, चलते चलते नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: सुनाइए अपनी कविता।
1: हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे। आए सब किसान सामने, रोक न हमको पाएंगे। हमें न समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। दिल से हैं मजबूत बड़े हम, तन के लगते दुबले हैं।
0: आकाशवाणी को फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई भाई क्या कहने हैं, और हम देख रहे हैं नन्ही मुन्नी बाल दोस्त हमसे जुड़ने वाली हैं। हेलो अंकुर से, तो आइए देखते हैं कौन नन्ही मुन्नी बाल दोस्त हमसे मुखातिब होने जा रही हैं। हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते। आपका नमस्ते स्वीकार कर लिया गया है। कौन नन्ही मुन्नी बाल दोस्त बात कर रही हैं? अपना नाम बताएं
1: मेरा नाम सिद्धि है।
0: और अपने मम्मी पापा का भी नाम बताइए।
1: मेरे पापा का नाम सुरेंद्र पाल और मेरी मम्मी का नाम दीपा कुमारी।
0: और आप कौन सी क्लास में हैं?
1: मैं क्लास 5th में हूँ।
0: और ये बताइए सहेलियां हैं आपकी,
1: हाँ,
0: क्या नाम है उनके?
1: पावनी, श्रेया, वेदिका।
0: अच्छा तो खूब खेलती हैं,
1: हाँ,
0: कौन कौन से खेल खेलती हैं जरा बताइए।
1: हम लोग बैडमिंटन, क्रिकेट।
0: पढ़ाई भी खूब अच्छे से करती होंगी फिर तो, क्लास
1: हाँ,
0: वर्क में कैसे हेल्प करती है एक दूसरे की?
1: हम टीचर से हेल्प ले लेते हैं अगर हमें कुछ समझ नहीं आता।
0: कहीं घूमने गई है, घूमने जाना कैसा लगता है आपको?
1: मैं मथुरा गई थी अभी।
0: हाँ मथुरा में क्या देखा जरा कुछ बताएं, जो जो जगह आपने देखी है वो बताएं नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को।
1: मैं गई थी वृंदावन, प्रेम मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर।
0: वहाँ मथुरा में एक नदी भी तो बहती है,
1: यमुना।
0: यमुना नदी, बहुत अच्छे। और वहाँ की एक मिठाई भी बहुत मशहूर है मथुरा की, कौन सी वाली बताएं जरा।
1: मथुरा का पेड़ा।
0: बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर।
0: हाँ देखिए डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत पढ़ाई की जरूरत है, बहुत नॉलेज की जरूरत है, तो आपको अभी से बहुत सतर्क रहना होगा पढ़ाई को लेकर के। तो ऐसा करेंगी ना आप?
1: मैं बहुत अच्छे से तैयारी करती हूँ। मेरे इस बार मार्क्स भी अच्छे आए थे और फाइनल की तैयारी भी अच्छे से करने की।
0: तो वाकई में ये मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी, और कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो इसका फल भी आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। और बताइए नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों से क्या कहना चाहती हैं? वो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे मुखातिब हैं, वो आपसे मुखातिब हैं, तो क्या कहना चाहती हैं नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों से पढ़ाई को लेकर के?
1: बाल दोस्तों से मैं कहना चाहती हूँ कि वो मेहनत से पढ़े, खूब अच्छे से पढ़े, अपना क्लास वर्क कंप्लीट करे, साफ सफाई से ध्यान रखे, मच्छरदानी का प्रयोग करे और मच्छरदानी में सोए, इलास्टिन के कपड़े पहनकर सोए।
0: आपके कहने का मतलब है कि हमें जो है फुल कपड़े पहनकर सोना चाहिए, जैसे कि लोअर है और फुल टी शर्ट वगैरह है। बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। तो नन्हे मुन्ने बाल दोस्त अपना ख्याल रखें, पौष्टिक आहार लें। तो क्या सुनाना चाहती हैं आप?
1: मैं कविता सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल सुनाइए, बहुत बहुत स्वागत है।
1: प्रकृति का वरदान है पेड़, मानव पर उपकार है पेड़। इन पेड़ों की छटा निराली, इनसे ही सब और हरियाली। धूप में छाया है पेड़, भूखे का भोजन है पेड़। सब कुछ तो यह दे देते हैं, कभी न रखे अपनी खैर। अगर काटोगे इसको तुम, जीवन कहाँ से पाओगे। इनसे ही तो सांसें मिलती, सांसें कहाँ से लाओगे।
0: मीठी मीठी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
4: अच्छा नाजमा दीदी
0: जी। भैया
4: मैंने आपको बोलने से पहले खुद बोल दिया।
0: बहुत अच्छा किया।
4: मैं कहना ये चाह रहा हूँ
0: जी
4: कि जो राजादा बच्ची थी पहली वाली
0: जी
4: जिससे आपने बातचीत करी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने चेक किया?
0: जी बिल्कुल।
4: आपने कहा

0: पूछा कि सनफ्लावर किस कलर का होता है, तो उस बच्ची ने कहा कि
1: येलो
0: येलो कलर का।
1: जी
0: बोले बनाना भी तो होता है येलो कलर का। कितना अच्छा लगा।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: ये
1: बात है
0: कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बच्चों में होता
1: जी।
0: है वो धीरे धीरे और ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो वो और ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग की ओर बढ़ने लगते
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल, ये तो बातें तभी होंगी ना संजय भैया जब हम बच्चों को प्रेरित करेंगे,
0: बिल्कुल
1: उनसे हम क्या करना चाहिए कि एक शब्द दे दें और कहें कि बच्चों इस पे 5 शब्द बोलिए, है
0: बिल्कुल
1: ना, और
0: बिल्कुल
1: 5 लाइनें लिखिए इसके ऊपर। तो हम बताएं आपको, हमारे बचपन में हमारे पापा जी ऐसे ही किया करते थे। एक ताजमहल दे दिया
0: जी
1: और कहा कि भैया के गुड़िया आप इस पर जो है 10 लाइनें बताइए। अब हम बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, बच्चे कुछ भी बोलेंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उनकी आदत इस तरीके से बनाई है
0: डेवलप
1: ना
0: हो जाती है
1: जी।
0: बहुत सारी चीजें।
1: और देखिए अभी उससे पहले एक और बच्चे ने सोलर पैनल की बात की है ना,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: सोलर पैनल भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है आज के दौर में, है ना, क्योंकि जो बिजली है वो कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन जो सोलर पैनल है वो जो है उसको उससे हर वक्त आपको लाइट मिलेगी, है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए अब सुनते हैं एक गीत संजय भैया
0: गीत इसलिए भी सुनवा रहे हैं बच्चों को कि
1: जी
0: हमारी बातों से वो बोर ना हो, है ना।
1: जी
0: और मामा की बात आती है तो चंदा मामा का नाम अपने आप दिमाग में आ जाता है ना।
1: बिल्कुल जी
0: आता है या नहीं?
1: बिल्कुल आ जाता है।

0: जवाब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: नाज़मा, ये जो गाना था चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, ये एक फिल्म थी कर्तव्य
3: जी।
2: धर्मेंद्र जो इसके मुख्य अभिनेता थे
3: जी,
2: और जंगलों को बचाने के कंटेंट पर आधारित थी।
3: अच्छा।
2: और इतनी अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी। और जो इसमें बच्ची ने जो किरदार किया, जो अभी आपने गाना सुना प्यारे बच्चों
3: जी,
2: इस बच्ची ने भी जो अभिनय किया था, एक्टिंग की थी, वो भी बड़ी शानदार थी
3: जी, बड़ी लाजवाब थी। और प्यारे बाल साथियों, अब हम आपको बताएंगे, क्या आप जानते हैं कि अंतर्गत जाट रेजिमेंट के बारे में, क्योंकि जानकारियों की बात चल रही है तो ये सिलसिला जारी है बच्चों। जाट रेजिमेंट ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है।
2: अच्छा, वर्ष 1995 में नाज़मा इसकी शुरुआत हुई थी।
3: अच्छा।
2: इसकी सबसे खास बात यह है कि शांति सुरक्षा अभियानों में इसका जो योगदान है बहुत अच्छा रहा है।
3: और
2: ये सेना की सबसे अधिक सम्मानित रेजिमेंटों में गिनी जाती है। यही पर इस रेजिमेंट में सैनिकों को अनेकों वीरता पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
3: क्या बात है। और बच्चों आगे बताएं हम कि बरेली में इसका मुख्यालय है और यहीं से सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है संजय भैया। यही नहीं, सैन्य अनुशासन, शारीरिक क्षमता और नेतृत्व करना भी सिखाया जाता है। जाट रेजिमेंटल सेंटर के कारण ही बरेली शहर देश भर में जाना जाता है और यहाँ पर समय समय पर भर्ती रैलियाँ, परेड तथा सैन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं बच्चों। यहीं पर रेजिमेंट का संग्रहालय भी है, जहाँ पुराने हथियार, वर्दियाँ, पदक और ऐतिहासिक तस्वीरें सुरक्षित रखी गई हैं। तो मजा आया ना संजय भैया, काफी अच्छी
2: मैं
3: जानकारी
2: तो
3: मिली।
2: जब सैनिकों की बातें होती है ना
3: जी,
2: रेजिमेंट कोई भी हो तो वो कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
3: बिल्कुल।
2: वो आपकी बातें सुन के, आपके आप जो बता रही हैं वो इतना अच्छे तरीके से बता रही हैं कि मैं बचपन में सोचता था कि मुझे भी आर्मी में जाना है लेकिन नहीं जा पाया।
3: अच्छा, एक हमारी सिस्टर है ना, वो पुलिस या आर्मी को देखती है तो डर जाती है।
2: अरे ये तो अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया।
3: तो हमने कहा अरे ये हमारी सुरक्षा के लिए है, इनसे डरने की कोई बात नहीं है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, कभी भी आप जब आर्मी मैन को, हमारे जो सेना के सैनिक होते हैं उनको देखते हैं, एक बार जब आप उनको ना जय हिंद बोलेंगे और सैल्यूट करेंगे
3: जी,
2: तो उनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है हमारे सैनिकों का
3: जी,
2: वो हमारे अंदर भी जोश भर देता है।
3: वाह, क्या बात है। और बच्चों अब हम चलते हैं सुंदरवन की ओर। बच्चों अक्सर आपने कहानियां सुनी होंगी, कॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि उसमें आप सुंदरवन का नाम अक्सर आता है कि बाल साथियों वही सुंदरवन है ये, जिसमें मीकू खरगोश, चंपू बंदर, सुरीली नाम की कोयल और पानी भरा तालाब और नदी बहती है, जिसमें सभी जो है पशु पक्षी वहां पानी पीने आते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं, है ना?
2: नहीं, आप नाज़मा वो तो जो कॉमिक्स हुआ करती थी उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं।
3: बिल्कुल कर रहे हैं, पढ़ी है ना आपने भी कॉमिक्स?
2: अरे मैंने चाचा चौधरी की जो कॉमिक्स होती थी, वो डंडा लेके खड़े होते थे और हर समस्या का समाधान होता था उनके पास।
3: बिल्कुल सही का। और देखिए आजकल बच्चे क्या है, फोन पर लगे हुए हैं तो कॉमिक्स पढ़े, है ना, चंपक पढ़े, इसमें बड़ा आनंद आएगा और बहुत सारी जानकारी मिलेगी।
2: अच्छा नाज़मा, हमने ये सुना है एक कॉमिक थी, कॉमिक्स थी जिसमें आप लंबू पतलू को देखकर
3: मोटू पतलू
2: मोटू पतलू को देखकर डर डर जाया कर।

0: तो ऐसा क्या कारण था?
1: अरे मोटू पतलू वो तो मोटू थे, गपा गप समोसे खाते थे, गपा गप गपा गप। हाँ। और पतलू भी उनके साथ भागते रहते
0: नहीं
1: थे।
0: आप डरती क्यों थी?
1: अच्छा डरते इसलिए थे क्योंकि उनके हाथ में लठ रहता था।
0: अच्छा तो लठ से आज भी डरती होंगी आप?
1: बिल्कुल। और बच्चों भाई देखिए ये तो हो गई कहानी की बातें और जो सुना रहे थे हम, बल्कि सचमुच में अगर सुंदर वन की सैर के लिए अगर हमें जाना है तो बच्चों हम चलेंगे अपने ही देश में। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि
0: देखो नाजमा, सुंदरबन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई, पता लग गया बच्चों को इस।
0: हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा में फैला हुआ है।
1: काफी बड़ा एरिया हो गया,
0: बहुत बड़ा एरिया हो गया। इसका एक बड़ा भाग जो बांग्लादेश है उसमें भी है।
1: अच्छा।
0: और ये परगना जिले में स्थित है।
1: अच्छा।
0: पूरा सुंदरबन का लगभग क्षेत्र 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
1: इतना बड़ा हो गया है ना?
0: अरे बिल्कुल।
1: और बच्चा हम आपको बताएं, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वारीय मैग्रोव वन माना जाता है। इस सुंदरबन की विशेषता ये है, यहाँ पर कई सारी छोटी बड़ी नदियाँ, नाले और द्वीप हैं। ज्वार भाटा के कारण यहाँ का दृश्य सज्जे भैया लगातार बदलता रहता है।
0: हाँ नाजमा, ज्वार भाटा को हम जस्टिफाई भी कर देते हैं बच्चों को।
1: जी जी।
0: ज्वार भाटा का जैसा हमने सुना है और देखा भी है कि कुछ समय ऐसा होता है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जब समुद्र का पानी किनारे के ऊपर तक आ जाता है।
1: अच्छा।
0: और जब वो समय निकल जाता है तो फिर पानी धीरे धीरे पीछे की ओर चला जाता।
1: अच्छा।
0: है तो ये छोटी सी एक जानकारी थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भी कई रीजन है, खैर आगे हम आपको बता देते हैं। हाँ। कि ये क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और
1: अच्छा।
0: नाजमा बताएं आपको?
1: बताइए।
0: रॉयल बंगाल टाइगर।
1: ओ।
0: जो टाइगर होता है ना वहाँ का, वो सुंदरबन का सबसे प्रसिद्ध पशु है। यहाँ के बाघ तैरने में भी बड़े कुशल होते हैं बच्चों,
1: जबकि तैरते नहीं है अक्सर देखा गया है, मगर यहाँ के कुशल है।
0: जी
1: है
0: जी जी। और इसके अलावा सुंदरबन में हिरन, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, ऊद बिलाव, सियार, सरीसृप में बात करें तो मगरमच्छ, किंग कोबरा, मॉनिटर, छिपकली भी होते हैं।
1: ओफो, बड़ी खतरनाक चीजें हैं बच्चों यहाँ पर। और पक्षियों के तो कहने ही क्या, देखे तो मन करे पकड़ ले संजय भैया, जैसे सारस है, हिरन है, ईगल है, और इसके अलावा प्रवासी पक्षी भी हैं। और आपको बताएं बच्चों, 250 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं यहाँ पर। और जलीय जीव की अगर बात करें तो केकड़े, झींगे, डॉल्फिन और ना जाने क्या क्या।
0: और नाजमा एक आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ।
1: हाँ जी।
0: बच्चों को ये बता दूं, केकड़े हमेशा काले नहीं होते,
1: सफेद भी होते हैं।
0: सफेद भी होते हैं, रेड जैसे हमारा ब्लड का कलर होता है ना, उस कलर के भी केकड़े होते हैं।
1: अरे बाबा।
0: और जब हमने समुद्र के किनारे केकड़े देखे तो वो बहुत बड़े बड़े और रेड कलर के।
1: अरे बाबा।
0: तो मैंने कहा अरे ये तो हमने पहली बार देखे। तो बच्चों कभी भी कोई पूछे केकड़ों का कलर तो एक मत बताना।
1: हाँ,
0: कई प्रकार के कलर होते हैं
1: भाई वाह। और तो और इतने अजीबोगरीब तरह के वृक्ष होते हैं यहाँ पर। सुंदरवन का नाम अच्छा क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के पेड़ ज्यादा हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा। और देखिए बच्चों, पेड़ तो वैसे भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इनका ख्याल रखिएगा, इनको लगाइए अपने घर के आसपास, जिससे वातावरण अपना जो है सुंदर बना रहे और स्वच्छ बना रहे।
0: अच्छा बच्चों, ये सोचा है कभी आपने कि आजकल गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी क्यों पड़ती है, बारिशों में बहुत ज्यादा बारिश क्यों होती है?
1: क्योंकि पेड़ कटते चले जा रहे हैं। अच्छा, पेड़ कटेंगे, पेड़ होंगे नहीं, तो ये सब चीजें कौन रोकेगा? तो ये सब चीजें पेड़ ही तो रोकते हैं।
0: हाँ, एक पौधा आम, जितने भी हमारे बच्चे हैं सुनने वाले कार्यक्रम अंकुर, वो एक पौधा जरूर लगाएं।
1: और क्योंकि अब तो छुट्टियां चल रही है तो बागवानी से जुड़े।
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो आइए सुनते हैं अब ये प्यारा सा गीत।
0: अच्छा नाजमा,
1: जी
0: गीत की ओर आप चल देती हैं, तो गीत सुनने का आपको अच्छा लगता है या बच्चों को सुनाना अच्छा लगता है?
1: देखिए, हमें भी सुनना बहुत पसंद है और बच्चों को भी सुनाना बहुत पसंद
0: तो
1: है।
0: चलिए मैं भी आज सुन लेता हूं आपके साथ और बच्चों के साथ ये गीत।

0: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: चिड़िया चू चू करती हैं, तोते ताली बजाते हैं।
3: चू चू करते तो देखे लेकिन तोते ताली कब बजाते हुए देखे हमने?
2: अब देखिए बच्चों के लिए तो चलेगा संजय भैया।
3: अच्छा,
2: अच्छा ये बताइए कि क्योंकि चिड़ियों की बात चली है तो ये चिड़ियों की जो चहचहाट है पहाड़ी इलाकों में कैसी सुनाई देती है, क्योंकि आपको तो बड़ा शौक है पहाड़ी इलाकों में घूमने का।
3: हाँ नाजमा, देखिए जैसे कि हमारे शहरों से जो चिड़िया गौरैया या और भी पक्षी नदारद होते जा रहे हैं, पहाड़ों में भी अक्सर मैंने देखा कि बहुत कम संख्या में वहां पर जो चिड़िया हैं पक्षी हैं वो दिखाई देते हैं। या तो ये रीजन रहा होगा कि उनको हमारे शहरों में खाने को कम मिलता है इसलिए वो जंगलों में पहाड़ों में चले जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में शहरों के मुकाबले अधिक पक्षियों को देखा जा सकता है।
2: अच्छा, और जैसे वहां का देखा होगा कहीं चोटियां दिखाई दे रही हैं। एक बार आप बुग्याल के बारे में बता रहे थे।
3: हाँ हाँ, बुग्याल से याद आया, मैं गया था डलहौजी
2: जी,
3: और डलहौजी साथियों बहुत सुंदर प्राकृतिक नजारे वहां देखने को मिलते हैं, और वहां पे एक बुग्याल है, खजियार एक जगह है।
2: अच्छा,
3: और वहां का जब बुग्याल हम वीडियो में या फोटो में देखते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन जब हम वहां गए तो आप यकीन मानिए हमारे देश का वो स्थान जो डलहौजी के खजियार में है वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है।
2: अच्छा,
3: वहां जब पहुंचते हैं तो बर्फ की चादर मोटी मोटी ढकी रहती है, फैली रहती है। तो एक बार बच्चों से कहेंगे कि अगर मम्मी पापा आपके राजी हो जाएं तो आप वहां जरूर जाएं।
2: अरे वाह भाई, क्या बात है। तो बच्चे तैयारी कर लीजिए आप भी जाने की। और संजय भैया, अब बारी आ गई है नए आज के जो सवाल है उनको बताने की। तो पहला सवाल है, गोदान पुस्तक किन कवि द्वारा लिखी गई है? और दूसरा प्रश्न है बच्चों, पांच नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न है, सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? और चौथा प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पांचवा और आखिरी प्रश्न है, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? और बच्चों अब बारी आ गई है,
3: भी बता दीजिए नाजमा।
2: इसके उत्तर तो हम अगले संडे को बताएंगे। अब जो पिछले संडे को हमने सवाल पूछे थे उनके जवाब हम अब बता देते। तो पहला सवाल बच्चों हमने पिछले

0: संडे को पूछा था, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, जल की अधिकता के कारण। और दूसरा प्रश्न पूछा था, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बच्चों, इसका उत्तर है बिट। और तीसरा प्रश्न पूछा था, कबीर दास जी के को कौन से काल का कवि माना जाता है? तो बच्चों, इसका उत्तर है भक्ति काल का। और शतरंज खेल में, ये पूछा था हमने, चौथा प्रश्न था, शतरंज खेल में कुल कितनी गोटियां होती हैं? बच्चों, तो 32 होती है। और लास्ट वाला जो था, एक मुहावरे के रूप में प्रश्न था कि गागर में सागर भरना। तो बच्चों, इसका उत्तर है थोड़े शब्दों में बहुत बात कहना। तो अब चलने का समय हो गया है संजय भैया,
1: जी बिल्कुल
0: और समय हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन

0: और शतरंज खेल में ये पूछा था हमने, चौथा प्रश्न था, शतरंज खेल में कुल कितनी गोटियां होती हैं बच्चों? तो 32 होती है। और अकल लास्ट वाला जो था एक मुहावरे के रूप में प्रश्न था कि गागर में सागर भरना, तो बच्चों इसका उत्तर है थोड़े शब्दों में बहुत बात कहना। तो अब चलने का समय हो गया है संजय भैया,
1: जी बिल्कुल,
0: और समय हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आज बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया, और नेक्स्ट संडे और भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और चलते चलते हमें इजाज़त दीजिए, आज्ञा लेते हैं,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे बच्चों का प्रिय कार्यक्रम अंकुर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: श्रोताओं नमस्कार, मेरे साथ हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार और कार्यक्रम है स्वस्थ बचपन। एक बार फिर स्वस्थ बचपन कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्रोताओं के साथ।
6: पांडे जी आपको और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
5: सबसे पहले ये बताइए डॉक्टर साहब, जो नवजात शिशु हैं उनकी गंभीर बीमारियां कौन कौन सी हैं?
6: देखिए नवजात शिशु जब पैदा होता है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत सांस लेना शुरू करे।
5: जी,
6: तो जब बच्चा पहली सांस लेना शुरू करता है तो रोने के साथ शुरू करता है और उस रोने का बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और वो जब रोता है तो सांस अंदर खींचता है
5: जी,
6: और उसके फेफड़े खुलना शुरू होते हैं, वो अपनी सांस लेना शुरू करता है।
5: अच्छा।
6: जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो माँ पर सांस अपनी नहीं लेता।
5: हाँ।
6: माँ के जरिए ही उसको ऑक्सीजन सब मिलती है और सारे को न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन सप्लाई सब माँ से होती है,
5: यानी शरीर की सारी जरूरतें माँ के करुणाल के द्वारा उसे पूरी हो रही होती हैं।
6: लेकिन शिशु जैसे ही पैदा होता है तो उसको अपनी सांस लेनी पड़ती है और वो सांस प्रॉपर आनी चाहिए। जैसे लैंडिंग किसी भी प्लेन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसे शिशु की लैंडिंग इस दुनिया में बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पैदा होने के बाद शिशु को तुरंत रोना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश या तो गर्भ में पहले से कोई दिक्कत थी, माँ को दिक्कत थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था या शुगर की तकलीफ थी या कई बार थायराइड की प्रॉब्लम थी या ब्लड ग्रुप ऐसा था कि जो इनकम्पेटेबल हो बच्चे के साथ, तो उस समय अगर माँ बीमार थी उसकी वजह से या फिर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुई, कई बार एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, पानी की मात्रा कम हो गई या कई बार पानी की मात्रा बहुत अधिक हो गई, या फिर कुछ माँ होती हैं जिनकी कुछ कारणों की वजह से हमेशा प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है, तो उस समय बच्चा पैदा होने के बाद एक खतरे में होता है कि वो अपना ठीक से जीवन शुरू कर पाए या ना।
5: जी जी,
6: तो उन बच्चों में आपको वहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि बच्चे को रिवाइव कर सके।
5: डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कहा कि बच्चा जब पहली बार इस दुनिया में आंखें खोलता है तो आंखें खोलते ही उसको सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है और वो रोने के साथ
6: शुरुआत करते हैं।
5: जी, यानी रोते हुए आते हैं सब। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात
6: हुए आते हैं सब।
5: जी जी,
6: हंसता हुआ जो जाएगा।
5: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और रोने के साथ भले ही जीवन की शुरुआत होती हो लेकिन ये बहुत अच्छा साइन है अगर बच्चा तुरंत रोया हो तो। अगर नहीं रोता

0: है
1: तो वो माँ बाप को रुला देता है
0: जी।
1: जो बच्चा अगर पैदा होने के तुरंत बाद होता है तो बहुत सारी परेशानियां उसके जीवन में और माँ बाप के जीवन में भी आने की संभावना रहती है, क्योंकि उस समय बच्चा ना रोने की वजह से उसके जो ब्रेन को असर पड़ता है, दिमाग को जो असर आता है, उसके बाद कई बार बच्चों को एनसेफलोपैथी हो सकती है, हाइपोक्सिक इश्मिक एनसेफलोपैथी, जिसकी वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं और वो जीवन पर्यंत उस बच्चे के लिए नुकसान दे सकते हैं। जैसे उन बच्चों में फिर देर से बैठना, देर से बोलना, देर से चलना, या कई बार बोल नहीं पाना, या उन मेंटली डिसेबल हो जाना
0: जी,
1: है ना। तो शारीरिक मानसिक दोनों तरफ से विकलांग हो सकते हैं वो बच्चे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा पैदा होते ही रोए। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही तुरंत नहीं रो रहा है, उसको रिसस्टेशन करना पड़ता है, जिसको हम CPR बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टेशन। उसके बाद बच्चे को, क्योंकि बच्चे ने सांस खराब थी या सांस ली नहीं, इन बच्चों को फिर वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर्स वो मशीन है जो बच्चे को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सांस देने के काम आता है।
0: डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर की बात भी विस्तार से आपसे करेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे वो गीत जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं जस्ट अभी।
1: एक गीत है किशोर कुमार की आवाज में, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए,
0: गौतम गोविंदा फिल्म का गीत हम सुनवा रहे हैं श्रोताओं आप सभी को, डॉक्टर कुलदीप।

0: सर आपने वेंटिलेटर की बात की, तो क्या वेंटिलेटर के इस्तेमाल से बच्चों में जिस तरह की समस्याएं जीवन पर्यंत हो सकती हैं, उन समस्याओं को होने से हम बचा सकते हैं अगर इन बच्चों को वेंटिलेटर जैसी मशीन की सुविधा मिल जाए?
1: तो वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाए उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसका तुरंत रेसिस्टेशन हो
0: जी,
1: क्योंकि 3 मिनट के बाद अगर किसी बच्चे को हाइपोक्सिया रहता है तो उसका ब्रेन के जो डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो विद इन 3 मिनट्स उसको रिवाइव करना जरूरी होता है।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे अगर कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या कोई हेल्थ वर्कर है जो बच्चे को रिवाइव कर सके, और उसके बाद कंटिन्यूस करने के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला काम तो CPR देना है जिससे बच्चा रिवाइव हो, बच्चे में सांस आना शुरू हो, बच्चे का दिल की धड़कन ठीक होना शुरू हो।
0: जी,
1: कोई भी बच्चा जो पैदा होता है तो उसके दिल की धड़कन 100 पर मिनट से अधिक होना चाहिए।
0: अच्छा,
1: और सैचुरेशन उसका 5 मिनट में 90 से ऊपर आ जाना चाहिए। बच्चे का सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है, बच्चा प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, इरेगुलर जर्की ब्रीदिंग है, उसकी सांस खराब है, या बच्चा किनार है, तो इन बच्चों को वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। जो नवजात शिशु के वेंटिलेटर्स होते हैं वो अति अलग तरह के होते हैं, क्योंकि उनमें जो

0: मिनट वेंटिलेशन है या टाइडल वॉल्यूम में बहुत ही एक्यूरेट होने चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो उनकी जो फ्लो सेंसर्स होते हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि उनके जो आप वेंटिलेट कर रहे हैं बच्चे को, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत फाइन होना चाहिए।
1: जी जी।
0: तो नवजात शिशुओं के लिए जो वेंटिलेटर्स हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और डेडिकेटेड हैं नवजात शिशुओं के लिए।
1: यानी जो बड़ों के वेंटिलेटर हैं बच्चों के वेंटिलेटर हैं वो अलग अलग
0: अलग हैं, और बड़े वाले वेंटिलेटर्स बच्चों में इस्तेमाल नहीं किए जाते।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये और बताइएगा कि जो वेंटिलेटर मशीन है ये क्या मदद करती है बच्चे को? क्या सिर्फ सांस में ही मदद करती है, कुछ और भी कार्य हैं इसके?
0: ये देखिए, जीवन के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक सांस लेना, एक दिल का काम करना।
1: जी।
0: तो अगर हम सांस नहीं लेते हैं तो थोड़ी देर में दिल पे भी बुरा असर आने लगता है और दिल भी काम करना छोड़ देता है।
1: जी जी।
0: तो जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सांस लेना है।
1: जी।
0: तो जो वेंटिलेटर मशीन काम करती है वो सांस में काम करती है।
1: अच्छा।
0: हम सांस के द्वारा क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं।
1: जी।
0: तो वेंटिलेटर ये दोनों काम करता है, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन का। तो जो बच्चे के हिसाब से आपको वेंटिलेटर मशीन सेट करनी होती है कि कितने रेट पे देना है, कितना उसका TI रखना है, मतलब इंस्पिरेटरी टाइम रखना है।
1: जी।
0: कितनी FiO2 देनी है, कितनी ऑक्सीजन देनी है, और कौन सी मोड पे आपको चलाना है, कितना प्रेशर देना है, कितना पीप देनी है, ये सब बातें बच्चे के वजन के हिसाब से और बच्चे की कंडीशन देख के हम लोग तय करते हैं, फिर बच्चे को मशीन पे लगाते हैं, उसके बाद वेंटिलेट करते हैं।
1: जी, आपने इतनी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब, आप भी एक डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि कितने परसेंट क्या देना है, क्या करना है, मशीन को कैसे चलाना है। लेकिन नर्सरी में या जहां पर बच्चे भर्ती रहते हैं वहां हर समय तो आप रहते नहीं हैं, तो वहां पर किस तरह से ये सारी चीज़ें कौन चलाता है, क्या जो लोग हैं वहां पर वो सब ये सब बातें जानते हैं?
0: जी, आपका उसके लिए ये बहुत ज़रूरी कि आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट हो, आपके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो वो इन सब बातों को समझते हो, और हाउ टू वेंटिलेट, कैसे वेंटिलेट करना है, क्या सेटिंग देनी है, और सब कंडीशंस को जानते हुए फिर एसेप्सिस भी बहुत मेंटेन करना कि कोई इन्फेक्शन आप हॉस्पिटल से इंट्रोड्यूस ना कर लें।
1: जी जी।
0: क्योंकि उसको अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया, आपने इंट्यूएट कर भी लिया, बच्चा बचा लिया, तो बाद में वो सेप्सिस में चला जाने पर उसको फिर से नुकसान होता।
1: जी।
0: तो इन सब बातों को लिए जरूरी कि आपका स्टाफ इतना कॉम्पिटेंट हो, इतना समझदार हो, और जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सके। कि डॉक्टर्स तो जाते हैं, राउंड लेते हैं, सुबह शाम देखते हैं, दिन में दो बार देखते हैं, लेकिन बाकी टाइम तो मॉनिटरिंग आपका नर्सिंग स्टाफ करता है। तो दे शुड बी कैपेबल एंड दे शुड बी कॉम्पिटेंट।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और आजकल तो तकनीक का दौर है, आप कहीं भी हों, अगर आपको चिंता है और देखना है कुछ भी, तो आप कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल फोन में कहीं भी देख सकते हैं,
0: कैमरे देख सकते हैं। दूसरा, आप मॉनिटर्स जो होते हैं वो भी आपके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: तो किसी बच्चे को आप क्या सेटिंग चल रही है, क्या आप उसके वाइटल्स आ रहे हैं, वो आप सब चेक कर सकते हैं।
1: जी जी। और उसी हिसाब से अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देकर
0: वीडियो कॉल करके भी आप बच्चे को देख सकते हैं और समझ सकते हैं बच्चे।
1: तो जो नवजात शिशु है उसके इलाज में वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित ही वेंटिलेटर की है, लेकिन उससे ज्यादा भूमिका है उन लोगों की जो उस वेंटिलेटर को चला रहे हैं और उसको वॉच कर रहे हैं, बच्चे का इलाज कर रहे हैं।
0: वैसे ही जैसे पायलट चाहिए आपके लिए।
1: जी।
0: किसी एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, है ना।
1: जी।
0: एयरक्राफ्ट आप खरीद लो, उसके बाद आपके पास पायलट नहीं है, आप खुद तो चला नहीं सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपके लिए ऐसी स्टाफ का बहुत अच्छा होना जरूरी है।
1: जी। और अब जरूरी है हमारे इस प्रोग्राम के लिए एक और गीत जो आप सुनवाने वाले हैं।
0: एक गाना है चल अकेला मुकेश की आवाज,
1: संबंध फिल्म का गीत। श्रोताओ, हम आप सभी को सुनवा रहे हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद पर, और अगले कार्यक्रम में एक बार फिर आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी को लेकर।

0: रहे थे गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। कुछ ही क्षणों में अगला कार्यक्रम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और लीजिए सुनिए दीप मणि और नेहा भसीन की आवाजों में रेस 3 फिल्म का एक गीत। कुमार ने इस गीत की रचना की है, संगीत मीत ब्रोज का।

आज विश्व रक्तदाता दिवस है। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी सहायता किसी के लिए जीवन बन सकती है। साथियों, रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। आज जरूरत है कि हम डर और भ्रम से ऊपर उठकर नियमित रूप से रक्तदान करें। आपका एक यूनिट रक्त किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। आइए इस दिन संकल्प लें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं है। ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें ब्लड ग्रुप ए बी ओ की इन्होंने खोज की थी। इसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा 2004 में स्थापित किया और मनाया गया था। आइए अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनते हैं, फिल्म भूल भुलैया 3 से आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार की आवाजें। गीत और संगीत आदित्य रिखारी का।

भूल भुलैया 3 इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू।

0: थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

0: सारा।
1: बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा, एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: पद्मभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: लिखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं, जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: बिन।
1: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
2: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे
0: बजता है छाया गीत।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाश।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 100.4 एफएम आकाशवाणी बरेली पर अब हम लेकर आए हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। नमस्कार, आदाब और अभिवादन। आप सुन रहे हैं आपका अपना चहेता कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां सुर भी आपके, एहसास भी आपके और फरमाइश भी आपकी। तो आइए यादों के इस खूबसूरत सफर पर चलते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के कुछ चुनिंदा नगमे। और हाँ, आज के प्रोग्राम में मैं हूँ संजय, लेकर हाजिर हूँ दिल से दिल तक पहुँचने वाला संगीत का ये खास सिलसिला।

प्रोग्राम में सबसे पहला गीत आपकी पसंद का ही सुनने का अनुरोध सुनना चाहा है आपकी पसंद कार्यक्रम में। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने फिल्म है धरती, गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। नागपुर महाराष्ट्र के कमल साहनी, हाजी डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी। वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी साहब, इमरान शेख और रेहान शेख। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष अंश का, यूनुस खान और सोफिया खान। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन, घनश्याम बाबू गौरी और हसन सिक्का। ग्राम दूलापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलबीर सिंह। ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम, डीजे प्रधान और उनके बहुत सारे साथी। मीरगंज बिजलीघर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी और कल्लू भाई मिस्त्री। चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश के मुकेश गौतम, सुनील अमन, बुद्धनगर खंडवा से नदीम भाई, बैजोई से राजू जी।

0: विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
1: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
0: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
2: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब सुनवाते हैं आपकी ही पसंद फिल्म है अजनबी किशोर कुमार और साथियों की आवाजें।

सुनना चाहे पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। पारसमणी रेडियो श्रोता संघ गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बाबड़ी से खुदा बख्श खलीफा, किंग रेडियो श्रोता संघ गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश के एम फारूक शेख, शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नेहावकर, निर्मला विशाल नारायण और सोपान ताइडे, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया अंसारी, गांव बंडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश और योगेश, साथ में है रजत और गर्मा बगड़िया। साथ ही सुना जाए अरुण चंद शर्मा रेणुका और उनके साथियों ने। दादा बाबू रोड गेड़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज और बेबी चाहत। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेघलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, नुजत फातिमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद और इस्लामुद्दीन बन्ने भाई, पप्पू भाई अंसारी, दही गांव नादुरा से ढोंडू भातुरकर, मंगला विवेक, भारती, प्रतीक्षा, कोमल, समाधान भातुरकर, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक बदायूं से धर्मवीर, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप, तो आइए अब हम आपको सुनवा देते हैं दिल को जोड़ने वाला हर सुर आपकी पसंद के संग।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं आपकी पसंद के अनुसार गाने का। सुनवा रहे हैं विश्वास फिल्म का वो गीत जिसे आवाजें दी हैं सुमन कल्याणपुर और साथियों ने। सुना जाए सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा से, साथ में शर्मा परिवार के सभी लोग।

साथियों, इसी गीत को सुनना चाहे छबीराम सिंह राजपूत और उनके साथियों ने। ऊपरकोट मोहल्ला चौकंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सोहान अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी लोगों ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा साहब, सीटी दीवाना और उनके बहुत सारे दोस्तों ने। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका। गांव जलालपुरा सहारनपुर उत्तर प्रदेश के श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविश और मुनीश देवी प्रजापति। ग्राम धुर्रा बांदा भाटापारा छत्तीसगढ़ के प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, साथ में है प्रणव सावले। सूरज शारदा, ये हमारे श्रोता जमशेदपुर से। साथी हैं कदमा।

0: की सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब बारी है उस गीत की जिसे लिया गया है आप तो ऐसे ना थे इस फिल्म से। मनहर उदास और साथियों की आवाजें। सुनना चाहे रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना हर्षित और खुशी गोस्वामी, कटरा चांद का मोरे मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य, सरलाही सोक नाहर नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल, वंदना, प्रियंका और उनके बहुत सारे साथी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, ग्राम कोठा मक्खन बरेली से रिजवान अंसारी, अफरोज फारूक और अंसारी परिवार के सभी लोग, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, पारसमणी रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जावेद राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू, अर्चना, मुन्नी, चांदनी, नंदनी, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह, शेखावत, संगीता, तुषार, रिंकी और उनके बहुत सारे परिवारीजन, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान, नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त खैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और उनके बहुत सारे परिवारीजन, नगल खेड़ा फागबाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल शर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, दूल्हापुर मुरादाबाद के मम्मा फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, नागपुर महाराष्ट्र के कमल साहनी और उनके बहुत सारे साथी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, साथ में है पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन, कुंडलेश्वर बाड़ खंडवा से

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मन्ना डे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में वो गीत जो लिया गया है फिल्म उजाला से। सुना जाए जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश के मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद, शेख मूसा और राजकुमार बोडाना, आदलपुरा गोगवा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी साहब, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक।

वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुस्ताक, मोहम्मद अल्तमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री। चनोरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा, उनके बहुत सारे साथी। चक 5 एमडी पतरोडा श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, रोशनी अंकुर, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल। सौगर धमतरी से छत्तीसगढ़ प्रदेश के हमारे साथी हैं फनेश कुमार, चंदन, सावित्री, मोहित, देविका, गजेंद्र और हेयांश। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु। अब बारी आती है उन श्रोता की जिनके अब हम नाम ले रहे हैं। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अबरार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, आशिक हुसैन और साथ में मुन्ना अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी, जस्सी, सीता और गीता। गांव रघुनाथपुरा से सतीश शर्मा, रोशनी, भावना, गरिमा, हिमांशी। सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल, लाडो, लवली, रजत, लव, कुश और समस्त खन्ना परिवार। श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक, बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और मन्नू।

तो साथियों अब सुनवा देते हैं आपको वो गीत जो हर गीत की अपनी कहानी है, हर श्रोता की अपनी निशानी है।

अब बरी है उस गीत की जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, फिल्म है हवस। सुना जाए टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रवींद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा ने। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित केशु रेतहान और साथ में तुलसी मस्किन। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। सिकलापुर मौर्य मंदिर बरेली से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद प्रकाश मौर्य। पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा, भूपेंद्र, सीमा, अनमोल, साहिबा गुप्ता और उनके बहुत सारे परिवारी जन। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष, सिक्का, कोयल, डुग्गू, भाविक और सिक्का परिवार के सभी लोग। वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ, खट से ललिता, संजना, गणेश, देविका, स्वाति और उनके बहुत सारे परिवारी लोग। राजपुर मध्य प्रदेश के घिसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरभ, कुणाल। धमतरी छत्तीसगढ़ के रामचंद मखीजा, काफिर भाई,

गीता स्वाति महेश कुमार कुकरेजा संध्या कुकरेजा माही पूजा छुटकी शरद कुमार डोडवानी और पूरा मखीजा कुटुंब कुमार गली श्री रामपुर से अशोक दले सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका पुनावले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका और विशाखा लाल कुर्ती रोड की कैंट से राजेश वर्मा मंजू निशांत कौशिक की दीपाली युवान और आर के राजा रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब

अब साथियों आ गए हैं उस गीत की ओर जो प्रोग्राम आपकी पसंद को पहुंचाएगा अपनी मंजिल पर। आइए अब सुनते हैं बेला सुलेखा और साथियों को फिल्म बाजार में। सुनना चाहा है सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो और उनके समस्त परिवार ने। ब्यावर राजस्थान के राज नारायण, सुमित्रा और सोनी। बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़। भोला कॉलोनी घरौंडा करनाल हरियाणा के ब्रजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी गुंजन साहिल और वाणी जयजान। बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़ और रानी गौड़। सागर लखनादौन मध्य प्रदेश के लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस माऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश के राजेश कुमार, प्रीति और कार्तिक आर्यन। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू सोनकार।

इसी मधुर एहसास के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। आपकी फरमाइश हो और अपना स्नेह यूं ही भेजते रहिए। फिर होगी मुलाकात नए गीतों, नई यादों और नई मुस्कानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, जाइएगा मत, क्योंकि बस कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में आने वाला है आपकी शिकायतों, आपके सुझावों पर आधारित गौरव सक्सेना की प्रस्तुति में कार्यक्रम आपका पत्र मिला। इंतजार कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला। आपके पत्रों को लेकर हाजिर हो रहे हैं गजेंद्र यादव और आपके पत्रों का उत्तर देंगे गौरव सक्सेना।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम में और स्टूडियो में स्वागत है गौरव सक्सेना जी आपका। आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। आप सभी का स्वागत है आपका पत्र मिला कार्यक्रम में। और गजेंद्र जी, आज फिर से जैसा कि हम देख रहे हैं मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है कल एक तेज आंधी के बाद।
1: जी, मौसम में काफी परिवर्तन हुआ है, तापमान भी बहुत नीचे आ गया और रात में तो एक बार को ऐसा लगा कि ठंड सी लग रही
2: है। अभी हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि जून आ गई है।
1: बिल्कुल।
2: और यही हाल हमारे श्रोताओं का भी होगा जहां

0: आ गई है।
1: जी बिल्कुल।
0: और यही हाल हमारे श्रोताओं का भी होगा जहां तक हमें लग रहा है। और आज गजन जी हमारे पास क्या है, जैसा मौसम बदला है आज एक परिवर्तन स्टूडियो में भी है, आज मितलेश जी की जगह पे आज
1: बिल्कुल गौरव जी
0: हम
1: हैं और
0: तो शायद श्रोता ऐसे परिवर्तन को शायद पसंद करे फिर
1: बिल्कुल
0: से।
1: पसंद करेंगे हमारे श्रोता, ऐसे हमें उम्मीद है।
0: अरे
1: और पहला ईमेल पढ़ देते हैं।
0: बिल्कुल शुरुआत करते हैं।
1: एकता क्लब कस्बा सिंधौली मीरगंज से इमरान शेख, जीशान वारसी, मोहम्मद सोहेल और इनके सभी साथी अपने ईमेल के जरिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक शेर के साथ। और वसीम वरेलवी साहब का वो शेर है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, खुशी से कौन निकलता है अपने घर से मगर मुसीबतों में कोई रास्ता नहीं होता।
0: वाह
1: आपका पत्र मिला प्रस्तुतकर्ताओं को, पूरे बरेली आकाशवाणी परिवार को एकता क्लब की जानिब से प्यार भरा आदाब। हम आकाशवाणी बरेली की सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं, चाहे वो आपका पत्र मिला हो, फिल्मी फ्राइडे, ग्राम जगत, किसान वाणी, नारी संसार या युवाओं का प्रिय कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम इल्म, मालूमात और मनोरंजन का बेहतरीन संगम है। आकाशवाणी बरेली शिक्षा, सूचना और स्वस्थ मनोरंजन की शानदार परंपरा को पूरी संजीदगी, खुलूस और पेशेवराना अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। श्रोताओं की रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर तैयार किए जाने वाले ये कार्यक्रम समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन्होंने 11 जून को ग्राम जगत कार्यक्रम सुना, जिसमें सड़क पर सुरक्षित और सावधानी पूर्वक चलने के विषय पर उपयोगी चर्चा की गई। आज के समय में सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और कार्यक्रम में दी गई जानकारियां जनहित में बेहद लाभदायक लगी। इसी दिन नारी संसार का विषय रोड सेफ्टी था। कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी ने महिलाओं सहित सभी श्रोताओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। और कहते हैं कि 10 जून को इन्होंने नारी संसार में तबीयत के रंग, छुट्टियों के संग विषय पर प्रस्तुत कार्यक्रम सुना। ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी रही और श्रोताओं को स्वास्थ्य और दिनचर्या के प्रति सजग रहने का संदेश देती है। 10 जून को इन्होंने हेडलपाल भैया के साथ ग्राम जगत कार्यक्रम में सुना मच्छरों से बचाव और उनसे होने वाली बीमारियों के संबंध में विशेषज्ञ चर्चा। ये सुनी इनको बरसात के मौसम को देखते हुए कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और समय के अनुकूल लगा। 9 जून को युववाणी में माधुरी जी के साथ प्रस्तुत कार्यक्रम में GNM छात्रा से की गई बातचीत विशेष रूप से पसंद आई। युवा पीढ़ी के अनुभवों और उपलब्धियों को सामने लाने का ये प्रयास प्रेरणादायक लगा। 8 जून को इन्होंने हरिद्वारी लाल भैया के साथ ग्राम जगत कार्यक्रम में मोटापा कम करने के उपायों पर विस्तृत चर्चा सुनी। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी जानकारियां हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। 7 जून का आपका पत्र मिला कार्यक्रम हम नहीं सुन पाए, जिसका बड़ा अफसोस रहा हमें। दरअसल इस कार्यक्रम का समय प्रातः 11 बजे है और उस समय कार्यालय में कार्य का दबाव अधिक रहता है, इसलिए कई बार चाहकर भी कार्यक्रम नहीं सुन पाते। पहले भी कुछ श्रोताओं ने सुझाव दिया था कि यदि संभव हो तो इस कार्यक्रम का समय दोपहर लगभग 1:15 किया जाए, क्योंकि ये अधिकांश लोगों का भोजनावकाश होता है और कार्यक्रम को अधिक श्रोता सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रसारण समय में परिवर्तन करना आसान नहीं होता, फिर भी अगर संभव हो सके तो इस सुझाव पर विचार किया जाए। मिथिलेश श्रीवास्तव साहब की जितनी सराहना की जाए कम है, उनके कुशल मार्गदर्शन और उत्कृष्ट संयोजन और दूरदर्शी सोच के कारण आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रमों की गुणवत्ता निरंतर निखर रही है। कार्यक्रमों में विषयों का चयन, उनकी प्रस्तुति और श्रोताओं से जुड़ाव उनकी कार्यकुशलता का परिचायक है। इसी प्रकार गौरव सक्सेना जी के मार्गदर्शन में प्रसारित होने वाले युवा कार्यक्रम नई पीढ़ी को सकारात्मक सोच, रचनात्मकता और आत्मविश्वास की राह दिखा रहे हैं। युवाओं के लिए उपयोगी विषयों का चयन और प्रभावशाली प्रस्तुति उनकी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। फिल्मी फ्राइडे के लिए विशेष बधाई है और ये जो कार्यक्रम है रोचक, ईमानदार और दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। फिल्मी दुनिया की अनसुनी जानकारियां, गीतों का उत्कृष्ट चयन और श्रोताओं से आत्मीय जुड़ाव कार्यक्रम को और भी यादगार बना देता है। आखिर में आकाशवाणी बरेली के समस्त प्रस्तोताओं, उद्घोषकों, तकनीकी कर्मचारियों और प्रबंधन को दिली मुबारकबाद। दुआ है कि ये इदारा यूं ही अपनी मधुर आवाज, उत्कृष्ट कार्यक्रमों और जन सेवा की भावना के साथ समाज को जागरूक, शिक्षित और मनोरंजित करता रहे। विस्तृत रूप से लिखा
0: है और बहुत सुंदर एक ईमेल आया और पहला ही मेल था तो काफी अच्छा लगा कि हमारे श्रोता इमरान शेख, जीशान बारसी और मोहम्मद सुहेल जो भी साथी हैं इनके, इन्होंने हमें एक जो जो ईमेल लिखकर भेजा है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बड़ा उत्साह की बात है, बड़ी ही प्रेरणा की बात है कि हमारे श्रोता न केवल कार्यक्रमों को सुन रहे हैं बल्कि इस तरह से गुण भी रहे हैं कि वो उनके शब्दों में दिखता है कि किस तरह से वो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, विचार करते हैं। और गजेंद्र जी, जैसा उनका एक बात बीच में कही थी, समय के परिवर्तन की बात कही थी,

0: इन्होंने आपका पत्र मिला कार्यक्रम के
1: जी
0: साथ साथ उन्होंने जवाब भी दे दिया था कि शायद समय की जो परिवर्तन की मांग होती है हमेशा उतनी आसान होती नहीं है। लेकिन कभी अगर फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि समय परिवर्तन संभव हुआ तो हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि श्रोता जिस समय सबसे ज्यादा फ्री होते हैं सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को, वहां पर कभी इसको रिशेड्यूल करने की कोशिश की जाए। बाकी हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार है कि वो हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, और यही अनुरोध है कि इसी तरह से आप हमें सुनते रहे और अपने पत्र से, अपने ईमेल के माध्यम से, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहे।
1: अब चलते हैं नाज रेडियो क्लब करेली, जहां निसार अहमद अंसारी और इनके सभी साथी फरमाते हैं कि साथ अगर दोगे तो निभाएंगे जरूर, प्यार अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, राहों में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दोगे तो आएंगे जरूर।
0: वाह,
1: लिखते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी ओर से, हमारी जानिब से मोहब्बत भरा आदाब। 2 जून का यौवाणी कार्यक्रम पेश किया प्रज्ञा पाठक जी ने, बहुत अच्छा लगा। 2 जून को ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पर मुशायरा और कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम को सुनने के लिए हम भी आकाशवाणी केंद्र पहुंचे थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। आकाशवाणी केंद्र बरेली का इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिल से धन्यवाद। 2 जून को ही पहली सभा के कार्यक्रम अमृता जी ने पेश किए, कार्यक्रम बहुत पसंद आए। हेलो बरेली, देवेंद्र रावत जी ने बड़े अच्छे ढंग से बात की श्रोताओं से और सुनकर अच्छा लगा। अंकुर कार्यक्रम पसंद आया नाजमा दीदी और हरीश भैया के साथ। 7 तारीख को आपकी बात आकाशवाणी के साथ का विषय जो था, आपके क्षेत्र में बिजली कितने घंटे मिलती है, बहुत ही अच्छे विषय पर बात की अमृता जी ने। हमारी भी फोन कॉल लगी थी इसी दिन। मन भावन भी बहुत अच्छा पेश किया। 10 जून को आपकी पसंद और अनुरोध गीत देवेंद्र रावत जी ने बहुत ही अच्छा पेश किया। 11 तारीख को आपकी बात आकाशवाणी के साथ विषय था शादी जरूरत है या मजबूरी, बहुत ही अच्छे विचार सुनने को मिले श्रोताओं के द्वारा, कार्यक्रम पेश किया था अमृता जी ने। और 11 जून को ग्राम जगत कार्यक्रम में चर्चा सुनी, सड़क पर सावधानी से चलें। 10 जून को नारी संसार कार्यक्रम में तरबियत के रंग छुट्टियों के संग और भी बहुत कुछ सुना। 7 जून को श्रोता मंच में लाल मोहम्मद जी के विचार सुने, बहुत ही अच्छे विचार रखे उन्होंने।
0: आज मौसम भी शायराना है और हमारा जो कार्यक्रम है वो भी शायराना होता चला जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: 2 मेल आए हैं और दोनों में किसी न किसी प्रकार से शायरी से शुरुआत हुई है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद जी आपके इस प्यारे से ईमेल के लिए, और आप जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं और अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं, हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत उत्साह की, बहुत प्रोत्साहन की बात है कि जितने प्यार से, जितनी मेहनत से हम लोग अपने कार्यक्रमों का सृजन करते हैं, जितनी मेहनत आप तक पहुंचाने के लिए करते हैं, उसी प्रेम से, उसी उत्साह के साथ हमारे श्रोता भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं। तो आपका बस यही अनुरोध है कि इसी प्यार को आप बनाए रखिए और लगातार हमें अपने ईमेल के माध्यम से, अपने विचारों से अवगत कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: गौरव जी, अगला जो ईमेल है वो हमारे श्रोता हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव जी, बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से। विस्तृत रूप से आपने अपना ईमेल भेजा है हमें। सबसे पहले वही एक संदेश जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, स्वच्छता हमें अपनाना है, स्वर्ग से सुंदर देश बनाना है। प्रस्तुतकर्ताओं को हमारा सप्रेम नमस्कार। 90 वर्ष की इस स्वर्णिम यात्रा के सफर में आकाशवाणी बरेली परिवार को स्थापना दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय मित्रेश जी की छत्र छाया में आकाशवाणी बरेली के सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में इस समय बहुत अच्छे अच्छे विचारों वाले विषय दिए जा रहे हैं और प्रस्तुति भी बहुत अच्छी हो रही है। आपके एक अनाउंसर ने आपकी पसंद प्रोग्राम में मेरे 3 नामों में से मेरा एक नाम छोड़ दिया। एक अनाउंसर जी ने तो विनेश कुमार को विनेश कुमारी पढ़ दिया। कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां तो इंसान से हो ही जाया करती हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। 5 जून को आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी लगी। अनुरोध गीत में भी गीतों का चयन बहुत अच्छा था। 6 जून को नमस्ते बरेली में रेंज ऑफिसर वैभव जी से बातचीत अच्छी थी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आप अपने पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं, ये विषय बहुत अच्छा था। 7 जून को अंकुर में चिड़ियाघर की सैर नाजमा दीदी ने कराई, अच्छा लगा। नेमचंद भैया की कमी खली प्रोग्राम में। हरीश जी की प्रस्तुति भी अच्छी थी। 6 जून को ग्राम जगत में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा सुनी। 7 जून को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में आपके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली रहती है, विषय अच्छा था। श्रोता मंच में लाल मोहम्मद जी ने जो बरेली आकाशवाणी के प्रोग्राम में अपने विचार रखे थे वो इनको बहुत अच्छे लगे। युववाणी में वैभव जी ने कथावाचक विमला जी से बातचीत की, ज्ञानवर्धक थी। 8 जून को नमस्ते बरेली में 90 साल के गौरवशाली सफर को लेकर एक अच्छी प्रस्तुति दी गई। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आप आकाशवाणी के 90 वर्षों की यादों को किस तरह संजो रहे हैं इस विषय पर विचार अच्छे लगे। 9 जून को झुमका गिरारे में कैंट बरेली में नीतू जी की लोगों से बातचीत अच्छी थी। नीतू जी तो

0: झुमका गिरारे प्रोग्राम की स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत बधाई। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में परवेज जी की प्रस्तुति, विषय ऐसी घटना जिसे याद कर आज भी आप अपनी हिम्मत को दाद देते हैं, ये विषय अच्छा था, बहुत ही अच्छी थी। और इस प्रोग्राम में डीजे पर भी एक विषय रखिए, इसकी धमक कितनी हानिकारक है, क्योंकि इसकी धमक से काफी जान माल का नुकसान हो चुका है। सभी प्रस्तुतकर्ताओं को शानदार प्रस्तुति देने के लिए दिल से धन्यवाद और बधाई।
1: बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपको भी इस अच्छे से ईमेल के लिए, जिसमें ना केवल आपने हम लोगों के जो कार्यक्रम है उनको सुना, बल्कि उसके बारे में एक पर्याप्त विश्लेषण और एक परिचर्चा नुमा हम लोगों को भेजी है। तो अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं और लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज जो आपका एक सुझाव आया है कि डीजे से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उससे जो हानि होती है, जो भी नुकसान होते हैं जान माल के, निश्चित तौर पर एक सोचने वाला विषय है और इस पर हम लोग जरूर आगे काम करना चाहेंगे। और बाकी आपका इस मेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद
0: करप जी। अब आगे बढ़ेंगे, अगला जो ईमेल है वो पढ़ते हैं। सप्रेम नमस्ते जी, 7 जून का कार्यक्रम आपका पत्र मिला, सुना मिथिलेश जी और साथी की सुंदर आवाजों में सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम में सभी श्रोता साथियों के ईमेल और कमेंट प्यार पूर्वक शामिल किए गए, उत्तर भी संतोषजनक और सम्मान सहित दिए गए। कार्यक्रम में हमारा भी ईमेल शामिल हुआ, इसके लिए दिल से शुक्रिया प्रकट करते हैं। 5 जून का कार्यक्रम फिल्मी फ्राइडे इन्होंने सुना, शानदार प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा क्या लिखें, कार्यक्रम तो नंबर 1 है ही। 5 जून का ही आपकी बात का विषय, आपने अपनी याद में सबसे बड़ा पुराना पेड़ कौन सा देखा है, ये विषय बेहद पसंद आया। इसी विषय पर देवेंद्र रावत जी ने बेहतरीन अंदाज के साथ श्रोताओं से बातचीत की और श्रोता साथियों के विचार भी सुनने को मिले। 5 जून का Lucky 3 कार्यक्रम देवेंद्र रावत जी ने सुंदर पेश किया। 6 जून को नमस्ते बरेली में वन रक्षक क्षेत्राधिकारी जी से जो परवेज जी की बातचीत थी, बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। वन रक्षक अधिकारी जी खुलकर अपनी बात रखी जो दिल को छू गई। इसके अलावा अन्य जानकारी भी महत्वपूर्ण थी। 7 जून का कार्यक्रम आपकी बात में आपके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली रहती है, विषय पर अमृता जी ने शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 11 जून का ही अमृता जी ने शादी जरूरी है या मजबूरी, विषय पर आपकी बात कार्यक्रम बेहतरीन प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत किया। 7 जून का कार्यक्रम आपकी पसंद अनुरोध गीत कार्यक्रम हरीश मौर्य जी की शानदार प्रस्तुति थी, एक से बढ़कर एक गीत सुनवाई गए और दिल खुश हो गया। शिप्रा मिश्रा जी, नीतू त्रिपाठी, संजय कुमार जी की प्रस्तुति में कार्यक्रम सुने, बहुत पसंद आए। इन सभी कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति के साथ सुनवाने के लिए आप सभी प्रस्तुतकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपका शहर, कस्बा या गांव की क्या विशेषता है या क्यों मशहूर है, इस विषय को भी आप आपकी बात कार्यक्रम में शामिल कीजिए। श्रोता साथियों के इस विषय पर विचार जानकर भी हमें खुशी प्राप्त होगी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद तिलक राज अरोड़ा जी आपके इस मेल के लिए, और अच्छा लगा है कि आपने हमारे पिछले जो भी कार्यक्रम है उनको लगातार सुना है और अपनी एक जो अपना एक पक्ष रखा है, अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं
0: जी।
1: और जो आपने एक अपना सुझाव रखा है, तो ये तो लगता है ना जैसे हम कहीं के हैं और कुछ फेमस है, तो लगता है हमारी बात होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: तो निश्चित तौर पर खुर्जा भी कई विशेष चीजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह के और कार्यक्रम में जो नए नए विषय जुड़ रहे हैं, जो हमारे श्रोताओं के भी सुझाव आ रहे हैं या कुछ और नए जो भी हमें जहां से भी मिलते हैं आइडियाज, तो उन पर काम करें। और बस यही कहना चाहेंगे तिलक राज जी कि जिस तरह से आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और इसी तरह से आप सुनते रहिए और हमें लिखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: गौरव जी, जहां तक बात चली है अभी कि हर जगह किसी न किसी बात के लिए प्रसिद्ध होती ही है,
1: बिल्कुल,
0: और हमारी प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके अभी एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें हर जिले का एक उत्पाद उन्होंने शामिल किया था और उस उत्पाद को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिले, ये प्रयास जारी है।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, एक
1: व्यंजन,
0: एक जिला और एक व्यंजन करके एक अभी चला है, बहुत ही जागरूकता अभियान है, और वहाँ की हर जिले की कोई ना कोई एक ऐसी मिठाई जरूर है या व्यंजन ऐसा जरूर है जो जिसका स्वाद जो है वहाँ के स्थानीय लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, और उस स्वाद को बेहतर ब्रांडिंग, बेहतर पैकेजिंग और बेहतर कहते हैं कि प्रचार के माध्यम से भी न सिर्फ उस जगह बल्कि पूरे मंडल, प्रदेश और देश, इसके अतिरिक्त उसको विदेशों तक पहुंचाया जा रहा है।
1: बिल्कुल, सरकार के जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, ना केवल हमारे नागरिकों को फायदा हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को भी बहुत सारे विचार मिल रहे हैं श्रोताओं तक पहुंचने के लिए, और कई बार अब देखने में आ रहा है कि हमारे श्रोता भी इस चीज को लेकर काफी उत्सुक है, उत्साहित है।
0: बिल्कुल।
1: जब से जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं तो श्रोता थोड़े से ज्यादा एक्टिव है वहां पर, और काफी एक्टिवली वो लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है।
0: अच्छा, एक चीज और भी है गौरव जी कि

0: ये जो ओडीओसी स्कीम है,
1: जी
0: इसमें सिर्फ बड़े बड़े व्यंजन के निर्माता नहीं है, बल्कि एक छोटे से स्टॉल वाला भी व्यक्ति है,
1: हाँ
0: जो
1: बिल्कुल
0: दुकानदारी रोजमर्रा अपने शाम को उन्होंने स्टॉल लगाया। कई सारे ऐसे कार्यक्रम हमने अभी सुने हैं,
1: जी बिल्कुल
0: तो उनमें लखनऊ की कौन से चौक की वो है मलाई टाइप की जो रहती है, सर्दियों में मिलती है, ऐसे ही अयोध्या का स्वाद है खुरचन पेड़ा, और भी बहुत सारे। यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक और हम अपने धार्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि वहाँ के व्यंजन भी बहुत छुपे हुए हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, जो आज ब्रांड बन चुका है, अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि किसी बहुत छोटी जगह से निकल के आया है, किसी
0: बिल्कुल
1: बहुत सामान्य व्यक्ति ने उसकी खोज की और बाद में जाके ब्रांड बना। और इसीलिए हमारी सरकार कोशिश कर रही है कुछ ऐसे और प्रोडक्ट्स सामने आए
0: बिल्कुल
1: जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मान्यता मिल सके।
0: गौरव जी, इतनी बात विस्तार से इसलिए की गई क्योंकि जो अभी वहां का जिक्र आया ना खुर्जा का, तो जैसे आपने कहा कि खुर्जा की खुरचन को भी ओडीओसी में शामिल किया गया
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल हाँ
0: तो अब बढ़े आगे।
1: बिल्कुल बढ़िया। हम
0: हमारे
1: लोग
0: बरेली का
1: तो
0: सुरमा, बरेली का और भी बहुत सारी चीजें हैं,
1: झुमका
0: झुमका है ना, तो जरी
1: जरी
0: जरदोजी भी
1: दूजी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो
1: हाँ
0: बढ़ते हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली की ओर, जहां लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी और इनके सभी साथी लिखते हैं इस ईमेल के माध्यम से कि कार्यक्रम पेश करने वाले को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब। हमने बरेली केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सुनते भी हैं। जितने भी आकाशवाणी बरेली कार्यक्रम पेश करता है, सभी कार्यक्रमों को सुनने का पूरा प्रयास करते हैं। 5 जून को आपकी बात आकाशवाणी के साथ, 10 तारीख को यंग बरेली आपकी पसंद अनुरोध गीत देवेंद्र रावत जी ने कार्यक्रम बहुत अच्छे अंदाज में पेश किए और बहुत अच्छे लगे कार्यक्रम। 6 तारीख को नमस्ते बरेली आपकी पसंद अनुरोध गीत हेलो बरेली, 9 तारीख को रस रंग आपकी बात आकाशवाणी के साथ, ये सभी कार्यक्रम परवेज जी ने बहुत अच्छे पेश किए और इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए परवेज जी को हमारी तरफ से बधाई। 7 तारीख को अंकुर कार्यक्रम सुना, नाजमा जी के साथ हरीश जी ने कार्यक्रम पेश किया, इसी दिन हरीश जी का आपकी पसंद अनुरोध गीत अच्छा लगा, गीतों का चयन बहुत अच्छा था, आपका पत्र मिला कार्यक्रम भी सुना जिसको बेहतरीन अंदाज में पेश किया गया, और इसी दिन अमृता जी का जो कार्यक्रम पेश किया था उन्होंने आपकी बात आकाशवाणी के साथ और मन भावन, ये बेहतरीन कार्यक्रम रहे, अंदाज भी अच्छा था। 11 तारीख को अमृता जी की अच्छी प्रस्तुति रही आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, श्रोता मंच कार्यक्रम में लाल मोहम्मद अंसारी जी और परवेज जी की बहुत ही उम्दा और लाजवाब बातचीत ने कार्यक्रम को खूबसूरती बख्शी। 9 तारीख को और 11 तारीख को नीतू जी ने अच्छी प्रस्तुति दी मगर झुमका गिरारे कोई खास नहीं लगा। इसके अलावा कवि गोष्ठी, कानूनी सलाह, ग्राम जगत, कृषि जगत, रेडियो हेल्पलाइन, जान है तो जहान है, युवाणी कार्यक्रम भी हमने सुने जो बड़े अच्छे अंदाज में पेश किए गए। सभी की प्रस्तुति और अच्छी और लाजवाब रही। कुछ अनाउंसर से शिकायत है, अच्छी प्रस्तुति नहीं देते, नाम उल्टे और खराब तरीके से प्रसारित करते हैं, अगर थोड़ा अपना लहजा ठीक कर ले तो उनकी प्रस्तुति भी अच्छी हो सकती है। कुछ लोग श्रोताओं के ना कम अपना नाम ज्यादा बताते हैं, नाम हम नहीं उजागर करेंगे, आप खुद इस बात को नोट करें तो ज्यादा उचित रहेगा।
1: हमारे आज के सत्र का पहला शिकायती पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद लाल मोहम्मद अंसारी जी आपके इस ईमेल के लिए, और जहां तक आपने जो सुझाव दिए बहुत सारी बातें बताई हैं, तो उन पर भी हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि कुछ अनाउंसर हैं उनके कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं होता। तो पहली बात तो ये है कि ये बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर होता है कि हमें किसी की प्रस्तुति अच्छी लगती है या किसी की कम अच्छी लगती है या किसी की खराब लगती है, क्योंकि जहां तक अनाउंसर्स की बात है, जितने भी प्रस्तोता है, जितना भी हमारी टीम है, हम लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आपको अच्छे से अच्छे कार्यक्रम, अच्छे से अच्छा प्रस्तुतिकरण उपलब्ध कराएं। लेकिन फिर भी कई बार है, हम लोग भी इंसान है, कोशिश करने में कई बार कुछ कमियां रह जाती होंगी, तो उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी भी हैं। और दूसरी चीज, जहां तक आपने नाम की बात बताई है कि नाम अच्छे तरीके से आप नहीं बोलते, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो बात यह होती है कि हमारे जो भी श्रोता है एक एक पत्र में कई नाम ले देते हैं और अपेक्षा ये होती है कि सभी को पर्याप्त समय देते हुए पढ़ा जाए, जिससे कि समय हमारे पास उतना बचता नहीं है क्योंकि हमारे पास श्रोता बहुत होते हैं और उसके कारण ही हमारे पास नाम बहुत हो जाते हैं, तो कई बार जल्दी पढ़ना पड़ता है। और दूसरी चीज ये होती है, कई श्रोता जो लिखकर हमें भेजते हैं तो उनका खुद जो लिखा है, जो वर्तनी है, उसमें अशुद्धियां होती हैं, जिसके कारण उच्चारण में भी वही दोष आ जाता है। तो ये हमारा श्रोताओं से भी कहना होगा कि इस तरह के जो अशुद्धियां हैं, या फिर अगर आपको नाम पढ़वाने हैं तो कई बार आप अलग अलग भी अपने नाम से कमेंट्स कर सकते हैं या हम लोगों को मेल कर सकते हैं, तो उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा।
0: जी,
1: तो आगे बढ़ा जाए क्या?
0: बिल्कुल, अब हम बरेली जंक्शन की तरफ चलते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहां गरीब भाई इंतजार में हैं कि उनका ईमेल कितनी देर में पढ़ा जाएगा। आपका पत्र मिला, प्रोग्राम पेशकर्ताओं को नमस्कार, आकाशवाणी परिवार को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 जून को आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में शिप्रा जी की प्रस्तुति में विषय था, क्या आपने कभी कोई ऐसा भलाई का काम किया है जिस पर आपको गर्व होता हो? बहुत अच्छा विषय। था। 5 जून को

0: फिल्मी फ्राइडे और अनुरोध गीत की प्रस्तुति इनको बहुत अच्छी लगी। लकी थ्री में इन्होंने रावत जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 6 जून को परवेज जी द्वारा हेलो बरेली और अनुरोध गीत की प्रस्तुति अच्छी थी। 7 जून को अंकुर में नाजमा दीदी के साथ हरीश जी ने कार्यक्रम पेश किया नेमचंद भैया की कमी खली। प्रोग्राम में हरीश जी द्वारा अनुरोध गीत की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। युवाणी में वैभव मिश्रा की कथावाचक विमला जी से बातचीत अच्छी लगी। 9 जून को नीतू जी का झुमका गिरा रे प्रोग्राम अच्छा लगा। अनुरोध गीत भी बहुत अच्छे गीत सुनवाए उन्होंने। और आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में परवेज जी द्वारा विषय ऐसी घटना जिसे आज भी आप याद करके अपनी हिम्मत की दाद देते हैं बहुत शानदार बात की गई, श्रोताओं से अच्छा लगा। 10 जून को अनुरोध गीत में देवेंद्र रावत जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 10 जून को अनुरोध गीत में देवेंद्र रावत जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। तो ये हमारे बरेली जंक्शन से गरीब भाई हैं।
1: नमस्कार गरीब भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए। गजन जी, अभी हम लोग एक बात कर रहे थे पिछले मेल के बारे में कि एक शिकायत आई कि हमारे जो प्रस्तोता है नाम का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे, और जो गलती जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि जैसे यहाँ पर लिखा है नीतू जी, और ये एक पिछले एक और मेल में आया था नीतू जी, जबकि हमारी जो भी प्रस्तोता है उनका नाम नीतू है।
0: नीतू,
1: तो यही जो दुर्घटना हो जाती है कई बार लिखने में और फिर उसके बाद पढ़ने में, तो यही श्रोताओं की तरफ से कई बार हो जाता है कि श्रोता लिख कर कुछ भेज रहे हैं, फिर अगर वो हमारा प्रस्तोता उस चीज को पढ़ रहा है तो आपको नाम गलत लग रहा है। तो ये मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा कि जब भी आप अपना नाम देते हैं, किसी का नाम देते हैं, तो बहुत साफ सुथरे शब्दों में आप लिखने की कोशिश करें ताकि हम लोग भी सही से उसे उच्चरित कर पाए। बाकी आप गरीब भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर ईमेल लिखा, और आप हमारे कार्यक्रमों से लगातार जुड़े रहते हैं। शायद ही कोई सप्ताह जाता होगा जिस दिन हम लोग आपका मेल नहीं पढ़ते हैं
0: जी।
1: और निश्चित तौर पर ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन की बात है, इसी अनुरोध के साथ कि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और मेल लिखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला ईमेल मौला हलवाइयन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौशल का मिला है। आपको हमारा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप? हम आपके रेगुलर लिसनर हैं, सभी प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं। 11 जून का अनुरोध गीत जो पेश किया नीतू जी ने अच्छा लगा। अच्छा हाँ, एक ईमेल में नीतू त्रिपाठी जी को नीतू तिवारी जी भी लिखा।
1: 2-3 मेल आए हैं जिसमें नाम ही गड़बड़ हो रहा है।
0: अनुरोध गीत इनको बहुत अच्छा लगा, अमृता सिंह जी ने पेश किया था, और 10 जून को अनुरोध गीत इन्होंने देवेंद्र रावत जी की प्रस्तुति सुनी, दिल बल्लियों चल गया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और इसके अलावा 8 जून को अनुरोध गीत जो शिप्रा जी ने पेश किया वो भी इनको बेहद पसंद आया। 7 जून का आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना, इनको ये कार्यक्रम भी अच्छा लगा। 6 जून को अनुरोध गीत मोहम्मद परवेज जी ने जो पेश किया वो तो दिल खुश कर गया, और सभी प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं। ये गुजारिश है आपसे, फरमाइश वाले प्रोग्राम में देवेंद्र रावत जी, मोहम्मद परवेज जी, शीश पाल जी, श्रृंगार शेखर पाठक जी, शिप्रा मिश्रा, अमृता सिंह, रोचना मिश्रा और मुनव्वर जहां जी, सुदेश सैनिक, और इन सब की ड्यूटी ज्यादा लगाया करें। ये सब लोग प्रोग्राम बहुत अच्छे करते हैं, तो इन्हीं की लगती है।
1: बिल्कुल लगती है, लेकिन दिन 30 ही होते हैं।
0: हाँ।
1: ये समस्या है, और कितनी ज्यादा लगाई जा सकती है, क्योंकि 2 सभाएं हैं और हमें एक संतुलन साधना पड़ता है कि सभी प्रस्तोताओं में और सभी कार्यक्रमों के बीच में, तो हो सकता है किसी महीने में किसी की ज्यादा लग जाए या किसी महीने में किसी की कम लग जाए। ये है कि इससे विविधता भी कार्यक्रमों में आती है और हमारा भी संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल गौरव जी, अगला मेल जो हमें मिला है वो एडवोकेट वारिस अली खान साहब ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से भेजा है। कहते हैं कि आपको खान परिवार का प्यार भरा सलाम। अर्ज किया है इन्होंने, इरशाद
1: करवाई है अर्ज।
0: कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। पिछले शो में मेरा मेल नहीं पढ़ा गया जबकि समय सीमा के अंदर मैंने मेल भेजा था। 5 जून का लकी 3, 7 जून का मनभावन मेरे खत को शामिल किया गया। प्रेजेंटर को दिल से शुक्रिया। 21 मई का झुमका गिरा रहे, बरेली की चाय पर जानकारी थी। चाय पेय नहीं प्रेम की मिठास बांटती है, इस बात से मैं सहमत हूँ। उसी दिन का आपकी पसंद खूबसूरत गाने सुनवाए गए। 10 जून का आपकी पसंद देवेंद्र रावत जी ने पेश किया अच्छा था। 11 जून का आपकी बात आकाशवाणी के साथ में लिया गया विषय शादी जरूरत होती है या मजबूरी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे बेहतरीन विषय ढूंढने में बड़ी मेहनत करते हैं। शेष अगले मेल में।
1: बिल्कुल वारिस अली खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए। जहाँ तक आज हम लोग पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि आपकी शिकायत दूर हो गई। बात समय सीमा की नहीं है, कई बार ये होता है कि श्रोताओं की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है, हमारे पास जो मेल्स होते हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि सभी को एक बार में एक ही कार्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं हो पाता। खैर, हमारी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें, और जो लोग छूट जाते हैं उन्हें हम लोग हमेशा अगले एपिसोड में शामिल करते हैं।
0: अनोखेलाल मौर्य जी, कटरा चांद का मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से, शुक्रवार से लेकर सोमवार तक के सभी कार्यक्रमों की समीक्षा लिखते हुए कहते हैं सभी कार्यक्रम अच्छे लगे, खासतौर पर अनुरोध गीत और मनभावन कार्यक्रम

0: लकी थ्री अंकुर कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, बच्चों की जो बातचीत होती है इनको बहुत पसंद आती है।
1: नमस्कार मौर्य जी, और जैसे आप सुन रहे हैं इसी तरह से सुनते रहिए और हमें लगातार लिखते रहिए।
0: अब हमें चलना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: समय हुआ पूरा। श्रोताओं कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए पता नोट कर लीजिए, आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली पिन कोड 243001। ईमेल एड्रेस भी तो है,
1: बिल्कुल आपका पत्र मिला bareli@gmail.com।
0: इसके अलावा आकाशवाणी बरेली के पेज पर पोस्ट पर भी आप अपना कमेंट कर सकते हैं। हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, इस मौसम का आनंद लेते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
1: और गौरव को दीजिए अनुमति,
0: कीजिए स्वीकार सब प्रेम,
1: नमस्कार।
2: साथियों अभी आपने सुना कार्यक्रम आपका पत्र मिला, आपके पत्रों को लेकर पढ़ रहे थे गजेंद्र यादव, कार्यक्रम प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना की।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
4: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है AIRBareli@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIRBareli@gmail.com।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। आइए आप सुनते हैं केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया।

0: इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला, और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं, चीफ सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट, उन सबके साथ मिलके तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत

0: बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए, ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ भी कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल, प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया, टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने, देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहाँ पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूँ तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहाँ देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर एक चीज हमने और भी देखा कि जो पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला, क्योंकि ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल

0: सूट बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो पीएलआई स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई। और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
0: जी,
1: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट,
2: जो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा।
1: ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी। और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
0: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
1: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
0: सर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पे रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पे अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
1: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था। और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था। और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
0: लेकिन
1: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
0: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
1: ये बात ठीक है आपकी,
0: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
1: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
0: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
1: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये। इसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया

0: इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सके आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रख कर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में

0: घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, DBT के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा। 12 साल पहले देश का हालत क्या था, जब कांग्रेस UPA सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज PM का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज PM वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है UPI के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे?
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं, राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरफ ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है।

0: गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है। उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगे। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं रिजोर्ट में, छुपके कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है। और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चुक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारे सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन जब

0: इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार का खिलाफ, देश का खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में

0: खिलाफ देश का खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने का बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं। दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहाँ प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर।
3: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
4: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
5: पिटल दुबग्गा लखनऊ।
6: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
7: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
8: द गिफ्ट ऑफ ब्लड इज द गिफ्ट ऑफ लाइफ। कहा जाता है कि रक्त दान से बड़ा कोई दान नहीं होता, और दोस्तों हमारी संस्कृति में तो यूं भी दान की महिमा हमेशा से बहुत मानी गई है। नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी दोस्त ज्योति और आप सुन रहे हैं FM रेनबो का प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य होता है स्वैच्छिक और सुरक्षित रक्तदान को बढ़ावा देना और उन लाखों रक्तदाताओं का सम्मान करना जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की जिंदगी बचाने में अपना

0: योगदान देते हैं। दुर्घटनाओं, बड़ी सर्जरी, प्रसव, थैलेसीमिया, कैंसर और कई गंभीर बीमारियों में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में आपका रक्त किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। तो आज के इस खास दिन हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका रक्त बैंक सेवाओं में लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब, एफएम रेनबो लखनऊ के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो श्रोताओं, अगर आपके मन में रक्तदान से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप सीधे डॉक्टर अनिल कुमार से बात कर सकते हैं, जो कि है चरक हॉस्पिटल से और जिनके पास गहन अनुभव है इस क्षेत्र का। और आप सवाल करेंगे कैसे, आप हमें डायल कर सकते हैं 0522-223-8852 पर या फिर 0522-223-8845 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे पुराने ईमेल आईडी पर fmakashwanilakhnow@gmail.com। एक बार फिर याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ शो, जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस, एफएम रेनबो लखनऊ 100.7 MHz पर, न्यूज ऑन AIR ऐप पर और DTH पर भी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू होते ही हमारे पास ढेर सारे ईमेल्स आने शुरू हो गए और ईमेल्स के साथ साथ फोन्स भी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं पहला कॉल लूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रक्तदान हमें करना क्यों चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि भाई हमारा खून है, हम किसी और को क्यों दे दें। तो इस विषय में आपका क्या कहना है?
1: रक्तदान इसलिए जरूरी है कि रक्त कहीं बनता नहीं है, रक्त किसी के शरीर से निकलता है और किसी के शरीर में जाता है, और इसको अगर हम करते रहेंगे तो बहुत सारे जिंदगी को हम बचा सकते हैं। वैसे तो आइडियली ये होना चाहिए, जैसा विकसित देशों में होता है, कि रक्तदान लोग करते रहते हैं रेगुलर, और मरीज जब बीमार होता है तो रक्तदान की जरूर उनसे नहीं कहा जाता है कि ये है, और उस तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
0: तो सीधी सी बात है ये कि हम कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो जाएं, कितना भी हम एडवांस्ड क्यों ना हो जाएं, लेकिन किसी फैक्ट्री में आज भी ब्लड नहीं बनता है, और ऐसे में मानव रक्त का क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है। तो आप अगर किसी की जान बचाना चाहते हैं, निस्वार्थ रूप से सेवा करना चाहते हैं मानवता की, तो ये एक ऐसा काम है जो कि आप करके देख सकते हैं, और करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में ये भी है कि हर किसी को जरूरत पड़ती है, आज हो सकता है हमें जरूरत है, कल किसी और को जरूरत है, तो एक दूसरे के लिए रक्तदान करते रहेंगे, इसी से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो जी, हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी,
2: ये मतलब पूछ रहे थे मैम
0: जी,
2: रक्तदान होता है ना, तो इसको कैसे, मतलब इसको क्या करना चाहिए, मतलब कैसे क्या होना चाहिए?
0: अच्छा, आप ये जानना चाहती हैं बेसिकली कि कौन रक्तदान कर सकता है और कहाँ जा करके रक्तदान करना चाहिए, है ना? अपना एक बार नाम भी बता दीजिए। ओके, काफी हल्की आवाज आ रही है आपकी, लेकिन आपका सवाल समझ में आ गया। डॉक्टर साहब, इनका ये कहना है कि कौन रक्तदान कर सकता है, क्या कोई ऐसा भी है जिसे रक्तदान करने से पहले चार बार सोचना चाहिए, और अगर मान लीजिए मेरा बहुत मन है कि मैं रक्तदान करूं, तो किस जगह जाकर के, कौन से ऑथेंटिक प्लेसेस हैं जहां पर मैं अपना ब्लड डोनेट कर सकती हूं?
1: रक्तदान किसी भी ब्लड बैंक में, किसी भी पूरे देश के किसी भी ब्लड बैंक में जाके किसी भी टाइम कर सकते हैं। ज़्यादातर ब्लड बैंक 24 घंटे खुलते हैं
0: जी,
1: तो कभी भी कर सकते हैं। और कौन लोग कर सकते हैं, ये पूरा वो है कि जिसका 18 से 65 वर्ष के जो लोग होते हैं वो कर सकते हैं, 45 किलो से ज़्यादा वजन होना चाहिए, और बाकी हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होना चाहिए, और बाकी चीज़ें तो टेस्ट होती हैं, ब्लड प्रेशर और सभी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं।
0: और ये हमें खुद कराना होता है या जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब ये की जाती है ब्लड बैंक से?
1: ये सारी चीज़ें ब्लड बैंक में की जाएंगी, निशुल्क की जाएंगी, और रक्तदान भी पूरा निशुल्क होता है
0: जी,
1: तो सारी जांच वहां पे निशुल्क की जाएंगी, उसमें किसी को बाहर से पहले से

0: कराने की जरूरत नहीं है।
1: मतलब एक फायदा ये होता है कि अगर हम ब्लड डोनेट कराते हैं तो उस वक्त हमारी सारी जांचें हो जाती है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है हमें, या हमारा हीमोग्लोबिन ठीक है या फिर नहीं है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार, ग्राम बरागर
1: लखनऊ। मिथिलेश जी, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है।
2: आवाज आएगी?
1: हाँ, बेटर बेटर, मच बेटर।
2: डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: हाँ, नमस्कार जी।
2: हमको सुझाव कुछ लेने हैं आपसे, जैसे ब्लड डोनेट करने के लिए कोई अस्थमा का पेशेंट है, उसका ब्लड डोनेट हो जाएगा?
0: नहीं, अस्थमा के पेशेंट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ब्लड डोनेट करने के बाद अस्थमा का अटैक पड़ सकता है। बहुत रेयर, कम पड़ता है, रेयर पड़ता है, लेकिन फिर भी पड़ सकता है। और फिर अस्थमा के दवाइयां अक्सर कार्टिसोन लेते ली जाती हैं, उस उनमें मना होता है, इसलिए अस्थमा के मरीजों को नहीं डोनेट करना चाहिए।
2: और डोनेट करने के लिए जो है कम से कम हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए?
0: 12.5।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए और आपके सवाल के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एस्मा का मरीज, एस्मा के जो पेशेंट्स होते हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो कौन वो लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकते एस्मा के मरीजों के अलावा?
0: एस्मा के दिल के जो मरीज हैं, हार्ट के कोई पेशेंट हों या उनकी कोई सर्जरी हुई हो हार्ट की, लिवर फेल हो गया है, किडनी फेल हो गई है, और मिर्गी के दौरे हैं, या कोई पागलपन का दौरा पड़ा है, माइग्रेन हफ्ते में 2 बार अगर होता है, कैंसर है, कैंसर ठीक भी हो गया तब भी नहीं डोनेट करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। एचआईवी का होना, या उनके जीवन साथी को एचआईवी हो, सिफिलिस, गोनोरिया हो, तो ये लोग जो हैं कभी डोनेट नहीं कर सकते हैं। बाकी कई सारे होते हैं जहाँ टेम्पर इंसुलिन पे अगर डायबिटिक है और इंसुलिन पे अगर है तो वो डोनेट नहीं कर सकते हैं। थायराइड बीमारी अगर अनियंत्रित है तो नहीं कर सकते, नियंत्रित है तो कर सकते हैं। और ये तो परमानेंट चीज़ें हैं जो कभी नहीं डोनेट कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा कई सारी कंडीशन होती हैं जिनमें टेम्परेरी अनफिट होते हैं, उनको वो फिर उनकी एक लंबी लिस्ट है, उनको वहीं पे देख लेते हैं ब्लड बैंक में, अगर उनमें से कोई होता है तो टेम्परेरी के लिए। टेम्परेरी मतलब वो कोई चीज़, किसी को फीवर आ रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है, तो उस समय 3 दिन अगर एंटीबायोटिक नहीं लिया है तभी कर सकते हैं।
1: मतलब सीधी सी बात है कि जब भी ब्लड डोनेट करने जाएं तो डॉक्टर से अपनी हिस्ट्री जरूर डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, टैटू कराने के बाद, टैटू आजकल अच्छा, बहुत फैशन में चल रहे हैं, तो क्या टैटू कराने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
0: 6 महीने का गैप होना,
1: 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। और हाइपरटेंशन, जो कि बड़ी कॉमन सी बीमारी है, क्या उसमें अलाउड होता है ब्लड डोनेट करना?
0: हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल्ड है
1: जी,
0: ऊपर का ब्लड प्रेशर 100 से 150, नीचे वाला 50 से 100, अगर इस बीच में है, दवाई के साथ भी अगर कंट्रोल कर रखा है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
1: तो हम एक कॉलर हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, स्वेच्छा जी इशारा कर रही हैं कि अब हमें कॉलर से बात कर लेनी चाहिए। तो स्वेच्छा जी, आपकी बात मानते हुए अब हम हमारे कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं आशिक बोल रहा हूँ, जिला बदायूं, कस्बा दादागंज।
1: ओके, तो आशिक जी हमें बताइए आपका सवाल क्या है।
3: सर, ये जैसे जानना चाहते हैं, जैसे किसी का अगर दिमाग का ऑपरेशन हुआ तो ब्लड को डोनेट कर सकते हैं?
1: सर्जरी हुई है ब्रेन की।
0: हाँ, तो सर्जरी होने के, ये बड़ी सर्जरी है, तो इसको सर्जरी होने के 1 साल बाद कर सकते हैं जी।
1: और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो जल्दी से हमें कॉल करिए, फोन नंबर्स वही पुराने 223-8852 एंड 223-8845, इनके पहले लखनऊ का कोड 0522 ये ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आप लखनऊ के बाहर कहीं से कॉल कर रहे हैं या अगर आप अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं हमसे कनेक्ट होने के लिए। हमारा ईमेल आईडी ये भी आपको रटा होगा, लेकिन फिर भी अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो फिर आपको बता दूं कि ईमेल आईडी fmakashwani@gmail.com। मैं ज्योति, प्रोग्राम का नाम हेल्थ एंड फिटनेस, और आज खास तौर पर आपके लिए हमने हमारे स्टूडियोज में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन इन्वाइट किया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनके पास काफी गहरे

0: लेकिन काफी गहरा एक्सपीरियंस है इसी क्षेत्र का। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि थीम है आज के इस दिन की, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। तो मानवता जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं, कई बार हमें लगता है कुछ अच्छा करना चाहिए लेकिन समझ नहीं पाते क्या करें, तो सीधी सी चीज है, इंसान की जिंदगी बचाइए। और बहुत ही आसान है, ब्लड डोनेट करके आप एक नहीं कई जिंदगियों को बचा सकते हैं, और इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो जी, नाम बताएं।
1: नमस्ते,
0: सबसे पहले तो आप रेडियो से दूर हो जाइए प्लीज।
1: जी प्रकाश बोल रहे हैं से।
0: जी प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए।
1: मेरी दिक्कत ये, हम 4 साल से डेली आयरन की गोली खा रहे, नहीं खाते हैं ना तो सांस एकदम थमने लगती है।
0: आयरन की गोली अगर नहीं खाती है तो कमजोरी महसूस होती है और सांसें थमने लगती है। आपको क्या सजेस्ट किया है किसी बीमारी की वजह से आयरन की टैबलेट्स लेने को?
1: नहीं रे, ब्लड की कभी हो गई थी ना, उसके बाद से दिक्कत हो रही है।
0: और कब से ले रही हैं आप ये दवा?
1: मैम प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: अच्छा ओके ओके ओके, आप कब से ये दवा ले रहे हैं?
1: 4 साल हो चुके।
0: उम्र कितनी होगी आपकी?
1: मेरी 30 साल होगी।
0: ओके तो डॉक्टर साहब, इनका ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, ये जस्ट ये जानना चाहते हैं कि 4 साल से, क्योंकि पहले इनका हीमोग्लोबिन कम हुआ था, 4 साल से ये लगातार आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं, अगर नहीं लेते हैं तो फिर इनकी सांस फूलने लगती है, इनको तकलीफ होने लगती है। तो क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए इन्हें डॉक्टर से इमीडिएटली बात करनी चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर?
2: बिल्कुल, उनको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। एक तो हीमोग्लोबिन, इसका मतलब है गिर जाता होगा उनका
0: जी,
2: या सांस की कोई बीमारी है
0: जी,
2: तो दोनों हालत में इनको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए जल्दी जल्दी, और उसको फॉलो करना चाहिए।
0: तो दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आज हमने आपके सवालों का जवाब देने के लिए इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर अनिल कुमार को, जो कि ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके जवाब दे रहे हैं। और इस वक्त कौन है हमारे साथ? हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं आसिफ बोल रहा हूँ, तहसील भोला, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से।
0: जी सवाल पूछ लें।
3: जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जो कुछ लोग नशा करते हैं, जैसे कि अल्कोहल का सेवन करते हैं या कुछ लोग किदम पीते हैं, तो उनके लिए रक्तदान जरूरी है या नहीं?
0: जो लोग नशा करते हैं जी, हाँ सवाल दोहराइए।
3: जो लोग नशा करते हैं, मतलब अल्कोहल का सेवन करते हैं या कुछ लोग कोई भी नशा करते हैं, तो वो रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
0: ओके, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं डॉक्टर साहब या फिर नहीं? बहुत ही अच्छा सवाल है इनका।
2: पिछले 12 घंटे में कोई नशा नहीं किया होना करना चाहिए, तो 12 नशा मतलब 12 घंटे में कोई नशा न करें, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
0: और वैसे तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि नशा करना ही क्यों, लेकिन अगर आपने किया है तो ब्लड डोनेशन से पहले आप इंश्योर करिए कि 12 घंटे पहले आपने किसी भी तरह का कोई नशा ना किया हो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश की है, तो हम अपने कॉलर से बात करेंगे, हम ईमेल्स भी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मुस्कुराइए कि आप ट्रेन करते हैं, बल्कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी, आपका ज्ञान भी बढ़ाते हैं। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, जिसे हम बुलाते हैं इंडियाज मोस्ट ऑथेंटिक हेल्थ शो, जिसमें हम खुद बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को हमारे स्टूडियोज में, और आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनसे बात करके अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज है ब्लड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और इस खास दिन पर हमने बुलाया है स्पेशली डॉक्टर अनिल कुमार जी को, जो कि ब्लड डोनेशन की सेवाओं के क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव रखते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ, तो आप इनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं मिलाकर 0522-223-8852 या फिर 0522-223-8845। और इस वक्त यही नंबर मिलाकर हमारे साथ कौन जुड़े हैं? हेलो,
3: हेलो
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, हाँ जी बताएं।
3: डॉक्टर जी को नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
3: डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जिसके डायबिटीज रहता है तो वो क्या रक्तदान कर सकता है?
4: डायबिटीज अगर इंसुलिन पर है तो वो नहीं कर सकता है, और शुगर कंट्रोल्ड है अगर आपने दवाई

0: से या डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर रखा शुगर और इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: इसलिए नहीं ले रहे हैं सर, डॉक्टर साहब कई दवाई खा रहे हैं बस।
0: हाँ, दवाई से अगर आपने शुगर कंट्रोल कर रखा है तो आप रक्तदान कर सकते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो
3: हाँ
2: जी, सवाल
3: सर,
2: पूछें।
3: आपने गलत सवाल सुन लिया, मुझे थायराइड है। थायराइड
2: जी
3: बारे में ले सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर साहब ने शुगर सुन लिया।
2: अच्छा, थायराइड। ओके, थायराइड के बारे में।
0: थायराइड पर अगर आपने कंट्रोल कर रखा है थायराइड को तो दे सकते हैं।
2: तो थायराइड और शुगर, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि अगर ये अंडर कंट्रोल है और स्पेशली अगर डायबिटीज में आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ढेर सारे ईमेल भी हमारे सामने हैं और मुझे लगता है कि उनको भी हमें ले लेना चाहिए। आहिल खान उर्फी खान बुलंदशहर से पूछ रहे हैं कि अगर किसी को एलर्जिक राइनिटिस है तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? राइनाइटिस नाम की बीमारी, एलर्जी वाली, तो क्या ब्लड डोनेट हो सकता है?
0: ब्लड डोनेट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं और फीवर नहीं होना चाहिए।
2: दीपक मिश्रा जी का भी ईमेल आया है लखीमपुर खीरी से। ये जानना चाहते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी कम हो जाता है, 18 साल की उम्र है, वेट है सिर्फ 42 केजी, 3 महीने के लिए ठीक ठाक रहेगा, फिर से कम हो जाएगा। तो ऐसे में, और तलवों में बहुत दर्द रहता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
0: किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होंगी, तो फिजिशियन से कंसल्ट कर लें।
2: मुनेश कुमार राज का भी ईमेल है लखीमपुर खीरी से। ये कह रहे हैं कि रक्तदान करने के लिए क्या वजन होना चाहिए?
0: 45 किलो कम से कम वजन होना चाहिए।
2: आगे लिख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, हर साल ब्लड की जांच कराता हूं, हीमोग्लोबिन 14 पॉइंट रहता है, लेकिन मेरा वजन 45 किलो है 32 साल की उम्र में, तो कर सकता हूं
0: हाँ,
2: डोनेट?
0: 45 साल वेट है तो कर सकते हैं, अगर इससे कम होगा तो नहीं कर
2: एक
0: सकता
2: और
0: हूँ।
2: बड़ा अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब, इनके ईमेल में नीचे जो इन्होंने लिखा है कि क्या रक्तदान करने से शरीर में दोबारा खून बन जाता है या जो खून गया वो गया?
0: नहीं, बिल्कुल बनता है। रक्तदान करने का करीब आपका हीमोग्लोबिन जो है 21 दिन में वापस आ जाता है, और हीमोग्लोबिन जो चीज़ें बनाती हैं वो करीब 1.5 से 2 महीने में पूरी रिकवर हो जाती हैं, और इसीलिए रक्तदान का जो कम से कम समय है पुरुषों में 3 महीने और महिलाओं में 4 महीने का समय है।
2: तो जो ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं उसकी वजह से कोई कमजोरी या कोई बीमारी नहीं होने पाती?
0: नहीं, कोई कमजोरी बीमारी उससे नहीं होती।
2: डॉक्टर साहब, कॉलर्स भी हैं हमारे साथ, लेकिन एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक हमें अभी लेना होगा।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
6: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
4: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
5: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
4: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
2: टाइम हो गया है 12:31 और ठीक 21 सेकेंड। आप है हेल्थ एंड फिटनेस में ज्योति के साथ, और आज खास तौर पर हमने हमारे स्टूडियोज में बुलाया है डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है ब्लड बैंक सर्विसेज में। रक्तदान से जुड़ा हुआ अगर कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। और कैसे करना है आपको क्लियर, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। 223-8852 एंड 223-8452 ये हमारे फोन नंबर्स हैं

0: ईमेल आईडी वही पुराना fmakashwanilakhnow@gmail.com। और खास तौर पर डॉक्टर साहब को बुलाने की वजह क्या है, आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। हम सभी जानते हैं कि रक्तदान महादान है, लेकिन फिर भी जाने क्यों हिचकते हैं, जाने क्यों हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। तो ये जो कहीं कहीं कहीं वाले सवाल हैं, उनको आप पूछ सकते हैं बिल्कुल यही यानी कि 100.7 FM रेनबो पर डायरेक्टली डॉक्टर अनिल कुमार से। सो लेट्स सी इस वक्त कौन हमारे साथ फोन लाइन पर है और इनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और सवाल भी।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब को, मेरा नमस्ते।
2: नमस्कार जी।
1: मैम, मैं बबलू यादव मोहनलालगंज लखनऊ ग्राम धनवासा से बोल रहा हूँ। मैम, मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि कितने महीने के अंतराल में डोनेट करना चाहिए और कितनी उम्र होनी चाहिए लगभग लास्ट।
2: 18 से 65 साल उम्र होनी चाहिए और पुरुष लोग हर तीन महीने पे खून दे सकते हैं और महिलाएं हर 4 महीने में ब्लड दे सकती हैं।
0: बहुत अच्छा सवाल था इनका कि कितना गैप होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेट करने से फायदे क्या होते हैं? कई बार हमने सुना है कि बड़े फायदे भी होते हैं, तो आप ये मत सोचिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं, फायदे ही फायदे। उन फायदों के बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए प्लीज।
2: ब्लड डोनेट, एक तो 5 जांचें होती है जो मुफ्त होते हैं। ब्लड डोनेशन और उससे जुड़ा सारा काम कार्य जो है मुफ्त होता है, कोई पेमेंट नहीं है। तो 5 जांच हम लोग करते हैं
0: जी।
2: एक तो HIV/AIDS के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस सी के लिए, सिफिलिस और मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया के लिए 5 जांच करते हैं। और इनमें से कोई जांच पॉजिटिव आती है तो सूचित करते हैं फोन करके कि आपको बुला लेते हैं और उनको बता देते हैं कि ये निकला है और आगे क्या करना है आपको। प्लस ये कि एक आपके अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है, एक जो महसूस होता है ब्लड देने के बाद कि हमने बहुत अच्छा सामाजिक कार्य किया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
0: तो
2: ये फायदे हैं।
0: हमारी संस्कृति में तो यूं भी कहा जाता है कि दान पुण्य करते रहना चाहिए। कितने सारे व्रत त्योहार होते हैं जिन पर दान करने का अलग ही महत्व होता है, तो ऐसे में रक्तदान को
2: रक्तदान तो सबसे बड़ा दान
0: जी। और कितने लोगों को फायदा होता है एक इंसान के ब्लड डोनेट करने से? डॉक्टर साहब,
2: एक यूनिट उससे फायदा करने में कम से कम 3 से 4 लोगों को होता है।
0: मतलब एक इंसान 3 से 4 लोगों की जिंदगी बचाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आपने बताई। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो डॉक्टर साहब, इनका फोन तो डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो वादा मैंने आपसे किया था, मैं उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हुई। हाँ, आपकी पसंद का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग अब मैं प्ले करने जा रही हूँ। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरह से हमसे कनेक्ट करें और अपना सवाल डायरेक्टली डॉक्टर अनिल कुमार से पूछे, जिनके एक्सपर्टीज हैं ब्लड डोनेशन में, तो फिर बता दूं 0522223882 एंड 0522223885, ये दोनों हमारे नंबर हैं। तो गाने से पहले चलिए, क्योंकि हमारे कॉलर फिर से कनेक्ट हो गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, नमस्कार।
3: नमस्ते
0: जी।
3: ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर डोनर उपलब्ध नहीं है और हमें ब्लड चाहिए तो कैसे ब्लड मिले?
2: हाँ, डोनर उपलब्ध नहीं है तो ब्लड अगर पेशेंट की ऐसी डिमांड है कि उसको तुरंत चाहिए तो हम लोग बिना डोनेशन के उपलब्ध कराते हैं।
0: ब्लड बैंक का मतलब शायद यही होता होगा डॉक्टर साहब की, ऐसे लोगों को
2: जी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं,
0: लेकिन ये स्थिति ना आए तो ज्यादा अच्छा है।
2: लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप बीच बीच में ब्लड डोनेट करें। और जब ब्लड डोनेट करता है तो एक और फायदा होता है कि हम लोग एक डोनर कार्ड इशू करते हैं उनको, वॉलंटरी डोनेशन कार्ड, जिससे वो अगले कुछ महीनों तक जो है वो बिना रक्तदान के ब्लड वापस ले सकते हैं।
0: ओके,
2: तो बल्कि एक यूनिट आप डोनेट करेंगे तो 2 अलग अलग यूनिट हम आपको दे देंगे। तो हमेशा रक्तदान करते रहिए, तो अगर आपको ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी।
0: और ये स्थिति ना आए इसीलिए तो हम बार बार अवेयर करते हैं हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को, क्योंकि बार बार जो हम कह रहे हैं कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है किसी पे।

0: फैक्ट्री में नहीं बनता, कितना भी पैसा आप देना चाहें उसके बदले आप इसी मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। इसलिए रक्तदान करते रहिए और करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और आपकी पसंद का गाना आपको सुनाएंगे। अब हम
1: से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: 12:40 और ठीक 57 सेकेंड्स, और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है? हेलो।
4: हेलो
3: जी, नमस्कार।
4: नमस्ते डॉक्टर साहब को। नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
4: डॉक्टर साहब, हमें मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब जी कि मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि मुझे अगर ब्लड डोनेट करना है तो किस अस्पताल में जाना चाहिए?
3: ओके, आपने अपना नाम नहीं बताया।
4: हमारा नाम रामू है, मैं राम दुक्कौर से बोल रहा हूँ।
3: अच्छा,

0: तो ब्लड डोनेट करने का इनका मन है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन के काबिल ये बात है। बस इन्हें पता नहीं कि जाना कहाँ चाहिए। बहुत अच्छा आपका सवाल है, डॉक्टर साहब जवाब देंगे।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो किसी भी ब्लड बैंक में, बहुत सारे अस्पतालों में भी, बड़े अस्पतालों में सभी में ब्लड बैंक है, और इसके अलावा भी ब्लड बैंक है, कहीं भी जा सकते हैं। और चरक अस्पताल ब्लड बैंक में आया तो स्वागत है आपका।
0: तो कहीं पर भी किसी भी अच्छे अस्पताल में जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल है राहत हुसैन जी का, नेहतपुर बिजनौर यूपी से। इन्होंने ईमेल के जरिए जानना चाहा है कि खून सबसे ज्यादा किस चीज से बनता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह अपने खून को हेल्दी रखा जा सकता है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत कमजोर है। तो ब्लड को किस तरह इतना हेल्दी रखें कि कोई जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है।
1: नॉर्मल डाइट लेते हैं तो किसी तरह के साथ में और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक नॉर्मल डाइट लें। नॉर्मल डाइट का मतलब है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, जो रूटीन खाते हैं हम लोग, तो वही खाएं, वही सफिशेंट है। उसके अलावा अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम ना हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए तो उसका इलाज कराएं उस समय, और बाकी नॉर्मल डाइट ही बेस्ट है।
0: विजयपाल यादव जी आपके और वैभव प्रकाश जी आपके सवालों का भी जवाब डॉक्टर साहब दे चुके हैं, उम्मीद है आपने सुना होगा। राजेश कुमार जी मोदीपुरम मेरठ से ईमेल कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि 60 किलो वजन है, रक्तदान करना चाहते हैं, कितने लीटर तक रक्तदान कर सकते हैं?
1: रक्तदान आप की उसमें मर्जी पे नहीं, कितना कर सकते हैं। रक्तदान के दो ही गाइडलाइन हैं। अगर 60 किलो से, 45 से 60 किलो वजन है तो 350 ml, 350 ml लिया जाता है। अगर 60 किलो से ज्यादा वजन है तो 450 ml लिया जाता है।
0: मतलब ये लीटर्स में नहीं होता है?
1: नहीं, लीटर्स में बिल्कुल नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जो गाइडलाइन है वो इस हिसाब से है कि रक्त देने वाले को जरा भी किसी नुकसान की आशंका भी नहीं रहे, इसलिए लीटर में नहीं होता, 350 ml या 450 ml।
0: तो राजेश कुमार जी के सवाल का जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है, जल्दी से हमें आप फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि खास तौर पर आपके लिए ही तो हमने इनवाइट किया है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर। डॉक्टर अनिल कुमार को हमारे स्टूडियोज में, जिनकी एक्सपर्टीज है, जिनका एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। तो लेट्स सी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं और सवाल पूछें।
2: मैं प्रेम शंकर बोल रहा हूँ।
0: जी प्रेम शंकर जी बताएं।
2: राजाजीपुरम से बोल रहा हूँ। मैम ये जानना चाह रहा हूँ, जो खून लोग डोनेशन करते हैं तो मैम इसमें कोई गड़बड़ी निकल जाती, कैसे पता चलेगा? मतलब कि उसको गलत लोग चढ़ा देते कभी कदार।
0: ओके, मतलब ब्लड जो लोग चढ़वाते हैं उनको गलत ब्लड तो नहीं चढ़ेगा, ये कैसे पता करा जाए, है ना?
1: नहीं, ब्लड जब होता है तो उसकी 5 जांच हम लोग करते हैं, जो 5 चीज़ें रक्त के थ्रू फैलती हैं, तो वो उनका टेस्ट करते हैं हम लोग। और अगर वो टेस्ट में कोई भी 5 में से, नाम बता देता हूँ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी एड्स या सिफिलिस या मलेरिया होता है, तो इन 5 जांच को करते हैं। अगर इनमें से कोई ब्लड निकलता पॉजिटिव निकलता है तो उस ब्लड को फेंक दिया जाता है। प्रॉपर तरीके होता है उसका, उस तरह से फेंक दिया जाता है, वो कभी किसी को दिया नहीं जाता।
0: तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है इस क्षेत्र में, बहुत R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये मत सोचिए कि कहीं गलत ब्लड तो नहीं चढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आपकी भी जांचें होती हैं। तो बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के ब्लड डोनेट भी करिए, और ज़रूरत है तो फिर अपने, अगर आपका कोई अपना है तो उसको आप ब्लड चढ़वा भी सकते हैं। राहत का ईमेल आया है डॉक्टर साहब एक और, उनका ये कहना है कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं उनको कैसे ब्लड मिल सकता है, क्या उनको कोई रजिस्ट्रेशन हमेशा से करा के रखना चाहिए, चाहे जरूरत हो या ना हो, या जरूरत पड़ने पर उनको ब्लड मिल जाता है, और कौन से रेयर वैसे होते हैं ब्लड ग्रुप्स, ये भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: ब्लड लेने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ब्लड देने के लिए

0: सोसाइटीज होती हैं और सभी ब्लड बैंक मेंटेन रखते हैं रिकॉर्ड कि अगर आपको ब्लड देना है और रेयर ब्लड ग्रुप है तो आप दे सकते हैं। बाकी लेने के लिए तो ये अवेलेबिलिटी पे है कि जो आप ब्लड बैंक देखेंगे, अब तो इंटरनेट पे साइट पे अवेलेबल रहता है, सारे अस्पतालों के पास वो साइट होती है, उनसे डेली आप देख सकते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप कहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको लेने के लिए। और दूसरा सवाल क्या था मैं?
1: दूसरा सवाल ये था कि जो रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, आपने
0: हाँ
1: हालांकि जवाब दे दिया कि उनको क्या ब्लड लेने के लिए भी रजिस्ट्रेशन
0: नहीं
1: कराना होता
0: ले,
1: है, और वैसे ब्लड ग्रुप होते कौन से जिन्हें कि
0: हाँ
1: रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोला
0: हाँ
1: जाता है?
0: रेयरेस्ट तो RS नल एक होता है, वो तो थ्योरेटिकल इसलिए है कि वो पूरे वर्ल्ड में समय केवल 60 लोगों का कर लगभग वो ब्लड ग्रुप है, और मैंने अपने 16 साल करियर में वो उस ब्लड ग्रुप का कोई नहीं देखा है। लेकिन दूसरा ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप नेक्स्ट रेयर आता है, वो भी उस बॉम्बे में पहली बार मुंबई में पाया गया था, वहाँ से खोज हुई थी इसके लिए, इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, वो होता है लेने के लिए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन नहीं, देने के लिए वो बहुत मुश्किल से मिलता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के मरीज को केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, और उसकी सोसाइटी है मुंबई में और बहुत अच्छी सोसाइटी है, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, और अगर डिमांड जरूरत होती है तो आप किसी भी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल को संपर्क करेंगे, वहां से वो उन सोसाइटी को संपर्क करते हैं तो बाई एयर वो लोग भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप अवेलेबल कराते हैं। और जो कॉमनली सबसे कम ब्लड ग्रुप होता है वो AB निगेटिव होता है, निगेटिव सारे कम होते हैं और AB निगेटिव सबसे कम होता है, रेयर उनमें है, और ये देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए सभी निगेटिव्स को, और लेने के लिए तो अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कहाँ पर अवेलेबल है।
1: और ये अवेलेबिलिटी बनी रहे इसके लिए सिर्फ एक
0: जी
1: ही
0: हाँ
1: तरीका है कि आप, मैं, हम सब जो कि एलिजिबल हैं ब्लड डोनेशन के लिए, तो हम सभी ब्लड डोनेट करते रहे। डॉक्टर साहब, एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लूंगी और उसके बाद जो हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं।
2: अपनी बच्ची की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
3: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
2: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
3: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
4: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
5: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
5: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
7: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: 12:50 हो गए हैं, वक्त का पता ही नहीं चला, तो इससे पहले कि एक बज जाए और हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़े, जल्दी से हमारे इन कॉलर को लाइन पर ले लेते हैं। हेलो।
8: हेलो
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं और सवाल पूछें डॉक्टर साहब से।
8: मेरा नाम मोहम्मद साहिल है, मैं लखनऊ से इंद्रनगर से बोल रहा हूँ, इंद्रनगर राजीव नगर से। मेरा सवाल ये कि कान संबंधी दिक्कतें होने पर ब्लड डोनेट कर सकते हैं?
1: जी, कौन सी दिक्कतें होने पर?
8: कान में पर्दा छेद हो या कान बहता हो।
1: अच्छा, कान अगर बहता है तो क्या उसके बाद भी ब्लड डोनेट किया जा सकता है डॉक्टर साहब?
0: फीवर नहीं होना चाहिए और कोई एंटीबायोटिक न ले रहे हो तो दे सकते हैं।
1: तो सीधी सी बात है कि आप अगर ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो जो भी वहां पर वॉलंटियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उन्हें अपनी मेडिकल हिस्ट्री जरूर बताएं। अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसके विषय में भी पूरी जानकारी दें। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो। हेलो, हाँ जी बताइए। थोड़ा आप अपने फोन के करीब आ जाइए कि आपकी आवाज बहुत ही हल्की आ रही है।
9: हेलो, मेरा नाम सावित्री है, मैं जगदीशपुर से बोल रही हूँ।
1: हाँ जी सावित्री जी, बताइए सवाल पूछिए।
9: उन्नाव से।

0: हाँ डॉक्टर साहब, सावित्री जी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इनके भाई ने एक बार ब्लड डोनेट किया था और तब से उसको कमजोरी रहने लग गई है। तो आप प्लीज बताएं कि क्या उस वजह से इनको कमजोरी रहने लग गई है या फिर कोई और वजह है, और अगर और भी जो भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन से जुड़ी हुई, जैसे लोगों को लगता है हमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारी वीकनेस हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें कोई बीमारी पकड़ ले, इस विषय में भी हमारे श्रोताओं को बताइए प्लीज।
1: रक्त दान से कोई कमजोरी नहीं होती है मैम। एक तो कभी कभी लोगों के, चूंकि दिमाग में बैठा हुआ है, रक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, दोबारा नहीं बनता है, तो वो दिमागी तौर से कुछ लगता है। अगर फिर भी कमजोरी लग रही है तो एक बार उनकी दिखा लें किसी डॉक्टर को, वो हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाने के बाद ये पता लग जाएगा कि वो रक्तदान से तो नहीं हुआ है, या कहीं हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो गया। रक्तदान से होता नहीं है, क्योंकि 12:30 पे हम लोग से नीचे ब्लड डोनेशन नहीं कराते हैं, और अगर उससे थोड़ा बहुत गिर भी गया, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं गिरता है, तो 11:30 आ जाएगा, जो कि 3 हफ्ते में रिकवर हो जाता
0: तो ये सिर्फ एक
1: है।
0: भ्रांति है,
1: ये सिर्फ एक
0: और
1: भ्रांति
0: डॉक्टर साहब
1: है।
0: ये जो भ्रांति है कि कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं या बीमारियां लग जाती हैं, ये भी कई लोग बार बार पूछ रहे हैं।
1: नहीं, जो भी ब्लड लिया जाता है, निडेल वगैरह बहुत स्टराइल वन टाइम यूज होता है
0: हाँ
1: उनका, और पैक्ड होती है वन टाइम यूज, सेकेंड टाइम आप यूज कर ही नहीं सकते, ब्लड बैग से अटैच निडेल आती है, तो
0: जी,
1: इसलिए उससे कोई इन्फेक्शन किसी तरह का होने का कोई चांस नहीं है,
0: मतलब नुकसान तो बिल्कुल नहीं
1: बिल्कुल
0: होता
1: नहीं होता। फायदा,
0: और फायदे
1: फायदे
0: जरूर हैं जिनके
1: फायदे
0: बारे
1: तो
0: में आपने
1: बिल्कुल
0: बताया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो
2: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे?
2: मेरा नाम ध्रुवकांत पांडे है, मैं
0: जी
2: नया
0: पांडे
2: बिहार
0: जी।
2: कॉलोनी लखनऊ से बोल रहा हूँ।
0: जी पांडे जी, सवाल पूछिए
2: सर
0: प्लीज।
2: को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे एक स्टंट पड़ा है और मेरी जो ब्लड थिनर की दवाइयाँ चलती हैं, और बीच में मुझे विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी थी, जिसको मैं इंजेक्ट के थ्रू ठीक कर लिया मैंने। डॉक्टर साहब क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ कभी जरूरत पड़ने पे? मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है।
1: नहीं, ऐसा है कि पांडे जी की अगर स्टेंटिंग पड़ा हुआ है तो फिर ब्लड डोनेट
2: हाँ
1: नहीं कर सकते हैं, उसको पूरी
2: ओके ओके।
1: कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ
0: लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस विषय में सोच रहे हैं इतनी
1: हाँ
0: समस्या के बाद
1: बिल्कुल
0: भी। पांडे
1: बिल्कुल
0: जी हैट्स
1: बिल्कुल।
0: ऑफ टू यू।
2: इसके अलावा भी मेरे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, वो समय समय पे देते रहते हैं, 5-6 महीने के रेगुलर अंतराल पे। बीच में जरूरत पड़ी थी उसके एक दोस्त के मदर को ब्लड की जरूरत थी, मैंने अप्रोच किया, लेकिन लड़कों ने मिल करके गैदरिंग करके कवर कर लिया। एक मन में रहता है कहीं भी जरूरत पड़े, क्योंकि मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है
0: जी
2: और
0: जी
2: डोनेटर ब्लड ग्रुप है, बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है।
0: बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को आपके जैसे और लोगों की जरूरत है। डॉक्टर साहब इन्होंने जो बात कही यूनिवर्सल डोनर वाली बात कही ओ पॉजिटिव, तो ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनका खून, जिनका ब्लड हर किसी को चढ़ सकता है?
1: नहीं, यूनिवर्सल डोनर का कंसेप्ट यथा संभव नहीं होता है, सिर्फ
0: जी
1: बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में होता है, जैसे एम्बुलेंस लेके एक्सीडेंट की साइट पे चल दी और
0: जी
1: वहीं पे ब्लड बिल्कुल बह रहा है, तो
0: जी
1: वो ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव भी ब्लड लेके चलते हैं, और उस इमरजेंसी कंडीशन में जहाँ ब्लड ग्रुप करने का भी आपके पास टाइम नहीं है,
0: जी
1: इतनी खून बह रहा है, वहाँ ओ पॉजिटिव यूज करते हैं, नहीं तो हमेशा जो है ब्लड ग्रुप करके ही करते हैं। ब्लड ग्रुप करने में 5 मिनट से भी कम समय का लगता है,
0: जी
1: इसलिए ब्लड ग्रुप करके ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर इतना भी टाइम नहीं है तो भी यूज करते हैं। ये बहुत पुराना कंसेप्ट था यूनिवर्सल डोनर का, जो अब यूज जनरली नहीं होता जब तक बहुत ही क्रिटिकल इमरजेंसी कंडीशन ना हो।
0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अब जब आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो फर्ज मेरा ये भी बनता है कि जो अच्छे से गाने आपने सुनाने के लिए प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, मैं वो गाने आपको सुना दूं। तो 2 गाने तो हो चुके हैं, तीसरा ये गाना विच हैपन्स टू बी मेरा भी फेवरेट, तो चलिए सुनते हैं। वो कौन थी फिल्म का ये ब्यूटिफुल गाना लता जी की आवाज में?

0: तो अच्छा काम कल पर बिल्कुल भी मत टालिए। इस गाने को सुन लीजिए, ये भी यही कहता है कि भाई काल करे सो आज कर, जो करना है वो आज ही करिए। और स्पेशली आज का दिन, ये तो बहुत ही स्पेशल है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज के दिन मनाया जा रहा है, जिसकी थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। और इसीलिए खास तौर पर हमने बुलाया हमारे स्टूडियोज में प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में डॉक्टर अनिल कुमार को, जिनका एक्सपर्टीज है इसी फील्ड में। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, अगर आप संक्षेप में हमारी श्रोताओं को कुछ कहना चाहें तो।
1: ये मैडम, ये है कि 18 से 65 साल की उम्र है और 45 किलो से ज़्यादा वजन है और 12.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो, वो तो खैर हम लोग टेस्ट कर लेंगे, लेकिन यथासंभव हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ब्लड कहीं बन नहीं सकता है, सब एक आदमी से देख के, और एक सोसाइटी में अगर इस तरह का माहौल बन जाए कि सब लोग डोनेट करें, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि ज़रूरत के टाइम आपको कहा जाए, जिस समय आप परेशान होते हैं, कि उस टाइम ब्लड डोनेट किया जाए और सबको ब्लड मिलता रहेगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात एकदम स्पष्ट है कि रक्त का कोई कारखाना नहीं होता, इसे केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है, और इसी कारण रक्तदान केवल दान नहीं बल्कि मानवता की सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में से एक है। अ सिंगल पिंच कैन सेव 3 लाइव्स और मे बी मोर देन 3 लाइव्स, अ सिंगल जेस्चर कैन क्रिएट अ मिलियन स्माइल्स। डॉक्टर अनिल कुमार जी, आज आपने रक्तदान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर सरल और उपयोगी जानकारी हमारी श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। FM आकाशवाणी बरेली से अब हम लेकर आ गए हैं अनुरोध गीत। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस मधुर संगीत सफर में आपका हार्दिक स्वागत। सुर, शब्द और भावनाओं से सजे अनुरोध गीत में आज फिर लेकर आए हैं ऐसे गीत जो दिल को छू जाएं और यादों को

कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता परिवार से मुकेश नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी। पुराना तलाव डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। सारंपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। आदर्श नगर मलोट यहां से हमारे श्रोता हैं राज शर्मा मीना योगेश मैंडी सौरभ साइना और निवान शर्मा। गांव लोहडडा बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत मुनेश देवी अर्जुन भारती अंजलि नितिन और सुधीर नूतन। आइए सुनते हैं आप सब के अनुरोध पर भूपेंद्र की आवाज में वो गीत जो लिया गया है ओ माझीरे फिल्म से। लीजिए पेशी खिदमत है हर गीत में छिपी है यादों की एक नई कहानी सुनिए।

अगला गीत मोहम्मद रफी साथियों की आवाजों में। हम किसी से कम नहीं, ये है फिल्म। सुनने का अनुरोध है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा का। छावनी अशरफ का होली चौक मंदिर के सामने बरेली से। राम प्रसाद शर्मा, फजलुद्दीन, वंदना, मनोरमा, अजय, विनोद और उनके सभी परिवारीजन। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री। हिंगोली महाराष्ट्र के शाहजी बोटके, नंदा और हनुमान बोटके। गंज आंवला बरेली से मेहताब हुसैन खान, गजाला खान और आरिफ हुसैन खान।

कहते हैं ना कि जब बोल कम पड़ जाएं तो गीत बोलते हैं, ऐसा ही बोलता हुआ गीत भेज रहे हैं आपके पास आपके अनुरोध पर।

हमारा भी प्रयास रहता है कि सुरों के साथ हर पल बने आपका खास। अब अगला गीत आप सबके अनुरोध पर ही, कुमार सानू और साथियों की आवाजें हैं, फिल्म है आशिकी। यादव मोहल्ला सनावट मध्य प्रदेश के दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान और मालाकार परिवार के सभी लोग। खुर्दा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा और उनके सभी साथी। पीर बोड़ा बरेड़ी से आजाद खान देशात, मुस्तकीम तबस्सुम और मेहरुन्निशा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज बरेली से मेरा जहां मुस्कान बी, रेहान, अलशिफा, मन्नत बी और उनके सभी परिवारी लोग। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आप सबके अनुरोध पर ही चल रहा है कार्यक्रम अनुरोध गीत। हो सकता है आपका अनुरोध अगले गाने से पहले शामिल हो।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

अब साथियों प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाएंगे जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गीत, उदित नारायण और साथियों की आवाजें। सुनना चाहे जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम और उल्लाह अकरम। राजनाथ गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान और इरफान। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम और आदिवा तिवारी। मौला हलवयान शेरकोट बिजनौर से मामा वकार फरीदी, मामा इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा और हिना कौसर। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत के बिमल वर्मा और उनके सभी परिवारीजन। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। साथियों हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि हर धुन में मोहब्बत हो, हर सुर में अपनापन हो। ऐसे ही एहसासों को लेकर आ रहा है आपका अनुरोध किया गया वो गीत जिसे लिया गया है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। सुने और इंजॉय करें।

जो रूह को सुकून और मन को आनंद देता है। फिल्म का नाम है मोहब्बतें। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। सुनने का अनुरोध आप सभी का छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्तरेगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा, करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेरा जहां, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा और आकाश कुमार। चलिए सुन रहे हैं, सुनेंगे, आगे भी सुनेंगे, सुना भी था। जी हाँ, संगीत जो दिलों को जोड़ दे।

यादों की पगडंडियों पर शुरू का खूबसूरत सफर। इस सफर में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत अभिवादन। फिल्म है कयामत से कयामत तक। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है। गाने के बोल ऐ मेरे हमसफर। सुनने का अनुरोध बरेली जंक्शन से गरीब भाई बिक्की भारद्वाज। गड़िया बरेली से कैसर शमसी अजीम सलीम नवेद। रजिया और शमशी परिवार के सभी लोग। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर गुरुचरण, साथ में रमेश मिगलानी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर प्रकाश, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू एरोही और स्वाति। तो सुनवा देते हैं आपको आपके अनुरोध पर किया गया वो गीत जिसे लिया गया है फिल्म कयामत से कयामत तक। इस फिल्म से

कहते हैं ना कि दिल की धड़कनों को जब मिल जाए संगीत का साथ, तो उस समय हम साथ में आसमान पर पहुंच जाते हैं। और ऐसे में कोई आ जाए तो बात ही क्या। हम बात कर रहे हैं तुम आ गए हो। जी हाँ दोस्तों, ये गाने के बोल हैं, किशोर कुमार साथियों की आवाजें हैं।

सुना जाए गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम अरबाज खान शहबाज, सूफिया पप्पू भाई, अफसाना महजवी शेख और उनके बहुत सारे परिवार के लोग। जौनपुर ग्राम मुंडेला से कुमारी चंद्रा चांदनी, आकाश कुमार कन्हैया और रीता देवी। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास कर्मवीर, प्रवीण रावत, अनर नागर, सागर बख्शी, भरत यादव। त्रमिलागंज अलोट रतलाम मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आइए सुनते हैं आप सबके अनुरोध पर हर सुर में एक एहसास, हर गीत में जिंदगी की मिठास।

नूर से भरा हुआ दमकता हुआ चेहरा, उजला और रोशन वातावरण। क्या श्रोताओं, आप इसे शायरी या किसी भाषण में इस्तेमाल होने वाले शब्द समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टूडियो में मुनव्वर आ गए हैं और जो पंक्तियां हमने आपने रेडियो पर बोली उसका मतलब भी होता है नूर से भरा हुआ दमकता हुआ चेहरा स्टूडियो में आ चुका है मुनव्वर जहां के रूप में।

और अब चल रहे हैं उस गीत की ओर जो पहुंचाएगा प्रोग्राम को अपनी मंजिल पर। फिल्म है ब्लैकमेल, किशोर कुमार साथियों की आवाजें। अमरावती महाराष्ट्र से सुनना चाहे कमरुल्ला नसीमा बेगम, आयशा हादिया, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तफा खान, शाहिद भाई और राहिब भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। शीतल रेडियो श्रोता संघ बेरामपुर, खरगोन मध्य प्रदेश के डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, अभिषेक सीमा और उनके बहुत सारे परिवारीजन। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, उषा और अमित कुमार राय, साथ में हैप्पी रॉय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल। शेरपुकला गाजीपुर से अवधेश, प्रीति और नवनीत। जी दोस्तों, गाने के बोल हैं पल पल दिल के पास, आइए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं।

दोस्तों, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मुनव्वर आ गई हैं स्टूडियो में और एकदम मेरे बैक साइड में खड़े हैं, इशारा कर रहे हैं कि आपका समय संपन्न हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है। फिर मिलेंगे कल सुबह, इंतज़ार करिएगा अपने दोस्त संजय का। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत संजय कुमार के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, रस में डूबा हुआ कार्यक्रम रस रंग।

0: तूने चूड़ी भी छनकाई, फिर क्यों आया ना हर जाई। श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत सुना आपने फाल्गुनी पाठक के स्वर में।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

आपको चाहकर कुछ न चाहा कभी, आपको चाहकर कुछ न चाहा कभी, मेरी चाहत का कुछ तो सिला दीजिए, यूं ना खामोश रहकर सजा दीजिए, आपके दिल में क्या है बता दीजिए। श्रोताओं, ये खूबसूरत गजल अभी आपने सुनी चंदन दास की आवाज में।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

हमको हालात का तूफान डराता है क्या? हमको हालात का तूफान डराता है क्या? डूब कर इसमें हम पार उतर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। खूबसूरत गजल गाई थी, इसे आवाज दी थी चंदन दास ने एक बार फिर से।

कोड़ पर एक नई बात खाई, रही दिल की दिल में जुबा तक ना आई। किए हैं कुछ ऐसे करम दोस्तों ने कि अब दुश्मनों की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये दिल को छू लेने वाली कव्वाली अभी आपने सुनी नुसरत फतेह अली खान जो कि उस्ताद है और इनके साथियों के साथ में इनकी आवाज़ थी। और इसी के साथ आज का ये रसरंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: धन्य जवान।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछ

यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओ नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओ, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोलते कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था, मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मनचाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज्य सब कुछ द्यूत में हार दिया है, दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं, उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं दूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था, शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती।

0: अंधारी, कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम
1: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
0: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
1: महाराज,
0: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए। पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गंधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर कल्याण करे।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपेंद्र मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद, गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रहे।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की तेह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं, महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधे

0: पर ठोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोछों का अंधरे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
1: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
2: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
1: शांत हो राजमाता।
2: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आतनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
1: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
2: नहीं कृष्णा, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
1: देवी गांधारी,
2: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
1: मुझे क्षमा करो माता।
2: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
1: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
2: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा और संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही, कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गोष्ठी को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म पातिव्रत्य न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना।
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं थी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हट नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में

0: मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंकु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: गांधारी देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: कंधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए,

0: के सुर में ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित कर दे।
1: चलो, तावानल पड़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए। चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
0: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार

0: अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहाँ आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और आज का विषय बहुत ही है खास, क्यों जरूरी है रक्तदान। तो आइए सुनते हैं आज के इस विषय पर हमारे कॉलर्स के क्या विचार है। हेलो जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन और कहाँ से बात कर रही है? तरन्नुम अंसारी, कैसी है आप?
2: जी मैम, हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपका?
1: सब बढ़िया है, आकाशवाणी बरेली में भी सब लोग ठीक ठाक हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है तरन्नुम, वो है क्यों जरूरी है रक्तदान। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: जी मैम, हम तो यही कहना चाहेंगे कि मतलब रक्तदान बहुत जरूरी है, हमारी वजह से किसी की जान भी बच सकती है और किसी का परिवार खुश हो सकता है।
1: जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात रक्तदान करने की ये है कि हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है। अच्छा, किसी की जान बचाने के लिए हमें रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम रक्तदान कर रहे हैं तो हमारे लिए ये रिस्क होगा, बल्कि हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। और दूसरे
2: जी रक्तदान कर देते हैं तो हल्का भी फील करते हैं और अच्छा लगता है।
1: अच्छा, तरन्नुम अंसारी, आपने कभी रक्तदान किया है?
2: जी मैम, अभी तक ऐसा मौका ही नहीं आया। वैसे अच्छा किया नहीं अस्पतालों में जाकर, लेकिन किसी को जरूरत पड़ी नहीं है अभी ऐसे।
1: अच्छा, वैसे रक्तदान के शिविर भी लगते हैं और अगर आप चाहें तो रक्तदान करवा भी सकती हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जरूरत जब पड़ती है, जरूरी नहीं है किसी को ये पता हो कि हाँ भाई आप रक्तदान करने की इच्छुक हैं। लेकिन अगर हाँ रक्तदान शिविर जो लगते हैं, अगर आप उसमें रक्त डोनेट करते हैं तो वो किसी ना किसी इंसान के काम में आता है रक्त आपका, और किसी ना किसी इंसान को आपके उस दिए हुए रक्त की एक एक बूंद से जान बच सकती है किसी की, है ना? तरन्नुम अंसारी, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
2: जी मैम, आप मुनव्वर जहाँ बोल रही हूँ?
1: जी मैं मुनव्वर जहाँ बात कर रही हूँ।
2: जी मैम, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आपका अंदाज, कल का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप सब लोगों का नजरिया है।
2: मुझे आपकी आवाज अच्छी लगती है, मैं आपको लाइक भी दे दूँ।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तरन्नुम, जो आप इतना प्यार देती है आकाशवाणी बरेली को, इतना सराहती है और इतने प्यार से सुनती है, जो हमारी आवाजें भी आपको अच्छी लगती है, है ना?
2: जी मैम, आपकी आवाज भी अच्छी लगती है, आपके बोलने का अंदाज भी अच्छा लगता है और आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, फेसबुक पे देखा है।
1: अच्छा, आपने देखा है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद तरन्नुम अंसारी आपका। और अब आप अपनी पसंद का गीत बता दीजिएगा।
2: जी मैम, फिल्म का नाम रहेगा इलाका, मिथुन चक्रवर्ती वाली, और गाने के बोल रहेंगे प्यार से भी ज्यादा तुझे प्यार करती हूं या आज कोई डेडिकेट।
1: अरे थैंक यू सो मच। और आप सुनिए अपनी रेडियो सेट पर ये गीत और साथ में मैं भी सुनूंगी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहाँ से?
1: जी योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: योगेश जी, क्या करते हैं आप?
1: हमारा खेती बाड़ी का काम है।
0: खेती बाड़ी का काम है छत्तीसगढ़ में?
1: हाँ जी।
0: अब इस समय कहाँ हैं? खेतों में ठंडी ठंडी हवाओं में बैठे हुए हैं?
1: नहीं, अभी फिलहाल गर्मी में 2-2.5 महीने आराम करना होता है।
0: अच्छा अच्छा गर्मियों के दिन।
1: हाँ जी, बाकी अप्रैल में गेहूं कटाई के बाद से ना खेत खाली रहता है।
0: अच्छा, फिर कब लगाते हैं?
1: ये जस्ट अभी मानसून बारिश होगा ना
0: जी,
1: तो धान की बुआई करेंगे खरीफ की फसल।
0: अच्छा अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। हम कामना करते हैं कि आपकी अगली फसल भी खूब अच्छी हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यों जरूरी है रक्तदान, इसके बारे में योगेश जी क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जरूरी इसलिए है क्योंकि हम हमेशा मानव जाति में दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद के बारे में बात करते हैं
0: जी।
1: तो हमारा अगर थोड़ा सा रक्तदान करना किसी के जीवन बचाने के काम आ सका है तो इससे बड़ा और पुण्य का क्या होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पुण्य तो।
1: और ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों को, समय को कोई नहीं जानता। जैसे हम दूसरों को देंगे तो कोई दूसरा करेगा तो हमें भी कभी जरूरत पड़ सकता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने ये कही है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ही दूसरे लोगों के लिए डोनेट करता है, तो वैसे तो यही चाहेंगे कि खुदा ना करे कोई इस स्टेज पर आए कि किसी को रक्त की जरूरत पड़े, लेकिन कभी भी कोई भी कहीं भी इस स्टेज पर आ सकता है। तो ये सोचकर अगर आज हम किसी के साथ रक्त डोनेट करते हैं या भलाई करते हैं तो कल के दिन वो भलाई हमारे काम में भी आ सकती है ना?
1: जी।
0: योगेश जी, बहुत अच्छे विचार आपके हैं। और इन विचारों के अलावा आप ये बताइए कि आज गीत कौन सा सुनना पसंद करेंगे?
1: गीत आप हमें फिल्म डार्क द फायर से सुनवा देंगे, 90s का गाना है, दिल दीवाना न जाने कब खो गया।
0: लीजिए, हम भेजते हैं आपकी पसंद का आपके रेडियो सेट पर छत्तीसगढ़ में ये गीत।
1: धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार। जी
1: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रही है?
2: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
1: क्या करते हैं लोकेंद्र
2: जी? मैं हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है मेरा मैडम।
1: अच्छा, बहुत अच्छा लगता होगा, वहाँ पे स्टाइलिश हेयर आप ड्रेस करते हो गए, है ना?
2: बिल्कुल मैडम जी, मेरा तो ये पुराना 35 सालों से इसी बिजनेस को कर रहे हैं, और जब से ही मतलब सबको सजने संवारने का और हेयर स्टाइल का काम है हमारा।
1: बहुत ही इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है ये, है ना?
2: बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, जी। ये जब शुरू से जब करता आ रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये काम। बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल, क्योंकि ये काम देखने में भी अच्छा लगता है ना, कि भाई इंटरेस्टिंग वर्क है, लोगों को सजाने संवारने का काम करना, हेयर स्टाइल उनके बनाना। अच्छा, आप आज के विषय पर आते हैं। आज का जो हमारा विषय है तो है क्यों जरूरी है रक्तदान, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोकेंद्र वर्मा?
2: मैडम जी, रक्तदान बहुत जरूरी है, और आज ये 14 जून को ये रक्तदान डोनर डे के रूप में मनाते हैं
1: जी।
2: और रक्तदान करना इसलिए जरूरी है कि रक्तदान हम करके एक दूसरे व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं और उसकी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। और रक्तदान देने से हमारे शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमारा शरीर रक्तदान देने से तरोताजा होता है, और बीमारी से ग्रसित जो आगे कोई तकलीफ भी हो तो उससे भी दूर हो जाता है, क्योंकि इसमें रक्तदान देने से आपके शरीर की इम्यूनिटी और मजबूत होती है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने हमारे सारे श्रोताओं को बताई, और जो हमारे श्रोता इस बात से अनजान होंगे कि रक्तदान देने से बहुत सारे लोगों की दिमाग में थिंकिंग है कि कहीं हमारा खून कम ना हो जाए, हम कमजोर ना हो जाए, कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, तो इन सारी भ्रांतियों को दूर करता हुआ

0: आपका संदेश है?
1: बिल्कुल, ये तो ये भ्रांतियां हैं लोगों के दिलों और दिमाग में छा चुकी है कि ब्लड डोनेट करने से हमारे हम बीमार हो जाएंगे या हमारे शरीर के अंदर खून कम हो जाएगा, पर एक स्टडी के अनुसार और जो WHO के अनुसार भी यह ज्ञात होता है कि जितना आप रक्तदान करते हैं उतना रक्त आपके शरीर के अंदर 24 घंटे के अंदर वापस जितने भी शरीर के अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो रहती है उसके अंदर जो उसकी आपूर्ति कम हो जाती है उसकी आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए उसमें लग जाती है और 20 घंटे के अंदर उतना ब्लड आपके शरीर में वो बना देती
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि रक्तदान के बाद मोन मैरो नए लाल रक्त कोशिकाएं होती है जो कि RBCs का निर्माण करती है ना।
1: बिल्कुल, शरीर में रक्तदान देने से जैसे हार्ट अटैक और ये जो आने की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि इससे आपके हार्ट को एक इम्यूनिटी मिलती है और हार्ट और मजबूत होता है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई, बहुत अच्छी आपके विचार रहे। अब आप ये बताइए लोकेंद्र वर्मा, आज आपकी कॉल लगी है, आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: गाना सुनना है मैडम मुझे, एक फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी और इसका एक गीत है ये सच है कोई कहानी नहीं, खून खून होता है पानी नहीं, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर मध्य प्रदेश की फजाओं में ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रही हैं?
1: अरे साहब मैं राम प्रसाद बोला त्रप्पा टोनी से मैंने बजा। नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं राम प्रसाद जी?
1: बढ़िया है साहब, जय कृपा साहब, मालिक की।
0: और क्या कर रहे हैं इस समय?
1: काम कर रहा था, घर पे काम कर रहे थे।
0: काम भी चल रहा है और रेडियो भी चल रहा है?
1: हाँ साहब काम चल रहा है, रेडियो चल रहा था। रेडियो चला कर कैसे काम बनेगा साहब?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो से तो एक एनर्जी मिलती रहती है ना।
1: हाँ रेडियो से ऐसा होता है ना, देखो मन लगा रहता है।
0: जी जी
1: अच्छा, हाथों से मगर रेडियो मन लगा रहता है, थोड़ा सा दिल खुश रहता है।
0: बिल्कुल मन लगा रहता है, दिल खुश रहता है और इससे नई नई जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं।
1: ऐसी जानकारी मिलती है।
0: अब इसी तरह से एक बहुत ही खास जानकारी है कि क्यों जरूरी है रक्तदान, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे राम प्रसाद शर्मा?
1: रक्तदान साहब, रक्तदान बहुत जरूरी है साहब
0: जी।
1: रक्तदान इंसान की जिंदगी वो बचाता है और जो रक्तदान करता है उसको बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है
0: जी।
1: मैंने कुछ ऐसा पुण्य का काम करा है, किसी की दूसरे की जान बचाई है और रक्तदान करने से कुछ कुछ घटता नहीं इंसान का।
0: जी जी बहुत बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि अच्छा फील होता है कि मैंने किसी की जान बचाई है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, छोटे छोटे पुण्य के काम करते हैं, जैसे रास्ते से पत्थर हटा दिया या किसी गिरते को उठा दिया या किसी को सड़क पार करवा दी, तब भी वो अच्छा फील करता है कि मैंने ये काम किया
1: जी। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, किसी की जान बचा करके रास्ते पत्थर हटा के किसी को रास्ता पार कराते, दूसरी जिंदगी बचाने का काम होता है। रक्तदान महादान, रक्तदान एक बहुत बढ़िया दान है
0: जी। बिल्कुल।

तो ये रक्तदान का काम जो है ना, ये इतनी बड़ी भलाई का काम है, ये तो दूसरे की और जीवन बचाने का काम है। तो ये करने के बाद इंसान, आपने कहा ना, बहुत अच्छा महसूस करता है। तो ये बात हकीकत है कि दूसरे की जान बचाने के बाद कि किसी की वजह से किसी की जान बची, ऐसा सोच के अगर कोई रक्तदान करता है ना, तो उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। राम प्रसाद शर्मा, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, मोहम्मद रफी की आवाज से सजा हुआ ये गीत है। लीजिए, सुनिए अपने घर में, अपने रेडियो सेट पर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई

0: मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: हेलो जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
3: मैं बनियापारा धमतरी से बोल रहा हूं, रामचंद्र मखिया काफिर भाई।
2: क्या करते हैं रामचंद्र आप?
3: मेरा छोटा सा रेडीमेड का काम है।
2: अच्छा, रेडीमेड का काम करते हैं
3: जी, रेडीमेड कपड़ा।
2: रेडीमेड कपड़े बच्चों के, बड़ों के, सबके बेचते हैं?
3: हाँ हाँ जी जी।
2: अच्छा, बड़ा अच्छा काम है
3: जी, क्योंकि आजकल रेडीमेड का चलन ज्यादा है ना, सब सिले सिलाए कपड़े पहनते हैं, छठी से लेकर बड़ों तक।
2: जी, तो आपने भी वही चलन अपना लिया है ना?
3: जी जी, पहले थान कपड़ा था हमारा, पुराना काम है बचपन से लेकर, तब परिवर्तन कर दिए अब
2: जी जी,
3: चले आज के जमाने में समय के अनुसार।
2: कहते भी है कि परिवर्तन कुदरत का नियम है, इसके साथ बदलते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा रामचंद्र जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्यों जरूरी है रक्तदान।
3: तो रक्तदान जो है जीवन दान है, क्योंकि रक्त बनाने के लिए कोई कारखाना नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है कि रक्त बने, तो मनुष्य को रक्तदान करना, डोनेट करना पुण्य का काम है, और खून दान देना खून के रिश्ते से भी बढ़कर है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपने बात कही है।
3: क्योंकि आजकल देखिए गाड़ियां मोटरसाइकिल हो गई, पहले साइकिल चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी, अब रोड बड़े हो गए हैं तो अचानक एक्सीडेंट होते हैं, ट्रामा सेंटर में ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो किसी का जीवन बच सकता है
2: जी। और इमरजेंसी में के क्या होता है, इमरजेंसी में कहाँ से लाएं, क्या करें क्या नहीं करें, तो ऐसे में वक्त बहुत कम होता है उस इंसान की जान बचाने का। और अगर आपने पहले से ही रक्त डोनेट किया हुआ होता है तो वो रक्त हमें समय पर तुरंत मिल सकता है ना?
3: जी बिल्कुल सही, इसी बात को मैं भी बोलने वाला था, क्योंकि हम लोग रक्त दान देंगे वो उनके यहाँ बैंक टाइप का अपने फ्रीजर में रखते हैं, वक्त पड़ने पर जिसका हमें ब्लड लेना है उसको फिर उतने में दूसरा ब्लड ग्रुप जैसे मैच नहीं करता, तो अपने ब्लड बैंक से वो अपना दे सकते हैं हॉस्पिटल जो सेंटर बने हुए हैं।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरीके से इमरजेंसी में वो ब्लड काम में आ सकता है और किसी की जान बच सकती है।
3: बच सकती है, और आजकल फिर कोई कोई ऐसे विकराल बीमारियां हो गई कि ब्लड को आपको कई जन को चढ़ाना पड़ता है, मैं सुनता हूँ महीने में दो महीने में कई जन को किस टाइप का सिकलिन की है तो उसमें भी ब्लड चढ़ाना है या उसको फिल्टर करना है, वो भी आजकल समस्या हो गई है। कहने का मूल तात्पर्य है कि खून देना खून के रिश्तों से बढ़कर है, और ब्लड बनने का कोई अलग से फैक्ट्री नहीं है कि उसमें ब्लड बने और हम उनमें बाटलों में देते जाए।
2: बिल्कुल,
3: तो मनुष्य जो दान करता है वो बहुत ही बढ़िया दान है रक्तदान।
2: और आज के दिन सारे लोग ये सोचें कि रक्तदान करने से इंसान को जो रक्त डोनेट करता है उसको इससे किसी भी तरह की कोई हानि या नुकसान नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा फील करता है, उसको स्फूर्ति यानी कि एक एक्टिवनेस फील करता है, और साथ ही साथ उसके दिल की जिसे कहते हैं ना दिल की कोई प्रॉब्लम्स होती है, दिल की प्रॉब्लम
3: चलते हैं जी, सही कहा,
2: उसमें भी उसके सुधार होता है ना?
3: जी जी, जिस तरह से हम लोग पानी की टंकियां ऊपर में ओवरलोड हो जाता है तो बाहर आएगा तो शरीर में ब्लड तो बनते जाता है
2: जी।
3: युवा वर्ग में बूढ़ों का नहीं बोल रहा हूँ, यानी जो बच्चे हैं
2: जी,
3: तो आखिर उसमें यदि हम टंकी में पानी भरता जाएगा तो ओवरलोड होगा तो थोड़ा निकलता भी जाएगा, तो उसमें फिल्टर भी होता जाएगा ना शरीर का, धमनियां जो है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और इससे हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा भी बहुत ही कम या ना के बराबर हो जाता है ना? रामचंद्र जी, आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई और अपने विचार हमारे सारे श्रोताओं के साथ साझा किए, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: आप सुनाइएगा, नया खून है नई उमंगे, अब है नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी का गीत सुनाएंगे।
2: जी बहुत प्यारा गाना है ये, और आपके साथ हम सब और सारे श्रोता सुनते हैं।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, कनेडा से कैंट के पास बरेली।
0: कैसे हैं सुनील कुमार?
1: बढ़िया है मैम, आप कैसी हैं?
0: सब बढ़िया है। और आज का जो विषय है, क्यों जरूरी है रक्तदान, इसके बारे में आज अपने विचारों से श्रोताओं को रूबरू कराइए।
1: हाँ मैम, रक्तदान इसलिए जरूरी है कि स्वस्थ मनुष्य के लिए जो 18 साल से 60 साल के बीच में है, तो उनको रक्तदान जरूर करना चाहिए। और जो 18 40 के बीच में है, उनको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हमारे खून से किसी की जिंदगी बचे तो इससे बढ़ के कोई दान हो नहीं सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और
1: और एक बात और है मैम, कि हम ऐसा सोचें कि कोई गरीब जरूरत है, तो अगर हम फिट हैं तो बगैर पैसे से रक्तदान करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर हम फिट हैं और अगर किसी को इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ रही है तुरंत, तो उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए हर समय।
1: बिल्कुल मैम, क्योंकि आपको कह देना चाहिए कि चलो हम देंगे और इसे बड़ा दान कोई है ही नहीं।
0: जी, ये एक ऐसा दान है जो कि जीवन दान है, दूसरे को हम जिंदगी दे रहे हैं जान में, दान में।
1: बिल्कुल।
0: और इससे ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ नुकसान हो रहा है, इससे जो रक्त देने वाला है उसका एक नया खून एक अच्छे लेवल पे और बन जाता है, और बल्कि उसको किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहता है, उसको दिल की बीमारियों का कोई खतरा नहीं रहता है, और उसकी जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो भी इससे बर्न हो जाती है, मानसिक संतुष्टि उससे मिलती है। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि जो रक्त डोनर है या जो रक्तदाता है उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो भी अच्छा महसूस करता है और उसकी वजह से सामने वाले की जो जान है वो भी बच सकती है ना?
1: बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जरूर करना चाहिए हर अच्छे इंसान को जो स्वस्थ है, और जरूर 18-40 साल वालों को तो जरूर ही करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और रक्तदान करने से पहले कुछ टेस्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे रक्तदान करने के लिए आपको तुरंत रक्तदान आप कर देंगे, तो कुछ टेस्ट होते हैं। अगर आप रक्त देने के काबिल नहीं है तो आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं आप रक्त नहीं दीजिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम
0: जी। सुनील, आज आपने इतने अच्छे विचार हमारे श्रोताओं से साझा किए, और क्या फरमाइश है आज आपकी गाने सुनने की?
1: फिल्म है श्रीमान आशिक, और तेरे दिल की यही ख्वाहिश है, तुम्हारे सामने के बाद में है मैंने गाना।
0: लीजिए, आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी बात
1: हेलो,
0: आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रही हैं?
1: आपका शुभ चिंतक बाहुबली छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से वार्तालाप कर रहा हूँ। मेरा नाम बाहुबली है।
0: जी, बाहुबली बात कर रहे हैं।
1: जी, सर्वप्रथम तो विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक हार्दिक बधाई।
0: जी, आपको भी हार्दिक बधाई। और ये रक्तदान दिवस तभी सफल होगा जब सारे नागरिक जो है स्वस्थ नागरिक ये प्रण लेंगे कि हम भी सब लोग मिलकर रक्त डोनेट करेंगे, है ना?
1: जी, ये हमारा परम कर्तव्य होता है कि
0: जी,
1: जब हमारे खून के थोड़ी सी मात्रा में किसी को जीव दान मिलता है, यह तो एक पुण्य का काम है, मगर इसके पीछू इंसानियत मानवता का भी भाव गर्भित है बहन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है कि रक्त डोनेट अगर करते हैं तो इसमें एक मानवता का भाव होता है, वही हमें अग्रसर करता है।

0: और इस मानवता के भाव के बदले में जो रक्त डोनर होता है तो उसको भी एक नई एनर्जी मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, कई सारी उसकी जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं रक्त डोनेट करने से।
1: जी जी जी, और ऐसा है ना, ये हमारा जिस्म तो मिट्टी से बना हुआ है
0: जी,
1: इसके ऊपर मोह माया और लोलुपता करने में कुछ सार नहीं है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने खून की थोड़ी मात्रा अगर किसी मरीज को मिलती है
0: जी,
1: तो उसका जीवन पुलकित होता है बहन जी।
0: जी जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके बाहुबली जी। और आज आपकी कॉल लगी है इस कार्यक्रम में, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे प्रसाद की राह।
0: लीजिए बाहुबली जी, आप सुनिए अपने रेडियो सेट पर महाराष्ट्र की फजाओं में ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रही है?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली से बोल रहा हूँ।
0: लाल मोहम्मद अंसारी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, आप बताएं, आप कैसी हैं?
0: सब बढ़िया है, आकाशवाणी परिवार भी बढ़िया है। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी बहुत बढ़िया है। क्यों जरूरी है रक्तदान?
1: जी हाँ, आपका आज टॉपिक जो है बहुत अच्छा टॉपिक है और
0: जी
1: इस विषय पर बात होनी जरूरी है, क्योंकि आजकल जो स्वस्थ लोग हैं वो रक्तदान को करना नहीं चाहते हैं और कुछ बेचारे परेशान लोग हैं, उनको रक्त की खास जरूरत रहती है। तो उन सभी लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा, कहना रहेगा कि जो आप सेहतमंद है और पूरी तरीके से स्वस्थ है तो वो रक्तदान जरूर करें, क्योंकि आपका रक्त किसी की जान बचा सकता है। और आप स्वस्थ है तो आपको तो आपके रक्त की पूर्ति खुद ब खुद हो ही जाएगी, लेकिन उनके लिए बहुत आवश्यक पड़ जाता है कि जिनको जरूरत है रक्त की और उनकी जान पे मतलब पड़ी हुई है। तो खास तौर से उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को रक्तदान करना चाहिए और जो जरूरतमंद है उनको खास तौर से रक्त की जरूरत है उनको रक्त देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि वाकई हम सारे लोगों को ये प्रण करना चाहिए कि हमें रक्तदान करना है तो करना है ना?
1: जो स्वस्थ लोग हैं उनका तो रक्त मतलब मान लीजिए खान पीन से पूर्ति हो जाएगी, लेकिन
0: जी
1: हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल में हमारा जाना होता है तो बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको एक फौज अगर रक्त की जरूरत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है, और वो कई रिश्तेदारों से भी कहते हैं और मिलने वालों से भी कहते हैं, लेकिन उनकी जरूरत के अनुसार उनको रक्त नहीं मिल पाता। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के दर्द को समझें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और जरूरी नहीं है कि आज जो वो सामने वाले भटक रहे हैं तो कल को किसी पर भी ये वक्त पड़ सकता है, ये सोच
1: जी,
0: कर
1: ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता है, क्योंकि ये जीवन है और जीवन किसी का भी कभी भी खराब हो सकता है। हमें ये मतलब नहीं सोचना चाहिए कि आज किसी दूसरे का वक्त खराब है तो हम पे ये वक्त नहीं आएगा।
0: जी बिल्कुल,
1: और हम अगर किसी की मदद किए हुए होंगे तो कहीं ना कहीं से ऊपर वाला हमारी भी मदद कर देगा और हमें उस वक्त ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई लाल मोहम्मद अंसारी। अब ये बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत नजर कर दूं?
1: गाना सुना दीजिए, फिल्म का नाम है शोला और शबनम, इसका ये गाना है कि तेरे मेरे प्यार में कितना दम है दुनिया को दिखलाएंगे, ये गीत सुना दीजिए।
0: लीजिए आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, आज का हमारा टॉपिक है क्यों जरूरी है रक्तदान, और इस बारे में फेसबुक पर पोस्ट की गई थी। काफी सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, जिसमें रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से गगन सिंह रावत लिखते हैं, रक्तदान जरूरी है। रक्तदान का जज्बा इंसानियत की भावना को दर्शाता है। जरूरत पड़ने पर जब एक मनुष्य दूसरे को अपना खून देकर दूसरे मनुष्य की जान बचाता है तो वो मनुष्य फरिश्ता कहलाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अब तक अनेकों बार अपना रक्तदान कर चुका हूँ। ऐसा करके मुझे जो खुशी मिलती है वो मैं बयां नहीं कर सकता। तो आइए हम सब अपने इंसानियत के फर्ज को अंजाम दें और जरूरतमंद को रक्तदान करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और आगे ये हैं भैरू लाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, लिखते हैं, अपने आप को तरोताजा रखने के लिए भी रक्तदान जरूरी है। हमारे द्वारा दिया गए रक्त की हर एक बूंद किसी जरूरतमंद के काम में आ सकती है। हर स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। अगला हमारे पास जो कमेंट आया है, रवि कुमार राहुल कस्बा बराडा जिला अम्बाला हरियाणा से, ये लिखते हैं, रक्तदान महादान है, ये सिर्फ नारा नहीं हकीकत है। क्यों महादान है, तो इसके लिए इन्होंने काफी सारा लेंदी लिखा हुआ है। यूनिट खून की 3 जिंदगियां, एक बार डोनेट किया गया खून लाल रक्त कोशिका प्लाज्मा और प्लेटलेट्स में बांटकर 3 लोगों की जान बचा सकता है। इसका कोई विकल्प नहीं है। खून को लैब में बनाया नहीं जा सकता, सिर्फ इंसान ही दे सकता है। और अगला लिखते हैं, हर 2 सेकंड में जरूरत, भारत में हर दिन 12,000 यूनिट खून की कमी रहती है। 15 मिनट आपका पूरी जिंदगी किसी की डोनेट करने में बस 10-15 मिनट लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है कि आपको डोनेट करने में 10-15 मिनट लगते हैं। ये डोनेट केवल रक्त का नहीं होता है दोस्तों, ये डोनेट किसी को जीवन का होता है। आप किसी को जीवन दे रहे हैं। आगे लिखते हैं कि डोनर को भी इससे फायदा होता है, फ्री हेल्थ चेकअप हो जाता है, बीपी, हीमोग्लोबिन, हेपेटाइटिस, HIV सारे टेस्ट हो जाते हैं, और साथ ही दिल की बीमारी का खतरा कम होता है, नई रक्त कोशिकाएं बनती हैं, शरीर एक्टिव रहता है। आगे ही हमारे पास ये आया है कमेंट, ग्राम चरौदाबार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, ये भी वही बात लिखते हैं कि रक्तदान एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक कार्य है। दुर्घटनाओं, सर्जरी, कैंसर के इलाज में और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अक्सर खून की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सभी को खून देना चाहिए। और आज ये अगला हमारे पास कमेंट आया है वारिस अली खान संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, ये लिखते हैं कि आज का विषय बहुत अच्छा है। मेरा मानना है इंसानियत का तकाजा है कि हर एक इंसान को दूसरे इंसान के लिए काम आए, इसीलिए रक्तदान करना चाहिए जिससे किसी की जान बच सके। और इसके बहुत ज्यादा फायदे भी इन्होंने बताए हैं, जैसे कि ताजा खून बनता है जिससे कि लोग स्वस्थ रहते हैं, और दिमाग में तो ये बात निकाल दें कि हम रक्तदान करने से कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कमजोर कोई नहीं होता है रक्तदान करने से। इसी तरह से अगले जो हमारे पास कमेंट आए, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये भी कुछ इसी तरह का लिखती हैं कि रक्तदान से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, दुर्घटना वगैरह में ये काम में आता है, लोगों का जीवन बचा सकता है। और अगला हमारे पास ये मैसेज आया है, विश्व रक्तदान दिवस के ऊपर लिखते हैं, मौका दीजिए अपने रक्त को

किसी की रगों में बहने का, मोहम्मद सईद अब्बासी लिखते हैं ये। इसी तरह से एक और हमारे पास मैसेज आया, आरवी सिंह शाहजहांपुर से लिखते हैं, रक्तदान से दूसरे का जीवन बचाया जा सकता है, इसलिए बहुत जरूरी है। ये आरवी सिंह थाने के सामने अलागंज जनपद शाहजहांपुर से है। मेरठ कैंट से है दिग्दर्शन और कविता गौड़, ये भी लिखते हैं रक्तदान महादान। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, लेकिन हमारे साथ आज आप 14 जून को ये प्रण करें कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति होगा वो जरूर रक्तदान करेगा। और अब अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, शाम के 5:05 हो चुके हैं, माफ कीजिए, शाम के 5:23 हो चुके हैं। आइए हम आपको आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। मन भावन कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:30 से। एक मुलाकात, जी हाँ दोस्तों, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:45 से। युवा दोस्तों का एनर्जी से भरपूर कार्यक्रम युवाणी शाम 6:00 से। आज का सवाल होगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? कुछ खास है आज, जी हाँ दोस्तों, आज है खास विश्व रक्तदाता दिवस। आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एज बेस्टन और बर्मिंघम से भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, कल सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली। लोक गीतों का कार्यक्रम लोक धुनों पर आधारित 8:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला डॉक्टर सुमेश मेहरोत्रा के साथ कल सुबह 9:00 से। दोस्तों, विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:15 से। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है कल सुबह 9:30 से। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। आपकी अपनी पसंद पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद कल सुबह 10:00 से। कल पूर्वाहन 11:00 से आपके रेडियो सेट पर बिखरेंगे रंग कार्यक्रम सब रंग के। कल 11:30 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12:05 से। कल दोपहर 1:00 से आप सुनिएगा अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। कल 2:00 रस में डूबा हुआ कार्यक्रम रस रंग

प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग कल शाम 3:30 से। आपकी बात आकाशवाणी के साथ होगी हर रोज की तरह, रिकॉर्डिंग 2:30 से और प्रसारण आप सुनेंगे कल शाम 4:00 से। भजन संध्या कल शाम 5:05 पर। महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार कल 5:30 से। चर्चा होगी हरियाली से बढ़ाएं घर की खूबसूरती। साथ होगी भेंट वार्ता, परिवार की प्रगति का आधार आपसी सामंजस्य। कल की वार्ताकार होंगी रिशु मौर्या। कल शाम 6:00 का समय रहेगा।

कार होंगी रिशु मौर्य। कल शाम 6 बजे का समय रहेगा हर रोज की तरह युवा दोस्तों का, कार्यक्रम होगा युवाणी। कल का सवाल, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? कुछ खास है कल। जी हाँ दोस्तों, कल का कुछ खास होगा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर। ग्रामीण भाई भी पीछे नहीं रहेंगे और उनका कार्यक्रम आएगा कल शाम 6:30 से। अक्षय वट कल शाम 7 बजे। कल शाम 7:31 पर सुनेंगे अपने पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। दोस्तों ये तो थी हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या।

राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। प्रेम रस में डूबा हुआ ये भजन आपने सुना हेमा देसाई के स्वर में।

मेरी गलियन आया ना करो, मीठी मीठी बांसुरी बजाया ना करो। स्वर वही हेमा देसाई का, कानों में रस घोलने वाला। और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं देविका पंडित के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां आपके इस कार्यक्रम मन भावन में। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये मन भावन कार्यक्रम में आप अपने खत लिखकर डालते हैं, उसमें अपने मन की बात लिखते हैं, मन की वो बात लिखते हैं जो आपकी सबसे सबसे खास होती है, जो आप किसी अपने अजीज या अपने दोस्त से शेयर करना चाहते हैं। और आप उस वक्त दिल आपका भरा होता है और उस वक्त ऐसे समय पे आपको 100.4 FM बरेली की याद आती है और याद आता है वो कार्यक्रम मन भावन, जिसमें अपने मन के भाव व्यक्त करने का मौका मिलता है हर एक शख्स को। इसी तरह का अपनी यादों से बुना हुआ संजोया हुआ कार्यक्रम है मन भावन। अगर आपके भी दिल में कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं, टीसे हैं या रोमांटिक से कुछ जज्बात हैं तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके पत्रों को भी इस कार्यक्रम में जगह मिलेगी। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम मन भावन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड 243001। कुछ इसी तरह से कई सारे खत हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें ये बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई। ये लिखते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हमें हमेशा अच्छा और मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि बोली कभी कभी गोली का भी काम करती है। बोली वो जख्म देती है जो किसी दवा से नहीं भरता। बोली कभी कभी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का भी काम करती है। हमें हमेशा सबसे बड़े प्यार से मिलना चाहिए, अपने बड़ों का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। बहुत ही अच्छी इन्होंने ये बात सारे श्रोताओं के सामने अपने दिल की बात रखी है कि इंसान को अच्छी बोली बोलना चाहिए, जिससे दूसरे के दिल में घाव ना हो, दूसरे के दिल की बेचैनी ना बढ़े, परेशानी ना बढ़े, उसका दर्द दोगुना ना हो, बल्कि ऐसी बात बोलें जिससे उसके दिल में कई सारे दर्द भी 0% पे आ जाए। फिलहाल इनकी पसंद का गीत सबकी नजर।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है मनभावन। मनभावन कार्यक्रम में ये दूसरा पत्र हमारे पास आया है हार्टमैन कॉलेज के पास छावनी अशरफ खां होली चौक बरेली से। भेजने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा। ये लिखते हैं मनभावन कार्यक्रम में ये मन की बात, अपने दिल की बात लिखते हैं। दोस्तों, जब बच्चा बड़ा होता है तब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और फिर उनका स्वर्गवास हो जाता है। तब एक नई जिंदगी शुरू होती है इंसान की, पति पत्नी के रूप में। और ये रिश्ता आगे बढ़कर अगर पत्नी पहले खत्म हो जाए तो पति अधूरा रह जाता है, और पति अगर खत्म हो जाए तो पत्नी अधूरी सी हो जाती है उसकी जिंदगी। बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। और ऐसे वक्त में उन्हें बहुत ही ज़्यादा सहारा देने की ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोग जैसे किसी के घर पे अगर बच्चे के माँ बाप चले गए या फिर किसी बड़े इंसान के भी माता पिता चले जाते हैं तो उसे ढांढस सभी लोग बंधा देते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में लोग ये समझते हैं ये सक्षम हैं, समझदार हैं, पति पत्नी हैं, पति पत्नी के बिना रह सकते हैं और पत्नी पति के बिना रह सकती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। वो कुछ शायर भी यूं कहता है कि दूजा कोई रोए उसे चुप करा दूं, अपने ये आंसू हाय कहां मैं छुपा दूं। बात यही होती है, कितना भी इंसान सक्षम क्यों ना हो, ऐसे वक्त में वो दूसरे इंसान को तो छुपा सकता है लेकिन खुद अपने आंसू नहीं छुपा पाता। तो ये इन्होंने अपने दिल की बात लिखी, और इस दिल की बात से हम सारे लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में लोग उनका साथ दें, उनका ढांढस बढ़ाएं, उनको अपनापन का एहसास दिलाएं।

श्रोताओं, बात आ गई है इस कार्यक्रम के आखिरी पत्र पर। ये पत्र हमारे पास आया है विमल वर्मा, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं। इन्होंने अपने मन की बात लिखी है। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ते वो हैं जो अपनेपन का एहसास दें। चार लाइनों में इन्होंने रिश्तों की हकीकत उतार के रख दी है। जी हाँ दोस्तों, वाकई रिश्ता अगर दिल से निभाने वाला हो तो गैर भी अपने लगने लगते हैं। इतने अपने कि उनके लिए इंसान जान भी दे सकता है। और अगर रिश्ते में दिल का एहसास ना हो, यानी कि रिश्ता निभाने का कोई भी एहसास ना हो, तो अपने जो ब्लड रिलेशन होते हैं वो भी कई कोसों मीलों दूर चले जाते हैं। और आगे इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है, तो पेश है इनका गीत आप सबकी नजर।

0: श्रोताओं, इसी के साथ मन भावन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुनव्वर जहां को दीजिए इजाजत। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 5:45 हो चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल से मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव, और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम हर बार आपके रूबरू किसी ऐसी शख्सियत लेकर आते हैं जो हमारे समाज में कुछ प्रेरणाप्रद काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद सर।
1: तो हम अग्रवाल जी के बारे में बता दें कि पहले तो वो एक समाज सेवी हैं और वो इसी रूप में जाने जाना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे विद्यालयों के वो प्रबंधक हैं, और यही नहीं जो कई सारे स्पोर्ट्स के एसोसिएशन हैं, जैसे कि पैरा जो खेल होते हैं जो दिव्यांगों के लिए होते हैं उनका एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा बरेली का जो चेस एसोसिएशन है उसके भी चेयरमैन हैं, और एक नया खेल जो है पंजा लड़ाने वाला, उसको इंग्लिश में सर क्या नाम दिया गया है?
2: आर्म रेसलिंग
1: जी। तो आर्म रेसलिंग के जो है एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो इसके अलावा वो काम कर रहे हैं सोशल सर्विस का, उसमें भी फोकस है महिलाओं के सैनिटेशन पे। जी हाँ, और गांव-गांव में महिलाओं को जागरूक करते हैं स्वच्छता के लिए। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उन्हीं से उनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, शुरुआती दिनों के बारे में, कि कैसे आपने शुरुआत की और यहाँ तक कैसे पहुँचे।
2: देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, मुझे मौका दिया श्रोताओं से बात करने का। इस कार्यक्रम, इस दिशा में जो मैंने कार्य करना शुरू किया, इसकी शुरुआत आज से 5 2020 में हुई थी। उससे पहले मैं विद्यालय, जैसा आपने पहले भी बोला, विद्यालय चलते हैं मेरे, वो आज भी चलते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ समाज के हित में काम करना चाहिए। और 2020 में लाल किले से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी स्पीच में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व दिया था, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि अगर देश की महिला स्वस्थ होगी और बलवान होगी तभी देश तरक्की करेगा। वो बात मुझे दिल को छू गई और मुझे लगा कि मुझे भी कुछ उस दिशा में काम करना चाहिए। उसी जोर में उन्होंने एक बात और भी कही थी कि महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सैनिटरी पैड, मेरा मानना ये है कि बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 75-80% बीमारियां जो हैं गंदा कपड़ा के इस्तेमाल करने से होती हैं। और आज भी ये हमारे देश का दुर्भाग्य कह सकते हैं, या के लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं इस बात
1: बिल्कुल, क्योंकि अशिक्षा और
2: अशिक्षा
1: की वजह से जागरूक नहीं,
2: जागरूकता कम है
1: जी, क्यों कई सारे मिथक भी हैं
2: बिल्कुल आपने बात सही कही। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस दिशा में

0: काम करूं, हालांकि बहुत सारी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसमें, क्योंकि एक आदमी होते हुए या मर्द होते हुए एक औरतों के पास जाना
1: बिल्कुल
0: कठिन
1: बिल्कुल
0: काम है,
1: हाँ, और इस विषय को काफी ढका छुपा के रखा
0: छुपा के
1: जाता
0: रखा
1: है।
0: जाता। तो आप, मैं अगर आगे बात करूं इसकी, तो मुझे याद है जब मैं पहली बार गांव में गया था तो मुझे बिल्कुल ही धक्के देके बाहर निकालने की नियत हो गई थी लोगों की कि ये कैसा व्यक्ति आ गया और किस तरीके की धारणा ला लेके आया है, हमारी औरतों से कैसे बात करने की जुर्रत भी कर रहा है। और पहली बार में शायद दो चार महिलाएं बड़ी मुश्किल से मैं इकट्ठी कर पाया था, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि मेरा और कोई ध्येय नहीं है, मैं उनकी अच्छाई के लिए करना चाहता हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं उनको, और देने के साथ मैंने फिर अपने साथ सैनिटरी पैड का जरूर बैग लेके जाता था कार्टन में भर के, और वो मैं उन्हें बांटता था। तो कई बार तो ऐसा हुआ मुझे सुनने में मिला कि साहब फेंक दिया गया या इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जैसे कहते हैं कि आप निरंतरता अगर रखें और अगर आप तरह
1: तो
0: दृढ़ता
1: सबसे
0: रखें।
1: पहले कौन से गांव में गए?
0: मैं सबसे पहले गया परगमा गांव।
1: अच्छा।
0: परगमा गांव को मैं जानता था पहले से और वहां के लोगों को थोड़ा सा, मतलब मैं परिचित था क्योंकि एक बार मैं कभी वहां पे किसी कारणवश गया था, तो मुझे उस जगह का रास्ता मालूम था, सिर्फ इतना जानता था मैं कि रास्ता मुझे मालूम है। तो मैं अचानक वहां पहुंच गया, लोगों को नहीं जानता था। तो जब मैं वहां पहुंचा तो फिर जो मैंने आपको बयान करा वो यही हुआ कि लेकिन ईश्वर की कृपा कहेंगे या लोगों का, मैं ये कहूंगा प्रेम कहेंगे, कि धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनाना शुरू कर दिया और आज ये हालत है कि होली भी वो मेरे साथ मनाना चाहते हैं, दिवाली भी वो मेरे साथ मनाते हैं, हर त्योहार ईद भी मेरे साथ मनाते हैं, और कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें मैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाता या उनके घर नहीं जाता, मतलब वो मेरा परिवार हो गया है,
1: परिवार हो गया।
0: परिवार है।
1: जी बिल्कुल, इसी भावना से एक्चुअली समाज सेवा में भावना ही यही होती है
0: जी
1: कि पूरा देश, पूरा समाज हमारा एक परिवार है, उसकी सेवा करनी है।
0: जी
1: तो आपने जैसे बताया कि आपको प्रेरणा मिली माननीय प्रधानमंत्री जी
0: जी
1: के संदेश से, उसके पहले भी कहीं ना कहीं मन में समाज सेवा की भावना छुपी होती है। कहते हैं कि खून में है या जीन्स में है कहीं ना कहीं, तो बचपन में भी कुछ ऐसा था आपके साथ?
0: बचपन में देखिए मैं एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करता
1: जी
0: हूं,
1: जी
0: और लेकिन मेरे पिताजी हमेशा ये बात मुझे सिखाते थे, जो आज ऊपर आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात मुझे समझाई और वो मेरे जहन में हमेशा बैठी कि अपने लिए तो दुनिया करती है, दूसरों के लिए करके देखो, उसमें ज्यादा मजा आएगा।
1: बिल्कुल
0: और उस समय उन्होंने एक बात और मुझसे कही थी जो शायद मैंने वो नहीं अपनाई, कि बेटा दान करना तो किसी को बताना मत,
1: गुप्त दान
0: गुप्त
1: करना।
0: दान करना, वो शायद उनकी एक कहने का शैली थी या जो भी था। मेरा मानना, मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज ये करा, मेरा ये कहना ये है कि दान करो, बताओ भी जरूर, जिससे लोग प्रेरित हों,
1: प्रेरित हो।
0: दिखावे के लिए नहीं करो
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: प्रेरणा देने के लिए उसको जरूर दिखाओ।
1: बिल्कुल,
0: ये
1: ताकि और अकेले हम कितना कर सकेंगे,
0: हम अकेला के
1: और प्रेरणा दूसरों को मिलेगी तो और लोगों की भी सेवा होगी। मान
0: बिल्कुल
1: लीजिए बरेली आसपास है, कहीं और हमें श्रोता कोई सुन रहा होगा, उनको प्रेरणा मिल
0: जी
1: सकती है।
0: जी जी
1: बिल्कुल, अब बात आती है कि जिसे समाज सेवा करते हैं और आप स्कूल भी मैनेज करते हैं और इसके अलावा एसोसिएशन के चेयरमैन भी
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं, खासतौर पे जो एसोसिएशन की बात है?
0: सर मजा आता है,
1: मजा आता है।
0: मजा आता है। देखिए अगर आदमी में, फिर वही बात,
1: हाँ
0: एक
1: लोग,
0: क्लीशे बात मैं
1: हाँ
0: कहने जा रहा हूं
1: जी
0: कि काम करने का जज्बा अगर हो तो क्या क्या क्या नहीं पॉसिबल है या क्या नहीं कर सकता इंसान, लेकिन मुझे अंदर से बहुत मजा आता है। मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है मैं कुछ करता रहूं, कुछ सेवा भाव करता रहूं। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं बड़ी कठिनाइयों से गुजरा, ऐसा नहीं है कि मैं आज जो है संपन्नता में हूं तो मेरा कोई जिंदगी ऐसी ही थी। मैंने वो समय देखा है जब मेरे पास कुछ भी नहीं था शायद, तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूं कि आज भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी समाज को कुछ सेवा भाव दे पाऊं,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसी का ये नतीजा है कि जो है मैं समाज सेवा कर रहा हूं। खेलों के प्रति रुचि के पीछे एक कहानी और है, क्योंकि मैं बचपन में खिलाड़ी बनना चाहता था,
1: अच्छा,
0: क्रिकेटर बनना चाहता था, चेस
1: हाँ
0: प्लेयर बनना चाहता था, दो तीन
1: अच्छा
0: खेलों में बड़ी रुचि थी, अच्छा
1: अच्छा
0: मेरा टैलेंट था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ आर्थिक तंगियों की वजह से मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाया।
1: पहले ये भी तो था कि वो कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब
0: जी
1: और
0: जी जी
1: खेलोगे तो होगे तुम
0: हाँ
1: खराब।
0: खराब।
1: हाँ, तो फिर अब जाहिर सी
0: तो
1: बात है, हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता था, इंजीनियर बनाना चाहता, वकील बनाना चाहता, डॉक्टर बनाना चाहता, आईएएस
0: बिल्कुल
1: बनाना चाहता था।
0: बिल्कुल
1: वो जो कोई खेल रहा है तो ये लगता है कि भाई वो तो बिगड़ रहा है।
0: समय खराब कर रहा
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो वो एक बहुत बड़ी वजह रही कि मुझे ये लगा कि चलो मैं नहीं कर पाया कुछ,

0: तो मुझे जो जो बच्चे करना चाहते हैं उनको तो मौका देना चाहिए। तो मुझे सरकार ने बड़ी अच्छी कुछ संस्थाएं दी जिसका दायित्व मुझे दिया, और आज भी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा उन खेलों को बढ़ावा दे सकूं।
1: जी
0: और
1: जी
0: जो बच्चे जब खेलते हैं और उनके चेहरे पे जो खुशी आती है जब वो मेडल लेके आते हैं या जीतते हैं या वो हार भी रहे हैं तब भी जो खेल रहे हैं उसका एक मजा अलग होता है। सरकार ने मेरे बारे में सोचा और बड़ा हर्ष होता है मुझे बताते हुए कि अभी जैसे ही मुझे ये दायित्व मिला उसके कुछ ही दिनों के अंदर में मैंने एक टूर्नामेंट बरेली में करवाया जो कि अपने विद्यालय में हुआ था, जिसमें करीब 550 बच्चों ने
1: अच्छा
0: 550 बच्चों ने पहली बार में विद इन 3 डेज रजिस्ट्रेशन करा के फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट किया। और मुझे इतना उत्साह देखने को मिला बच्चों में जिसमें उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग तक नहीं थी। पैर रखना और एक हाथ पकड़ना होता है, उसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है,
1: हैंडल लगा हुआ,
0: हैंडल लगा हुआ होता है, उसके सरकारी मानक है।
1: कहीं ऐसा नहीं जैसे आमतौर पे जो गली मोहल्लों में सब होता था, एक हाथ पीछे रखते थे,
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं,
1: वैसा नहीं,
0: ऐसा
1: सामने
0: नहीं,
1: हैंडल रहेगा उसको
0: हैंडल रहेगा,
1: पकड़ेगा।
0: हैंडल से आप पकड़िए, दूसरे हाथ से आप ऐसे आप लड़ाइए उसको पंजे को, बकायदा रूल्स के हिसाब से वो करते हैं। उसके बकायदा ट्रेनर्स भी हैं हमारे पास, और बहुत जल्दी जो है हम उसको जो है और भी स्कूल्स में, अब जैसे समर वेकेशन खत्म होगी उसके बाद हम इसको और प्रसारित करने की कोशिश करेंगे कि बरेली आसपास के क्षेत्रों में इसको और बढ़ा सके और बच्चों में और रुचि पैदा कर
1: तो
0: सके।
1: ये अभी क्या किस लेवल तक पहुंचा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मैच
0: अभी
1: वैच हुए?
0: डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, नेशनल लेवल पे,
1: नेशनल लेवल पे।
0: नेशनल लेवल पे है, खेल हो रहा है,
1: अच्छा,
0: लेकिन अभी इतना प्रचलित नहीं हो पाया
1: प्रचलित
0: है,
1: नहीं
0: ये
1: है।
0: बस इतना फर्क
1: जी
0: है।
1: जी जी तो क्या बरेली से भी कोई निकला है, कोई
0: हाँ,
1: ऐसा
0: बरेली
1: खिलाड़ी
0: से दो
1: जो?
0: बच्चे हमने अभी सेलेक्ट किए थे जो हमारा टूर्नामेंट हुआ था, उसमें से बच्चे तो खैर ज्यादा सेलेक्ट हुए थे लेकिन उसमें से दो बच्चे आगे हमने स्टेट में अभी भेजे हैं।
1: स्टेट,
0: एक आदमी दो हाथ से भी खेल सकता है, वो
1: अच्छा।
0: अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है कि एक पर्टिकुलर, पहले तो आ गई एज, उसके बाद आ गया वेट, उसके बाद आ गया हाथ, तो
1: अच्छा।
0: वो अपना रजिस्ट्रेशन लेफ्ट हैंड में भी करा सकता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन राइट हैंड में भी करा सकता है।
1: अच्छा।
0: आप चाहें तो मैं दो
1: हाँ,
0: बाउट खेल
1: कई
0: सकता हूं,
1: सारे कैटेगरीज में आप जा
0: जा
1: सकते हैं।
0: सकता
1: और लेकिन इसमें है कि एज ग्रुप, मान लीजिए कोई बच्चा बच्चा क्या कहेंगे, युवा 25 साल का युवा है, वो क्या 55 साल के किसी व्यक्ति के साथ खेल सकता है?
0: हूं।
1: नहीं,
0: नहीं,
1: एज ग्रुप का ध्यान
0: एज
1: रखा
0: ग्रुप का
1: है,
0: ध्यान,
1: 25 साल का है तो 25 साल के साथ,
0: बिल्कुल
1: और वेट का भी ध्यान
0: वेट का
1: है।
0: ध्यान
1: वेट का
0: रखना,
1: तो खैर ज्यादातर
0: बिल्कुल।
1: गेम्स में रखा जाता है।
0: जैसे जैसे वेट आपका बॉक्सिंग होता है तो वेट कैटेगरी
1: वेट
0: डिफाइंड
1: कैटेगरी
0: होती है,
1: होती
0: वैसे
1: है।
0: सिमिलरली इसमें वेट कैटेगरी डिफाइंड
1: ठीक
0: होती है।
1: ठीक ठीक तो ये अच्छा खेल सरकार ने निकाला है, काफी पारंपरिक खेल को मान्यता दी जा रही है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: काफी इंटरेस्टिंग भी है। आपके जरिए जो है ये खबर सामने आ रही है कि सरकार ने दी रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे श्रोता हैं वो इंटरेस्टिंग इस खबर से काफी लाभान्वित भी होंगे, है ना? और जो आपने, आपका जो व्यक्तित्व है उसमें कई सारे कहें तो विमाएं हैं, डायमेंशंस हैं कई सारे। आप समाज सेवा में भी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बताइए, कुछ आप एक्सपेरिमेंटल होंगे, आपको पर्सनैलिटी को देखते हुए लगता है कुछ?
0: शिक्षा में देखिए, मैं ये बात तो बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि बरेली में अगर पहला रोबोटिक्स फुल फ्लेज लैब किसी ने शुरू करा था तो वो पहला हमारा था। हम पहली बार इसको, इस टेक्नोलॉजी को बरेली में लेके आए थे, तब तक कोई जानता नहीं था कि रोबोटिक्स लैब जैसी, आज तो बहुत प्रचलन है इंस्टीट्यूट का, वो एक नई चीज हमने शुरू करी थी। स्मार्ट बोर्ड्स जो आज हर विद्यालय में आपको देखने को मिल
1: जी
0: जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: वो स्मार्ट बोर्ड्स का शुरुआत हमने शुरुआत करी थी। तो
1: जी
0: कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करी, और आज भी मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ नया करूं जिससे बच्चों का बेनिफिट हो सके हमेशा।
1: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप इनोवेटिव लोगों को अपने इनोवेशन से और लाभान्वित करते जाएंगे, और नई नई चीजें जो हैं बरेली के जो लोग हैं उनके सामने लेके आएंगे, और न केवल समाज सेवा बल्कि जो इस तरह के खेल भी हैं और आप शिक्षा का भी काम कर रहे हैं उसमें भी बरेली वासियों को उससे आप लाभान्वित करेंगे। आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एक मुलाकात। इसमें आपने सुनी डॉक्टर सौरभ कुमार अग्रवाल से मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 MHz पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 16 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है

प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 15 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय रहेगा प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, सोमवार दिनांक 15 जून 2026 यानी के कल शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर वही 2517200। बरेली का एसटीडी कोड है 0581। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है युवा दोस्तों का एनर्जी से भरपूर कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों कहते हैं जिंदगी की किताब में हर एक नया पन्ना जुड़ता है, लेकिन रविवार वो पन्ना है जो बीते हफ्ते का हिसाब और आने वाले हफ्ते का जवाब देता है। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपका दोस्त वैभव और आज रविवार है, एक ऐसा दिन जो आराम का नहीं बल्कि आत्ममंथन, नए संकल्प और नए ऊर्जा का दिन भी होता है। श्रोताओं, कहा जाता है कि रविवार हमें थोड़ा रुककर ये सोचने का अवसर देता है कि हमने क्या पाया, क्या सीखा और आने वाले दिनों में हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखा जाए तो जीवन की भागदौड़ में अक्सर हम खुद से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाते, लेकिन रविवार वही खूबसूरत मौका लेकर आता है। तभी तो कहे समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। और एक खूबसूरत विचार जो है ये हमने आपके साथ शेयर किया। आप भी देखिए रविवार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्या करें, रविवार आता तो बहुत देर में है लेकिन चला बहुत जीत जाता है। तो आपके लिए भी हम कहेंगे कि अपना दिन एंजॉय करिए और यह ध्यान रखिए दोस्तों, आपका कार्यक्रम युववाणी आप सुन रहे हैं और युववाणी में जब दोस्तों की बात हो रही है तो हम बात करेंगे आपसे आपके ही कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स में। तो कहीं मत जाइए, सुनते हैं कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: लीजिए श्रोताओं, आप सभी का प्यारा और हमारा भी खास सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स आ चुका है और हेलो फ्रेंड्स की शुरुआत करते हैं एक प्यारे दोस्त के साथ। कौन से हमारे मित्र हैं जो इस समय कॉल पर हैं? जी अपना नाम बताइए।
7: हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं और कौन बात कर रहे हैं?
7: जी सर, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बोल रहा हूँ।
0: वाह वक्कार जी, कैसे हो आप?
7: जी सर मैं बहुत अच्छा हूँ और आज हेलो फ्रेंड्स में काफी दिनों के बाद मेरी कॉल शामिल हो रही है।
0: हाँ काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है और बात करके अच्छा लग रहा है। ये बताइए आप क्या करते हैं?
7: सर मैं मिठाई का काम करता हूँ, मिठाई बनाता हूँ।
0: अरे वाह, तो कौन कौन से मिठाइयाँ आप इस समय बना रहे हैं?
7: सर इस समय तो मतलब वही गुलाब जामुन।
0: तो अच्छा ये बताइए, अक्सर हम सबसे तो पूछते रहते हैं कि मिठाई सबको कौन सी अच्छी लगती है, आप बताइए आप मिठाई बनाते हैं, मिठाई वालों को कौन सी सबसे अच्छी लगती है मिठाई?
7: सर मुझे तो सारी ही अच्छी लगती है।
0: तो देखिए तभी इतनी मिठास सी आपकी आवाज आ रही है तो

0: इस मीठी मीठी आवाज के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और गीत बताइए कौन सा सुनेंगे आप?
1: जी सर, आज गीत रहेगा फिल्म जहर से, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।
0: ठीक है, हम सुनवा रहे हैं ये गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे श्रोता कहाँ से जुड़े हैं बताइए। कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स में स्वागत है।
2: जी, मैं सना खान बात कर रही हूँ बरेली से।
1: सना खान जी, बरेली तो बहुत बड़ा है, बरेली में कहाँ से बात कर रही हैं आप?
2: घंटाघर के पास से।
1: तो बढ़िया बात है। और बताइए कैसे हैं आप? घर में कौन कौन है?
2: घर में सब लोग हैं, मेरी बहनें, मेरी सिस्टर है और एक भाई है और मॉम डैड है।
1: तो आप क्या करती हैं?
2: जी, मैं पढ़ाई करती हूँ।
1: बढ़िया है। तो अभी क्या पढ़ाई चल रही है, कौन सी कक्षा में है?
2: जी, मैंने फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन करवाया है।
1: तो आपने फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट लिया है? साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, आर्ट्स लिया है, क्या लिया है?
2: जी, मैंने साइंस और इंग्लिश ली।
1: चलो बहुत बढ़िया है। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनेंगे?
2: मैं सुपरमैनी मूवी का सॉन्ग सुनना चाहूंगी, माहिरू देशकू कर मेरी चाहत कबूल।
1: ठीक है, हम सुन मारे गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है। अपना नाम बताइए, कौन से साथी इस समय कॉल लाइन पर हैं?
3: मालागर नई बस्ती जिला बरेली से तराना अंसारी बोल रही हूँ।
2: अरे वाह तराना जी, कैसी हैं आप? आप नाम भी बहुत प्यारा है आपका।
3: हम तो बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
2: हम भी ठीक है। और घर परिवार में कैसे हैं सब लोग?
3: सभी लोग अच्छे हैं सर।
2: तो अभी क्या कर रही हैं आप आजकल?
3: सर अभी तो खाना खा के बैठे हैं।
2: वाह, तो क्या खा लिया आज खाने में?
3: सर आज करेले की सब्जी खाई।
2: अरे अब बहुत से दोस्त बोलेंगे करेले की सब्जी तो उनका मन कड़वा हो गया होगा, लेकिन करेला बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना?
3: सर हमें तो बहुत पसंद है करेले।
2: तो ऐसा बताओ तराना जी, जो करेला होती है उसकी कड़वाहट कम करने के लिए क्या करें जो खाना बन जाए, आप थोड़ा सा बताओ।
3: सर नमक में धो लेते हैं तो कड़वाहट कम हो जाती है, या उबाल ले तब भी हो जाती है।
2: चलो तो ठीक है, तो आज गीत बताइए कौन सा सुनेंगे प्यारा सा?
3: फिल्म का नाम है जानवर, गाने के बोले मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं देखूं बार बार उसको।
2: ठीक है, सुनिए ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
3: थैंक यू सर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के कार्यक्रम में अंतिम कॉल किन श्रोता की लगी है। अपना नाम बताइए।
4: मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
3: हाँ इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
4: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ सर।
3: वैसे तो छत्तीसगढ़ के
4: जीवनी में मिल गया हूँ सर आपसे बातचीत, थोड़ा फोन लगा, अच्छा लगा।
3: छत्तीसगढ़ में सभी लोग तो सब बढ़िया ही रहते हैं इंद्रभान जी, क्योंकि कहते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो सभी लोग बढ़िया हैं।
4: खंडवा में भी वही बात आता है सर कभी कभी।
3: हाँ तो आप अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें कि आपके शहर में फेमस है क्या, खाने को अच्छा मिलता है, घूमने के लिए क्या क्या है?
4: सर ये हमारे जो कहना चाहिए जो सबसे बड़ा शहर है सर रायपुर।
3: हाँ।
4: रायपुर से यहाँ आते हैं सर, वहाँ से आते हैं तो ये पूरा पड़ता है बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और ये क्या तो जगदलपुर और ये क्या बोलते हैं ये मेन, ये सब मेन। और ट्रेन से आते हैं तो सर ये हमारी चिरमिरी है, तो अंबिकापुर से इधर से रोड में जाएंगे बिशापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, मनेनगढ़, चिरमिरी दक्षिण की तरफ पड़ता है और रायपुर और चिरमिरी सर नगर निगम।
3: ठीक है, तो कौन सा गीत आप सुनेंगे बताइए?
4: फिल्म का नाम है सर गीत बोल रहे सुन सुन सुन बरसात की धूम सुन, गायक कुमार सानू। सबसे पहले गीत आपको, फिर निर्देशक साहब को, फिर भारत श्रोता को, आकाशवाणी बरेली में सभी लोगों को।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। आप युववाणी सुन रहे हैं और युवाओं से बातें होंगी। तो आज एक खास दिवस मनाया जाता है, आज मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। कहते हैं रक्त की हर बूंद में छिपी है किसी की मुस्कान, रक्तदान से मिलता है जीवन को नया सम्मान। श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में दोबारा से। और आज 14 जून है और पूरी दुनिया भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हम बात करेंगे हमारे श्रोताओं से, लेकिन उससे पहले बता दें दोस्तों, दुर्घटनाएं, गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन और आपातकाल की परिस्थितियों में रक्त की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए एक बार।
6: जी नमस्ते सर, मेरा नाम है समनान
5: जी। कैसे हैं समनान जी आप, और बताइए क्या करते हैं थोड़ा सा।
6: मैं बहुत अच्छा हूँ सर, और मैं, आप बताइए कैसे हैं। सबसे पहले तो
5: मैं ठीक हूँ।
6: मैं पढ़ाई करता हूँ सर, मैं अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर रहा हूँ अपनी।
5: अच्छा, तो समनान जी ये बताइए, जो रक्तदान है इसे महादान कहा जाता है, आपके अनुसार रक्तदान इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, मतलब ये समाज और मानव जीवन के लिए क्यों इतना आवश्यक है?
6: रक्तदान को सर महादान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सीधे तौर से व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की जान बचाने में मदद करता है। क्योंकि कुछ मिनट से किसी की भी जान बच सकती है, रक्तदान इसीलिए महादान कहा जाता है। अगर आप अपना ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान करते हैं, तो सीधे तौर पर इंसान की जान बचाई जा सकती है
5: जी,
6: मिनट के अंदर ही, इसलिए इसे महादान कहा जाता है। क्योंकि और दूसरी चीज ये है, रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं, ये एक स्वस्थ व्यक्ति से ही लिया जा सकता है। जो हमारा ब्लड होता है वो किसी हेल्दी पर्सन से ही लिया जा सकता है।
5: अच्छा।
6: स्वस्थ व्यक्ति से आप ले सकते हैं इसको। और एक यूनिट अगर आपने दिया किसी को, ब्लड दिया अपना एक यूनिट, तो इससे कई लोगों की जान बच सकती है।
5: तो ये बताइए आपकी, क्या आपने कभी रक्तदान किया है? यदि यहाँ तो आपका

0: अनुभव कैसा रहा है, और यदि नहीं तो भविष्य में क्या रक्तदान करने के बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी मैं सबसे पहले आपको बता दूं सर, मैंने 4 बार अपना ब्लड डोनेट किया है, रक्तदान मैंने 4 बार किया है
0: जी, तो भविष्य
1: और
0: बात
1: हाँ 4 बार डोनेट किया है और सब मैंने हर साल में करता ही हूँ, एक बार जरूर करता हूँ।
0: तो कैसा अनुभव रहता है आपका, क्योंकि आज भी लोग बहुत लोग हैं जो रक्तदान से डरते हैं, आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है और इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं हम?
1: सर ये समाज में फैली हुई भ्रम है ये कि रक्तदान से डर लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। जब हम अपना ब्लड डोनेट करने जाते हैं ब्लड बैंक के अंदर, अपना रक्तदान करने जाते हैं रक्तदान शिविर में, जहाँ पर भी है लगते हैं रक्तदान शिविर, तो वहाँ पर बिल्कुल बस जब सुई लगती है बस तभी थोड़ा सा दर्द होता है, अदरवाइज कोई दर्द नहीं होता, किसी भी पल में दर्द नहीं होता और ये बहुत आराम से एक दूसरे को ब्लड दे सकते हैं।
0: अच्छा, तो आपके अनुसार जो युवाएं हैं उनके लिए रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए महाविद्यालय हो गए चाहे विद्यालय होगा, सोशल मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है?
1: सर सोशल मीडिया की इसमें बहुत बड़ी जागरूकता है बढ़ाने में, ये बहुत कारगर साबित हो सकता है सोशल मीडिया इस मामले में।
0: अच्छा,
1: सबसे पहले तो ये हो सकता है सर, जानकारी बहुत तेजी से लोगों को पहुंच सकती है, लाखों लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, और किसी को भी अगर रक्त की जरूरत है, आवश्यकता है किसी को भी, तो तत्काल लोगों को खोजा जा सकता है। हम सोशल मीडिया पे जैसे स्टेटस लगा दें या किसी से कॉन्टेक्ट कर लें, तो हम अगर लगा देंगे तो जिसको भी डोनेट करना होगा वो फौरन आगे आ जाएगा, जिसको भी अपना रक्तदान करना होगा वो युवा वो जो भी है वो सब आगे आ सकते हैं, इससे हम सोशल मीडिया इस मामले में बहुत कारगर साबित हो सकता है सर।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। तो चलते चलते कुछ और आप कहना चाहेंगे आज रक्तदाता दिवस पर?
1: हाँ सर बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं, रक्तदान को 1 यूनिट रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है, इसमें कई चीजें हो सकती हैं सर, तो रक्तदान सभी को करना चाहिए और सरकार को भी इसमें सहयोग करती है सरकार, और भी करना चाहिए इस मामले में,
0: चलिए
1: इससे हमारी यह है कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको भी पता लगेगा और जो समाज में डर फैला हुआ है वो भी दूर हो जाएगा रक्तदान के।
0: बिल्कुल, तो अच्छा लगा जानकर आपने हमसे बात करी, और धन्यवाद आपका भी जो आपने समझ लिया। नमस्कार,
1: नमस्ते।
0: श्रोताओं, आपने देखा कि समनान कैसे बताया उन्होंने कि रक्तदान करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब एक कॉमर्शियल ब्रेक की ओर चलते हैं।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: श्रोताओं, इस कॉमर्शियल ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिये अब कार्यक्रम में और समय नहीं रहा कि आपसे ढेर सारी बातें की जाए, अब मुझे यानी कि वैभव को अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नया लाने के वादे के साथ दीजिए अनुमति। श्रोताओं, जाते आते हम आपको बता दें कि कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग यानी कि सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स की रिकॉर्डिंग ठीक दोपहर 1 बजे होती है प्रति रविवार। समय एक बार पुनः सुनिए, दोपहर के 1 बजे। श्रोताओं, आप कॉल करते हैं, हम आपके कॉल रिसीव करेंगे। अगर 1 बजे से कुछ मिनट बाद तक कॉल रिसीव नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि आप भी जानते हैं 4 या 5 कॉल रिकॉर्ड करने में मुश्किल से 3 या 5 मिनट का समय लगता है। तो और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप लगातार कॉल लग रही है तो और श्रोताओं को भी मौका दें। फिर मिलेंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर हमारे होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 16 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है प्री टर्म अथवा समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियों और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे सोमवार दिनांक 15 जून 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर।

0: शाम के 6:30 होने को है। आइए अब सुनते हैं आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत एज बेस्टन और बर्मिंघम से भारत और पाकिस्तान के मध्य खेले जाने वाले मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण
1: आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा

आकाश महाडिक भाग तीन प्रस्तुति चारूबाला खरे विशेष जयमाला में आज सैनिकों की शौर्य गाथा आप सुनेंगे शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र दीवान रंजीत राय लेफ्टिनेंट कर्नल की शौर्य गाथा, प्रस्तुति है तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका कागज के जेवर, लेखक हैं अभिलाष, निर्देशन पुरुषोत्तम थारवेकर। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता भारत भूषण पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 220। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला गज तत्वाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक भाग 4, प्रस्तुति चारूबाला खरे। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, लेखक जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर चित्रलोक सुनवाएंगे। आज के फनकार आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली। कल के आकर्षण है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। कथा सुधा में सुनिए आभूषण भाग 3, सोशल मीडिया के वाद विवाद समय की बर्बादी, प्रादेशिक व्यंजन उत्तर प्रदेश का मक्खन मलइयो बेडमी पूरी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए जीवन शैली और योग, योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत का समय रहेगा शाम 5 बजे। 5:30 पर आप सुनेंगे तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे जयमाला का प्रसारण होगा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है तेरे घर के सामने। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए झलकी नीम हकीम, लेखक राजकुमार वाल्टर, निर्देशन गोपाल सक्सेना। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री गायिका सुरैया पर। छह गीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आलेख

सर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अभी आपने बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म में मधुश्री की आवाज को सुना। गीत मनोज मुंतशिर का था, संगीत एमएम करीम का। आइए अब सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज में केदारनाथ फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जसलमेल क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया गया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत् वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम विशेष जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? जोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी, जरा याद करो कुर्बानी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। लव

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं।

हमें अपनी जंग अभी है जारी, जान भी दे देंगे हमें अपनी जंग अभी है जारी, नहीं हटेंगे पीछे हर हरगिज़, पूरी है तैयारी।

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
5: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
6: सुगंध क्या हो रहा है?
5: बिल हो रहा है।
6: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहाँ हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
9: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अभिमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है, कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
3: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई हैं, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी

0: वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अम्बेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
3: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य की इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुँचेगी पहली फ्लाइट।

0: इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Hey guys,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
3: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। श्रोताओं, आइए आपको पुनः जोड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
7: परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना, सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी। अब अंजाम कुछ भी हो, युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारे थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की।

0: वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है।
1: फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की

0: अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।
1: ऐ मेरी जमीन, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: गाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हो, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के साथ जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिली।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठ बैठ, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शकल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ। कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहाँ नहीं हैं।
3: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता है ना, तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
3: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ तुम्हारे

0: ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
1: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
0: ओहो, तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर बुआ। अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
1: अच्छा, तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भागवान है।
0: क्यों नहीं?
1: देखो ना, क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखू।
0: अरे बावली, मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
1: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ। भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
0: ओहो, तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
1: हाँ, जाओ, जाओ,
2: जाओ।
3: अरे मंगरू,
0: मंगरू, वो क्या बात है माधो?
3: अरे चौधरी जी आ गए हैं।
0: हाँ?
3: चौधरी जी?
0: हाँ। देख माधो, तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
3: अच्छा, मैं आता हूँ।
0: मैं अभी आता हूँ।
3: ठीक,
0: मैं भी आता हूँ।
4: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
0: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त में आया। आइए आइए बिना जी।
4: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
0: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, अब पता चला आप
4: मेरी रकम दे रहे हो ना।
0: जी जी। वो
4: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
0: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे के वो रुपए तो सब
4: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू, मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
0: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
4: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
0: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मदद और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। धर्म से, धर्म से।
4: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
0: चौधरी जी, मालिक, मालिक,
4: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
0: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
4: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
0: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। आप
5: मंगरू।
0: पटवारी जी, पटवारी जी।
5: भैया, अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
4: जी 3000।
5: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
4: जी आप?
5: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
4: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ। जय राम जी की।
5: अच्छा भैया, जय राम जी।
0: पटवारी जी, आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
5: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
0: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
5: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
0: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
5: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
0: नहीं, वो क्या पटवारी जी है?
5: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
0: पर गलती उसी की पटवारी जी।
5: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो। हाँ, और हाँ। अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
0: हाँ, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
5: देखो,
0: क्या करूँ?
5: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
0: लेकिन
5: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है।

0: ओ, तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा।
1: ठीक ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
0: कौन से रुपए भाई?
1: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
0: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
1: काहे?
0: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
1: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
0: अच्छा ये लो मंगरू।
1: ये क्या कागज? ये कैसे कागज है? कैसे कागज है?
0: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
1: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
0: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है?
1: राष्ट्रीय
0: बचत पत्र है। ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
1: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
0: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
1: अच्छा, वो किस तरह?
0: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब देखो तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
1: अच्छा,
0: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
1: 11,000?
0: हाँ भाई,
1: सच सच कह रहे पटवारी जी?
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद?
1: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत कर।
1: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आगे हैं, जल्दी चलिए।
1: आगे आगे पंडित जी, चलिए आइए पटवारी जी, आइए आइए।
3: चलो चलो।
4: कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारभेकर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में हीरोपंथी फिल्म का गाना। गीत कौशल मुनीर ने लिखा है, संगीत साजिद वाजिद का है।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

नमस्कार आकाश। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में

0: गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति उत्कृष्ट

0: प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
2: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं, और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है, और वो हमारी हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी

0: नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: कमेंट्री टीम के पास
4: नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना, गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
3: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत कर...

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है,

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर

0: रहे थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

भारत भूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।

बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख,

घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

0: 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।
1: हो

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांग लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

हमने सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया।

कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है? क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल?

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गूंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

संदिल है वक्त, एक शातिर बाजीगर। वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म शमा, कैफी आजमी, गुलाम मोहम्मद।
1: ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई।
0: फिल्म रुस्तम सोहराब, कमर जलालाबादी, सज्जाद हुसैन।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद। फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन।
1: चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके।
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविधा विविध भारती की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल दोनों पक्षों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल

0: ठाकुरा ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration.